आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा विषय है महामृत्युंजय मंत्र। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मृत्यु के भय से बचने और लंबी आयु के लिए बहुत से लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, परंतु जीवन का शाश्वत सत्य यह है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य भावी है, अर्थात अटल है। जन्म और मरण जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म है तो मरण भी है, और मरण है तो जन्म भी है। इस जन्म मरण के चक्र से कोई आत्मा छूट नहीं सकती, अर्थात मोक्ष किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर चाहे वे संत आत्माएं हो, महात्माएं हो या देव आत्माएं हो, प्रश्न उठता है कि जब महामृत्युंजय मंत्र जपने वाले को भी एक दिन देह त्यागना ही है, तो इस मंत्र की सिद्धि क्या रही? इसका शब्दार्थ इस मंत्र का ही यही है कि हम त्रिनेत्र भगवान शिव को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से

मुक्त हो जाए तो क्या केवल ये शब्द दोहराने से कोई मृत्यु पर विजय पा सकता है क्या? इस मंत्र की सिद्धि के लिए इसका भावार्थ समझना होगा। यह वंदना अलौकिक शिव परमात्मा को त्रिनेत्र कहकर की गई है। ज्ञान के सागर शिव परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का तीनों लोकों का ज्ञान देकर हम आत्माओं को भी त्रिनेत्री बनाते हैं। सदा पवित्रता की सुगंध से सुगंधित परमात्मा ज्ञान देकर हमारा अर्थात इस नश्वर देह में विराजमान चैतन्य अविनाशी आत्मा का पोषण करते हैं। जैसे फल पकने के बाद पेड़ की शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही हम आत्मा भी ज्ञान स्वरूप बनकर सहजता से इस देह से अलग हो जाए और पुनः वर्तमान कलियों की नर्क में पुनर्जन्म में ना आए। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

पुत्र, जैसा कि हम सभी देखते हैं, ज्ञान के सागर हमारे परमात्मा द्वारा मिली ज्ञान की वो कौन सी बूंद है जो मनुष्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का काम करती है, जिससे मृत्यु का भय निकल जाता है और मनुष्य निर्भय बन जाता है। वो बूंद है आत्मा का सत्य ज्ञान। हम हैं अमर आत्मा, परंतु इस सत्य को भूल स्वयं को देह समझ बैठे हैं, जिस वजह से देह को छोड़ने का भय बना रहता है। इसके साथ साथ जब तक मनुष्य स्वयं को देह समझता है, उसे मोहवश देह के प्रियजन के देह त्याग तथा संसाधनों के खो जाने का भी भय रहता है। जब हम सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब मृत्यु के भय के साथ साथ अन्य अनेक प्रकार के भयों को भी जीत लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पवक, न चैनं हृदयं त्यागो न शुष्यति मारुता। अर्थात इसका शब्दार्थ है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं और अग्नि जला नहीं सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। जो है ही अमर, उसे न कोई हिंसक औजार नुकसान पहुंचा सकते हैं और न बारूद या मिसाइल्स ही टुकड़े टुकड़े इसके कर सकते हैं। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्विंद स्वरूप अजर अमर अविनाशी हूँ। इस सत्यता में टिकने से आत्मा में शक्ति आ जाती है। अतः मृत्यु के भय को जीतने के लिए अपने सत्य आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास निरंतर चलता रहे। आत्मिक भान में स्थित होते ही हमें अपने भीतर सुख शांति पवित्रता की सुखद अनुभूति होनी शुरू हो जाती है और हम अधिकाधिक आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के कारण उसके लिए लालायित होते जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ जो है, हमारे ब्रह्मा कुमारी से आपसी मिलन के समय पर बोला जाने वाला शब्द ओम शांति केवल एक औपचारिकता पूर्ण शब्द नहीं है, परंतु ये वो महामृत्युंजय मंत्र है जो स्वयं कालों के काल महाकाल शिव परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति बोलते हुए यदि हम अपने शांत आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, तो यही है सच्चा सच्चा महामृत्युंजय मंत्र। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ।

नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है महामृत्युंजय मंत्र। जब हम देखते हैं कि जब पाप करने से नहीं डरे तो फल भुगतने से भी नहीं डरना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको मृत्यु का भय नहीं होता, परंतु वे संसार के दुख नहीं सहन करना चाहते, इसलिए कठिन परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेते हैं। और कई कहते हैं कि बिना बीमारी तकलीफ के हम देह त्याग करते हैं। दुख दर्द के भय से छूटने के लिए ज्ञान सागर परमात्मा शिव ने आकर हमें कर्मों की गुह्य गति भी समझाई है, जिसके अनुसार जैसा करोगे वैसा पाओगे, आज नहीं तो कल पाओगे, इससे नहीं बच पाओगे। गलती होने पर भगवान हमें माफ कर सकता है, कोई व्यक्ति हमें माफ कर सकता है, हम खुद भी खुद को माफ कर सकते हैं, परंतु गलती हमें कभी नहीं माफ करती। पश्चाताप भी उस गलती की सजा कम नहीं कर सकता। गलती या पाप की सजा मिलके ही रहती है। जब पाप कर्म करने से नहीं डरे तो उसका फल भुगतने से भी नहीं डरना चाहिए। इस सत्य को स्वीकार करना ही है कि हमारे कर्मों का फल हमें सहर्ष स्वीकारना है। दुख दर्द से भी डरना नहीं है, बल्कि दुख दर्द का सामना करते हुए पुण्य करते हुए अपना भविष्य सुरक्षित अर्थात दुख रहित बनाने का कर्तव्य करते रहने में तत्पर रहना है। श्रीमद ही हमारे कर्मों को उच्च बनाती है और हमारे वर्तमान और भविष्य को सुखमय और दिव्य बनाती है। किसी बात से घबराए बिना श्रीमद का हाथ थामे, इस रौरव नरक दुख धाम को पार करते चले। एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे पापों का खाता खत्म हो, पुण्यों का खाता आरंभ हो जाएगा, तब सुख हो और वहां पर सुखी सुख जीवन में आएगा। दुख दर्द या मृत्यु का भय भी हमें नहीं सताएगा। ऐसा सतयुग जल्दी ही आएगा, तब तक श्रीमद पर चलते ओम शांति के महामृत्युंजय मंत्र में स्थित होकर परमात्मा की याद में निश्चिंत जीवन जीते चले। तो देखा आपने महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है, और इसे सही जानकारी इससे प्राप्त होती है हमें कि महामृत्युंजय मंत्र कब और कैसे बोलना है, उसकी स्थिति को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझना है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरी अवेकनिंग में, इस पूरे जागरण के प्रक्रिया में हमने ये जाना है कि किस तरह से अगर हम रिश्तों को एक नए रूप

0: देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो परेशानी आ रही थी, जो मुश्किलें आती हैं, जो हर बार हम ये कहते हैं कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, वो बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बच्चे का अपने पिता के साथ हो, या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का हो, आज जरूरत है कि हर रिश्ते को हम एक नए अंदाज, एक नए नजरिए और जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान हमें मिला है, उस अवेयरनेस के साथ देखें तो शायद एक नए रूप में नजर आएगा। पति पत्नी के रिश्ते के कई नए प्रारूप हमारे सामने आए हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हो सकती है, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जब से हमने रिश्तों के ऊपर बात करनी शुरू की है, इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं क्योंकि एक नए अंदाज में हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया हर रिश्ते को नई नजर से देखना। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं कि ना मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे एकदम से रियलाइज हुई है कि हम कितना भी सोच लें लेकिन जब हम इस तरह से कार्यक्रम में बैठते हैं तो कुछ और बात ही निकल आती है, एक ऐसी ज्ञान की बात जो हमने सोची भी नहीं होती। तो मैं तो अपने आप को स्वयं मान रही हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है एक बार फिर उसके बारे में बात करते हैं।
1: जहाँ तक हर बात, हर पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करते, तो ये हर बात बहुत गूढ़ रीति से हमें सारी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो स्वयं इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते और फिर जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जीवन में चलते चलते कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो उस यात्रा को सिंपल करने के लिए जो इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज इट्स वेरी डीप बट वेरी सिंपल, और वो सिंपल होने के कारण फिर वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है।
0: ट्रस्ट की बात करते हैं कि विश्वास, जैसा कि हम शिव बाबा पे कर रहे हैं 100% विश्वास रखते हैं, तो उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, हमने रिस्पेक्ट की बात की थी, हमने ये बात की थी, अपेक्षाओं की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो सारे एस्पेक्ट्स फिर भी इतने मायने नहीं रखते हैं कि कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। सबसे बड़ा जो, क्योंकि वो रिश्ता बन रहा है जहां कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी जन्मों का रिश्ता है, सो वहां विश्वास, हम अपने दोस्त पे विश्वास जरूर कर लेते हैं, यहां विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास कितना जरूरी हो जाता है।
1: विश्वास हर रिश्ते में जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है उसमें विश्वास करना इजी होगा और जो इस तरह से यात्रा के दौरान जुड़ा हुआ रिश्ता है उसमें डिफिकल्ट है। नहीं, आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी है, तो वो तो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसमें क्यों कमी है। तो ट्रस्ट इज नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी यू नो रिलेटेड टू बी अ ब्लड कनेक्शन, इट हैज टू बी अ सोल टू अ सोल रिलेशनशिप। तो विश्वास तो रिश्ते के अलावा भी एक्चुअली हर आत्मा को, हर आत्मा पर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि मैं औरों पर विश्वास करना आज क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं शायद आज खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही
0: हूं। मैंने ब्लड रिलेशन की बात इसलिए की थी कि हम ये कहते हैं कि चलो उनको तो हम माफ कर सकते हैं, वो है तो हमारा खून ही, हमारा अपना ही है, कोई बात नहीं करे
1: तो उनको हम माफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उनको माफ करना चाहते हैं, बाकी माफ तो हम किसी को भी कर सकते हैं। फॉरगिव, वी कैन फॉरगिव एनीबॉडी, व्हाई, बिकॉज आई नो हाउ टू फॉरगिव, लेकिन हम चूज करते हैं किसको फॉरगिव करना किसको नहीं करना। अगर हमें फॉरगिव करने की कला आती है तो अगर हम एक को कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप करना, वो मुझे पहले अपने आप के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वर्तमान समय औरों पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट अर्थात फेथ, एक इंटेग्रिटी जो मुझे आप पर या किसी और आत्मा पर करनी है, लेकिन आज जनरली हम डाउट करते हैं, यू नो इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो ट्रस्ट बहुत जल्दी हिल जाता है। शिव बाबा हमें बताते हैं कि संशय और निश्चय, यू नो डाउट या ट्रस्ट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती है। हम जो एफर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज होती है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं इसमें परसेंटेज

0: नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे, धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट
1: बढ़ता जाएगा।
0: तो शिव बाबा कहते या तो निश्चय है या निश्चय नहीं है।
1: लेकिन मैं अपने लिए ये ऑप्शन रखता हूँ कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं इतना हर्ट या हर्ट नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपनी जिंदगी ही
0: ये थॉट पहले से क्रिएट करना कि अगर मुझे धोखा मिला मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट, मतलब आई एम ऑलरेडी डाउटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये धोखा देंगे। तो फिर वेयर इज द ट्रस्ट? परमात्मा यही बताते हैं कि अगर एक भी थॉट डाउट की आई, एक थॉट, ज्यादा नहीं, एक थॉट भी डाउट की आई, तो अभी आप डाउट वाली साइड पर है, ट्रस्ट वाली साइड पर नहीं है, अभी संशय है उस रिलेशनशिप में। निश्चय जिस रिलेशनशिप में होगा जहां एक भी थॉट, वर्ड, एक्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक भी थॉट डाउट की नहीं होगी, दैट इज ट्रस्ट। एंड फिर वो इसीलिए परसेंटेज में नहीं हो सकता, जिस दिन तक डाउट्स है माइंड में तब तक हम डाउट वाली स्टेज पे है कि मैं इनको डाउट करती हूँ, लेकिन जिस दिन मन से सारे डाउट्स हट गए, एक थॉट भी डाउट करने आया, उस दिन कह दीजिएगा कि नाउ आई ट्रस्ट दिस पर्सन।
1: लेकिन ट्रस्ट हैज टू बी अर्नड, कहा जाता है कि आपको अर्न करनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा, विश्वास जीतिए आप।
0: ट्रस्ट मुझे करना है तो उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं करना, आप जो है जैसे है वैसे है। अब आपको ट्रस्ट करना या नहीं करना ये चॉइस मेरी है, आपको अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा उसके लिए, क्योंकि वो में भी समय लगता है कि हम आपको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली कहा जाता है कि ट्रस्ट तो फाउंडेशन है, सो दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू से कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं और बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब ट्रस्ट वाला फ्लोर बीच में डाल देंगे, बट वी सेड इट्स द फाउंडेशन, सो दैट मीन्स इट विल हैव टू बी द फर्स्ट थिंग, इट कांट बी समथिंग दैट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लेट्स से इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सो टुडे यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अब आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दो तीन साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करें, हाउ डू आई गो अबाउट इट, और शुड आई से वी बिगिन इट विद ट्रस्ट, बिकॉज तब तो आपकी स्ट्रांग फाउंडेशन होगी, नहीं तो फाउंडेशन डाउट की है, तो डाउट की फाउंडेशन पे तो वो इमारत वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि डाउट की फाउंडेशन पर खड़ी हुई जो अगले एक दो तीन साल भी बीते उसमें थॉट्स ऑफ ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ट्रस्ट इज ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स।
1: ट्रस्ट का मायने क्या है कि मैं आपको पोजेस कर लूंगी कि आप मेरे ही हैं? अगेन ट्रस्ट इज समथिंग हैज टू बी यू नो एक्चुअली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आप पे कंप्लीट विश्वास करती हूँ, क्या मैं आप पे एहसान कर रही हूँ, वन सेकेंड उसका पूरा पूरा मतलब क्या है कि मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ।
0: दूसरे पर ट्रस्ट करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय हम डाउट में रहते हैं अंदर डिस्टर्बेंस
1: पेन रहती है, बहुत पेन है,
0: एक इनस्टेबिलिटी कंटिन्यूस, मतलब अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स, और जिस क्षण ट्रस्ट करना शुरू किया ऑल वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स ओवर, तो वो एहसान दूसरे पर किया या अपने ऊपर किया? अपने ऊपर किया कि सारे जिसको कहे चिंता, बोझ, एंग्जाइटी, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नाउ देर इज नो डाउट, वी कैन डाउट ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, कितनी चीजें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं, और जब वो सारा हट जाता है तो सोचो अंदर क्या होगा, दैट इज पीस, दैट इज हैप्पीनेस, जहां अंदर एकदम स्थिरता आ जाएगी। तो ये किस पर एहसान किया? अपने पर एहसान किया, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, लेकिन जिस क्षण हमें लगा कि अब हम कर सकते हैं हमने करना शुरू कर दिया। आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब कोई हमारे सामने कुछ कहता है या कुछ करता है तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सोचते भी यही है। Why?
1: हाँ अगेन यू नो, क्योंकि कहते वो कुछ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर हमें नहीं मालूम कि, क्योंकि लगता ये है कि डिफरेंस होगा जो सोच रहे हैं और कहने में।
0: क्यों ऐसा लगता कि दूसरे के अंदर
1: हम खुद ऐसे हो?
0: क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है। सो सी, रिलेशनशिप इज माई कॉन्शियसनेस में आपकी इमेज। अब मेरी कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी होगी उसमें तो आपकी पिक्चर आकर बनेगी ना, मतलब मेरे पास कलर्स की क्वालिटी क्या है, दैट इज माय कॉन्शियसनेस। अब उन कलर्स से मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ कलर्स होंगे वो

0: पिक्चर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे बिल्कुल, अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये इंटेग्रिटी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफ माय थॉट्स वर्ड्स एक्शंस आर सेपरेट, तो मुझे क्या लगेगा कि बाकी लोग भी कैसे हैं? ऑटोमेटिकली मैं कैसे इसको बिलीव करूं, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स ही नहीं, तो जो कलर मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूसरे को उस कलर में देख नहीं सकती हूँ। मेरे पास वही कलर है क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर सारा दिन में कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ, तो मेरे पास वही रंग है। अब वही रंग से मैं आपकी इमेज अपनी कॉन्शियसनेस में बनाऊंगी, तो आपकी इमेज भी यही बनेगी कि आप भी सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। अगर आप कहते भी हैं कि नहीं मैं जो सोच रही हूँ वही बोल रही हूँ, I don't have the color. I don't have the color.
1: I can't relate to it.
0: I can't relate to it. I don't have the color. It's like saying कि I have red color. तो मैं आपकी पिक्चर रेड कलर से ही बनाऊ, आप बोलो नहीं आई एम ब्लू कलर, आई डोंट हैव ब्लू कलर,
1: आई डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लू कलर, गुड,
0: आई विल स्टिल पेंट योर पिक्चर विद रेड कलर एंड आई विल स्टिल होल्ड ऑन टू द थॉट, नहीं आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। तो इट इज इंटेग्रिटी एट द वेरी रूट लेवल, और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातों में नहीं, लेकिन सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। अब जब हम वो ट्रस्ट का कलर अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देंगे, और वो कैसे होगा, जब मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं। अभी तक हम जो सोचते हैं वो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना, कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करना, तो प्रिटेंशन क्यों थी अभी तक, क्योंकि हमने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर हूँ, पोजिशन हूँ, स्टेटस हूँ, एक पर्सनालिटी जो मैंने क्रिएट की है, तो एक आउटर पर्सनालिटी है, और उस आउटर पर्सनालिटी को मुझे सारा दिन दूसरों को क्रिएट करके दिखाना पड़ता है। एंड अगेन इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट कि मुझे बार बार ये डिसइंटेग्रिटी से चलना पड़ता था, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर बेस्ड थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो लेट्स से मैं इस टाइम बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप सोचेंगे अरे आप भी उदास होते हैं, और आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना मेरी सेल्फ एस्टीम को क्रैश कर देगा, अगर मेरी सेल्फ एस्टीम इस चीज पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड नॉर्मली आज दिन तक हमारी सेल्फ एस्टीम औरों के ओपिनियन पर बहुत ज्यादा बेस्ड थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था, और हमें वही चीजें बोलनी पड़ती थी जो औरों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है। तो आई एम चीटिंग माई सेल्फ, तो एक्चुअली इफ यू सी सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम चीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक व्हाट आई एम थिंकिंग। व्हाई? बिकॉज यू माइट नॉट लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन यू डोंट लाइक मी, एंड इफ यू डोंट लाइक मी देन आई डोंट लाइक माई सेल्फ।
1: That's important.
0: So it's very deep. So sara din mein I'm going around impressing people, influencing people, and because of that I just can't be myself. I can't be what I want to be. Spirituality ne hame apna sahi parichay diya ki main kaun hu, मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल गुण है, शक्तियां हैं, वर्तमान समय कुछ एक कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स ओके, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई डू नॉट वांट टू क्लेम टू से दैट आई एम परफेक्ट,
1: बट आई कैन ट्रांसफॉर्म ना, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन,
0: आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट टू वर्क ऑन दैट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन आज दिन तक आई वॉन्टेड टू हाइड
1: फ्रॉम माई सेल्फ, यू नो,
0: कि वो सारी कमियों को छुपा के एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि आई एम जस्ट फाइन द वे आई एम, तो देन आई कुडंट बी माई सेल्फ, आई कुडंट बी माई सेल्फ, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू कीप ऑन चीटिंग माई सेल्फ, तो मेरा अपने पे ट्रस्ट, और जैसी मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं, वो मुझे 100%।
1: वो भी कई बार आप भूल जाते, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वक्त आप खुद तो सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, हर बार आप अपने आप को याद दिला देते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच हो जाते हैं ये तो भूल जाते हैं, आपको वही मुझे आप ही दिखेंगी जो जिस रूप में आप हैं, आई विल फॉरगेट, ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है।
0: या दैट्स ओके, बट यू डू सी जब हम अपने अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ कि मेरे अंदर ये गुण है, विशेषताएं हैं, लेकिन ये कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स फाइन, यू नो, सो दैट इज एक्सेप्ट।

0: acceptance ki it's okay, ye kamzoriyan hain and I'm working on it. Integrity. Jab mere andar ye integrity aa jayegi, then I can accept other people also in the same way. Ki inke andar bhi ye gun hain, lekin ye thodi kamzoriyan hain, but I accept them with both the things. To usse kya hoga, dheere dheere aapko mere samne aane ke baad pretend karne ki zarurat नहीं पड़ेंगे क्योंकि आई एक्सेप्ट यू. हम प्रिटेंड किसके सामने करेंगे, जो हमें वो कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते.
1: तो इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता यही है, बिगिनिंग में तो देर इज अ प्रिटेंशन, लॉट ऑफ प्रिटेंशन, बट ग्रेजुअली बिकॉज कब तक, क्योंकि आप 24 घंटे का साथ रहेगा.
0: अब उस रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा दिन प्रिटेंड करना
1: बहुत मुश्किल हो जाता है.
0: आप ऑफिस थोड़ी देर प्रिटेंड कर सकते हैं क्योंकि कभी आप किसी कोलीग के साथ हैं कभी, लेकिन जिसके साथ पूरी जीवन बितानी है उसके सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता. और तब जब कहीं वो प्रिटेंस गिर जाता है तो इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन
1: एंड देन द कंप्लेंट कम्स इज लाइक आपका असली चेहरा अब दिखा.
0: ये स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आपने कहा ना कि जो पहले से जानते थे एक दूसरे को और फिर उस संबंध में जुड़े, लेकिन वो जो पहले जानने वाला पीरियड था
1: वो डिफरेंट था, वो प्रिटेंशन वाला था कि आप 2 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, यू आर योर बेस्ट. That I have. That is actually yes. That's understandable.
0: लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड जब आप ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर वीकनेसेस, तब दूसरे को आपके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा एंड तब वो जो सोच रहे हैं वो बोलेंगे. तो औरों को हमें प्रूफ नहीं करना, लाइक यू सेड ना, यू विल हैव टू विन माई ट्रस्ट. नहीं, आई हैव टू बिकम स्ट्रांग इनफ
1: टू ट्रस्ट यू.
0: ट्रस्ट यू.
1: ट्रस्ट का रियल सेंस में मीनिंग क्या है? मैं आप पे क्या कैसे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं क्या आपसे उम्मीद कर रही हूँ, या क्या मैं आपके क्या विश्वास का बेसिक मतलब क्या?
0: जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती है. एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ? देन दैट मीन्स देयर इज अगेन एन एक्सपेक्टेशन.
1: यू चेंज, यू विल डू दिस फॉर मी, यू विल डू दैट फॉर मी.
0: तो आप हर टाइम कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो ट्रस्ट मतलब मैंने एक इमेज बना ली कि आपको ऐसा होना है. जितने दिन तक आप इस इमेज के अनुसार चल रहे हैं, आई से आई ट्रस्ट यू, जिस दिन वो इमेज के कॉन्ट्रडिक्टरी आपने कोई कर्म कर दिया या कोई बोल बोल दिया, तो हम कहेंगे मेरा विश्वास टूट गया. क्यों विश्वास टूट गया? क्योंकि वो इमेज टूट गई. तो विश्वास क्या है कि आई ट्रस्ट यू. Basically, for me, it would be विश्वास वो है कि I trust that you are feeling the same thing what you are saying. That's the deepest. क्योंकि अगर आप उस level पर उसको ले आएंगे तो बाकी सारी चीजें तो सारी आराम से उस parameter के अंदर fit हो जाएंगे. लेकिन deepest ये है कि छोटी से छोटी बात में आप वो ही कह रहे हैं
1: जो आप सोच रहे हैं,
0: जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं. आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. विश्वास तभी टूटेगा ना.
1: हाँ, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने आपको जैसे है आप जिस भी रूप में आप वैसे स्वीकार लिया, और ये मैं ये मेरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं. आप एक तरह के थे जब मैं आपके साथ मिली, आपके साथ एक रिश्ता शुरू हुआ. आप सच में विश्वास रखते थे, सच में. एक जनरल बात मैं कर रही हूँ. जिंदगी चलती गई, आपको देखा मैंने, धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सच पे जो आपकी अधिकता जिसको मैं बहुत प्रशंसा करती थी, आपको एक्सेप्ट कर रही थी या कर रहा था, आप बदल गए. जिंदगी ने बदलाया या जो भी हुआ, मैंने देखा कि
0: आप झूठ बोलना शुरू कर दिया.
1: आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया. तब भी मैं आपको एक्सेप्ट करती जाऊं, बुरा लगा मुझे क्योंकि मैं उस आपकी जो वो गुण था उसको बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन तब भी मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ. और यहाँ मुझे लगा कि मेरी ट्रस्ट ब्रेक हो गई.
0: नाउ आई वुड थिंक इन दिस कि आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, ये आपकी गलती है या मेरी गलती है?
1: मेरे सामने नहीं बोल रहे हैं, कहीं और बाकी व्यवहार में
0: नहीं. पहले यहाँ सी द होल एंटायर रिलेशनशिप इज फर्स्ट द एनर्जी एक्सचेंज हियर बिटवीन टू पीपल. क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तब होगी ज्यादा जब आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं. अगर आप कहीं और बोल रहे हैं तो आई वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि आप वो क्यों बोल रहे हैं, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट विद यू. लेकिन मेरे सामने जब आप बोलते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ योर एंड माई ट्रस्ट, यू नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रस्ट विद द अदर पीपल. लेकिन हम कहते हैं मैंने आप पर पूरा विश्वास किया, मैंने हर चीज पर पूरा विश्वास किया, आपने झूठ बोला तो मेरा ट्रस्ट टूट गया. हम ये नहीं उस पर विचार करते कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलना क्यों पड़ा.
1: जब मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ या किया जो आपको पसंद नहीं आए,
0: अगेन

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और stable भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब। You know, तो then I cannot say कि I'm internally stable, but now I'm being assertive। तो internal stability means, you know, no trace ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं, कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं।

0: तीस नशा
1: पहला नशा पहला खुमार
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंदवान.
3: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत है आप सबका. विचारों की एक लंबी कतार से गुजरते हैं हर रोज हम और आप. विचार जो हमारे अपने ही दिमाग में उपजते हैं और फिर हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं. अगर विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं. लेकिन जब विचार हमारे हाथ में नहीं रहते, जब वो थॉट्स हमारे हाथ से परे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स के ताने बाने में या फिर माया जाल में फंसकर रह जाते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा भी कहीं न कहीं बदल जाती है. इसीलिए जरूरत यह है कि अपने विचारों को पहचानें और फिर अगर लगता है कि वो नेगेटिव है तो उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से न सिर्फ हमारा डिप्रेशन खत्म होगा बल्कि सही खुशी, सही हैप्पीनेस को जो हम तलाश रहे हैं वो हमें मिल सकती है. किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमने कई स्टेजेस से गुजरे थे पिछले अपनी कड़ियों में. हमने ये जाना था कि सबसे पहले है सजग होना, यानी कि अवेयर होना कि थॉट्स किस दिशा में जा रहे हैं. उसके बाद आता है कि कैच किया जाए, फिर हमें कहीं ना कहीं उन्हें अंडरलाइन करना है, पहचानना है, स्टॉप करना है, एंड देन वी कैन ट्रांसफॉर्म. हम बदल सकते हैं. आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अवेयरनेस से भी आगे बढ़ेंगे और कैच करेंगे उन विचारों को जो नेगेटिव है. इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. स्वागत है डॉक्टर साहब.
4: नमस्कार.
3: नमस्कार. और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी. आपका भी हार्दिक
5: ओम शांति.
3: ओम शांति. डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हमने एक वादा किया था अपने जितने भी दर्शक हैं, मैंने अपने आप से भी कहा था कि मैं ये पूरा प्रोसेस करने की कोशिश करूंगी और हमने किया भी कि 15 मिनट तो नहीं बैठा गया आज, लेकिन हाँ 4 से 5 बजे सुबह की जो हमने वक्त तय किया है, जो कोशिश की गई है, तो बिल्कुल बॉर्डर पे 5 बजने में 10 मिनट के अलार्म लगा के हमने बैठने की कोशिश की और 10 मिनट ही कोशिश ये की कि सजगता की कोशिश की जाए. एक एक्सरसाइज आपने बताई थी कि किस तरह से अपने आप को देखें और ऑब्जर्व करते जाएं, ये एक्सरसाइज आपने बताई थी जो आपकी साइकोथेरेपी का एक पार्ट था कि यहां से लेकर अपने पांव तक क्या कुछ हो रहा है मेरी बॉडी के साथ. एंड बिलीव मी, देयर वर अराउंड 10 थॉट्स विच केम विच आई कुड कैच, यू नो. सो दिस इज समथिंग विच एक्चुअली हमारे सभी दर्शकों के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि उनके मेल्स और फोन कॉल्स का मैं इंतजार कर रही हूं. लेकिन ये एक जो अवेयरनेस का प्रोसेस है कि सजगता का, इसको जब ये है, इसमें अब कैच कैसे करना है उनको. आए तो थे वो थॉट्स, लेकिन वो आए और गए, आए और गए. उसमें से 10 रजिस्टर जरूर हुए, लेकिन वो जब तक मैं पहुंचती उस वक्त तक, तब तक वो गायब हो चुके थे. तो ये जो अवेयर होने के बाद कैच करने वाली बात है, तो हम वो कैच कैसे करेंगे.
4: तो एक सबसे बेस्ट ये जो 10 विचार जो आपको आए उसी को कैच करो. हो सकता है कि आप लिख नहीं दे पाए, है ना, उस समय याद नहीं रहे, तो उसको लिख लो. भले उठ भी जाना पड़े उठ जाओ, फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करो. अपने पास ही रखो डायरी और एक एक वर्ड लिख लो, ज्यादा भी जरूरत नहीं है. क्योंकि एक ही शब्द आपने लिख लिया कि भी बेटी का टेंशन, आपको वो विचार आया अभी बेटी की एग्जाम है, नो डॉक्टर्स एग्जाम, आपने लिख दिया, आपको याद आ जाएगा. फिर आपको और कुछ आया और एक प्रोग्राम करना है, उसके लिए तैयारी कर.
3: अच्छा, एक शब्द ही लिख दो.
4: हाँ, तो पूरी बात आपको याद आ जाएगी.
3: फिर मुझे लगा कि वो मैं लिखने लग जाऊंगी तो मेरा पूरा वो चेन टूट जाएगा.
4: अगर याद रहे तो बेस्ट है, अगर याद न रहे तो लिखो. और भले एक दो दिन नहीं भी लिखो, क्योंकि रिपीट होने, जो आपका रूट कॉज है, जिसको आपको कैच करना है, वो थॉट आपके रिपीट होने. पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार के विचार आते हैं. उस समय जो आपको विचार आते, एक तो जो काम करना है उसके विचार आएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें आपके जीवन की है उसके विचार को चाहिए,
3: जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उसके
4: भी आ सकते हैं, और जो रूट है उसके भी विचार आ सकते हैं. जो आपको बार बार विचार डिस्टर्ब कर रहा है कि जो डिप्रेशन का कारण हो सकता है, डिप्रेशन न भी कहो, जीवन में जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जो पूरी खुशी को हमें अनुभव करने नहीं देते हैं, उसका कारण उस विचार में आ जाएगा.
3: डॉक्टर साहब, इसमें हमें ये तो डिफाइन हम नहीं कर सकते अभी कि ये विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव है.
4: अभी नहीं,
3: जब हम एनालिसिस करेंगे तब

0: करेंगे
1: अब भले उसको डिफाइन नहीं भी करो, परंतु ये प्रोसेस में रूट आएगा। मैं आपको एक दो उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का था जो निर्णय नहीं कर पा रहा था। एक बार मैं माउंट आबू में ही था तो वह मेरे पास आया और उसने कहा डॉक्टर मुझे दो मिनट चाहिए। तब मैं भी जा रहा था लेकिन फिर उसने कहा नहीं नहीं बस मुझे दो तीन मिनट का ही वक्त चाहिए। तो मैं कह ठीक है, और उसने ये बात बताई कि मेरी दिक्कत यह है कि छोटी छोटी बातों में भी मैं निर्णय नहीं कर रहा। छोटी सी भी बात होगी कि ये करूं या यहां जाऊं, ये ट्रेन में जाऊं या उस ट्रेन में जाऊं, तो वो भी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका कारण क्या है? थोड़ा सा एक और भी टेक्निक होती है साइकोथेरेपी, जब करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो बैठ करके मैंने उससे थोड़े से कुछ प्रश्न पूछे, उसको कुछ बातें याद करने के लिए कहा, और जब वो बातें कही तो बस चार पांच मिनट में ही यह बात सामने आ गई। इसको उसे कैच करने की जरूरत है, बल उसने तो पूरा प्रोसेस नहीं किया था। एक प्रकार से कहेंगे कि इंटरव्यू में यह बात सामने आई, लेकिन ये सेम बात इस प्रोसेस में भी उभर करके आ सकती है।
0: वो कैच इसीलिए करता है क्योंकि आप थे यहाँ। हाँ, खुद कैच
1: खुद को करना है। हाँ।
0: और हर रोज आ रहे हैं, हर रोज आप तो नहीं मिलेंगे,
1: मिलेंगे
0: ना?
1: हाँ।
0: तो हर रोज तो हम ही हैं जो हम करेंगे,
1: और हम ये भी चाहते हैं कि भी व्यक्ति खुद करे।
0: हाँ।
1: डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम से कम हो जाए।
0: सेल्फ सफिशियंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद अपना ऊपर कंट्रोल करेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी, एक बात जो सामने आ रही है कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अध्यात्म जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग चीज है, एक अलग बात है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और विज्ञान जो है वो बिल्कुल सही खरा उतरता हुआ है कि भाई सब कुछ चेक किया गया है उसके ऊपर है। जो आपने अभी थ्योरी बताई हमें, जो बात करने का तरीका कि किस तरह से अपने आप से बात करनी है, सजगता का एक जो पूरा था, इसमें कहीं ना कहीं पूरी साइंटिफिक थ्योरी है जो आपने बता रहे, जो साइकोथेरेपी का एक हिस्सा है ये जो पूरी टेक्निक है। अध्यात्म क्या कहता है? मेडिटेशन इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट ओनली?
2: आई थिंक इट्स सिमिलर। मतलब वो वर्ड्स एंड फ्रेजेज एंड द वे ऑफ डूइंग इट कुड बी लिटिल डिफरेंट, बट विधि तो सेम ही है। विधि यही है कि मन को क्वाइटन करना है, तो क्वाइटन करने से जो बहुत डीप रूटेड थॉट्स जो दबे हुए थे वो अपने आप इमर्ज हो जाएंगे, तो हम उनको कैच कर पाएंगे। कई ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो बचपन में कुछ मेरे साथ हुआ हो और मैंने उसको पूरी लाइफ अभी तक भूले हुए थे, लेकिन वो सबकॉन्शियस में बहुत ज्यादा डीप रूटेड है और वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो लेकिन जब माइंड साइलेंट हो जाता है तो वो इमर्ज हो जाती है बात बिल्कुल। तो इट इज द सेम थिंग, लेकिन द वे ऑफ डूइंग इट वुड बी लिटिल डिफरेंट, बट वी गेट द सेम रिजल्ट। एंड इनफैक्ट अभी वो समझ में आ रहा है कि राजयोगा भी एक साइकोथेरेपी की तरह, यू नो इट इज साइकोथेरेपी, और इसलिए हम देखते हैं कि उसके अंदर इतना चेंज हमारे अंदर आ जाता है। इट्स जस्ट दैट साइकोथेरेपी करने के लिए हमें एक डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, तो समवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर। तो डॉक्टर कितने अच्छे हमें जो मिले डॉक्टर, और हमारा वो फेथ कितना होगा डॉक्टर के ऊपर, और हम उस विधि को कितना अपनाएंगे। लेकिन राजयोग क्योंकि हम अपनी स्व इच्छा से करते हैं, अपने ही इंटरेस्ट से करते हैं, तो वी गिव इट आवर फुल, यू नो, फुल।
0: इनफैक्ट सबसे बड़ी बात अपने साथ कर रहे हैं ना।
2: हाँ।
0: तो सबसे ज्यादा फेथ तो अपने ऊपर होगा ही।
2: बिल्कुल, तो मे बी वो रिजल्ट मिल जाता
1: है। फास्टर,
2: या इट विल बी फास्टर।
1: पंद्रह मिनट करो, क्यों राजयोग में 15 मिनट करने की भी जरूरत नहीं। तो सचमुच आप करने लगो, थोड़े दिन लगेंगे, एक दिन में न भी हो, आप अगर राजयोग का अभ्यास करने लगे तो ऐसे एक सेकंड में आएगा। आप मेडिटेशन कर रहे, विचारों को थोड़ा शांत, इमीडिएटली आएगा कि यह कारण था। देखो मैं आपको एक दो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। वो जो स्टूडेंट का मैं आपको उदाहरण बता रहा था, उसके साथ जब ये डिस्कस किया तो उसने खुद ये प्रिसाइसली वो याद कर पाया। उसने कहा कि भी हमारा बॉक्स बनाने का बिजनेस है, छोटे मोटे अलग अलग साइजेस के वो लोग बॉक्स बनाते थे। कहा कि भी एक बार वो बॉक्स की छोटी सी फैक्ट्री होगी, उसमें बना रहे थे, सभी वर्कर फ्री थे, तो उसने सोचा कि भी एक स्पेसिफिक साइज का बॉक्स है, उसकी डिमांड आती ही है, आज नहीं है समझो एक मास के बाद आएगी, तो वर्कर्स क्यों फ्री बैठे रहे, चलो मैं उसके 200-500 बॉक्स बनवा लेता हूं। तो उसने कहा ये बॉक्स बनाओ। तो थोड़ी देर के बाद उसके फादर आए, अरे क्या गलती कर दी, तुम बुद्धू हो, तुमको अक्ल नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, इतना भी काम तुम्हारे से नहीं आता, डांटने लगे। तो मैंने फिर जो थोड़ा गहराई में गया कि वहां उसका रूट है। उस समय जो फादर ने सुनाया

0: पीक पहुंच गया और वो सदा अभी उसे याद है, भले वो कॉन्शियसली भूल गया लेकिन गहराई में है मन की और सदैव वो उसे डिस्टर्ब करता है।
1: तो एक बार डांटा, एक बार डांटे में किया,
0: इफ यू आर इमोशनल, एक बार में भी, क्योंकि उसका वो इमोशनल हुआ होगा, रोया भी होगा, उसे बहुत फील हुआ होगा, फादर ने भी जिस टोन में सुनाया, अगर वो गहराई में चला गया तो बार बार उससे सामने आता है, छोटा भी निर्णय करना तू नहीं कर पाएगी, तेरे से ये नहीं होगा।
2: एक्चुअली एक बार नहीं होता है
1: ये, कहीं ना कहीं कांस्टेंट वो कहते रहे नहीं।
2: एक बार दूसरा व्यक्ति कहता है, हम बार बार उसको अपने आप को सुनाते हैं। आप अगर अभी मुझे कुछ कहकर चले जाएं और फिर कभी ना मिले, आप शायद एक ही बार कहेंगे लेकिन मैं अपने आप को 100 बार वो बात सुनाऊंगी,
0: 1000 बार भी कहेंगे,
2: 1000 बार भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती, उन्होंने ऐसे कैसे,
1: आई रिमेम्बर दैट,
2: वी काइंड ऑफ यू नो री अफर्म इट बाय एंड वी कैन डू दैट फॉर इयर्स। हम बहुत सालों तक किसी की कोई बात को पकड़ कर रखते,
1: आई रिमेम्बर दैट, यू नो लाइक वंस समबडी टोल्ड मी यू आर manipulator and I kept on it. I never met that person again, but I kept on telling everyone that that person said that I'm a manipulator, and am I a manipulator? It became so difficult, you know, like I can understand that,
2: you know, and then you say to yourself, but I'm not a manipulator, but that person said I am a manipulator.
1: Why did that person say that, you know, like I kept on doing it, it took me a long time, yes I realized that, and I never met that person.
2: So that whose fault is it?
1: Mine.
2: Abhi hum kya jaldi se kehte hain, it's that person's fault, unhone mujhe kaha, he said it only once. He said it only once and went away. See, that's
1: and whether he meant it or not, I'm saying like whatever he was trying to do, I don't even know that.
2: And I know myself better. So you know, I just need to. जब उन्होंने एक बार कहा, it's not that कि हम लोगों की बातों को बिल्कुल reject कर दें, क्योंकि कई हमारे बहुत भलाई के लिए कुछ कह रहे हैं, हम उसको ले लें, analyze कर लें, useful है, उसको accept करें, अगर अपने अंदर कोई नहीं तो
1: finish करें।
0: जो राज्यों से fast
2: होता है, बहुत fast होता है। इट्स वेरी फास्ट,
0: और एक उदाहरण
2: अटैच हो जाता है ना बहुत जल्दी कि ये रियली मेरे फायदे के लिए कुछ कह रहे हैं या अपने इनके परसेप्शन यू नो इनको उस तरह से दिखाई दे रहा है, बिकॉज लाइक दिस व्हाट इज हैपनिंग कि पीपल कैन रियली मैनिपुलेट अस, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा कहकर जा सकते हैं जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत डीप लास्टिंग।
0: और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि स्पष्ट होगा
1: जी
0: कि भल राजयोग से हम करें बहुत फास्ट होगा, सीबीटी वो स्लो प्रोसेस है थोड़ा। और एक लड़की का किस्सा है कि शी वॉज फीलिंग इन्फीरियर, एंग्शियस, इवन नो टू मच डिस्टर्ब, डिप्रेशन एंग्जाइटी दोनों थी उसमें, बार बार डिस्टर्ब होके आती थी। फिर एक बार ये तो प्रोसेस में हुआ, साइकोथेरापी में उसने खुद कहा कि मेरे से बड़ी बहन है, और जब मेरा जन्म हुआ तब पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा हो, लेकिन एक तो बेटी हुई तो उनको दर्द था, कहते बोले मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं कहा लेकिन मेरी नानी हमेशा टोकती थी कि हमको तो बेटा होना चाहिए था। और दूसरी एक इंसिडेंस उसने खुद कहा और वो एक जगह पर रूट हो सकता है, तो शिवानी बेन ने बताया ना, वो बोले इवेंट तो एक बार हुई लेकिन उसने हजारों बार रिपीट किया। उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस था, तो एक बार उनकी जो उससे बड़ी बहन थी, वो दोनों बहनें जाती थी प्रिंटिंग प्रेस में, फादर को हेल्प करती, पहले जो मैनुअल मशीन आते थे ना, तो मैनुअल मशीन से वो कोई नहीं था वर्कर, तो बड़ी बहन है वो मशीन को स्टार्ट करो, फादर आए कहीं नहीं नहीं नहीं बेटे तुम नहीं चलाओ, तुम्हारे मसल्स आ जाएंगे, तुम लड़की हो तुम ये नहीं चलाओ। फिर कहा कि 2-3 दिन के बाद फिर से ऐसा हुआ कि वर्कर्स नहीं थे, मैं अकेली थी तो मैं भी चलाने लगी, मैं चलाती गई काफी देर तक, फादर आए उन्होंने बोला ही नहीं मुझे तुम ये नहीं करो, उसका मतलब है कि दे डोंट लाइक मी, ये इंटरप्रिटेशन कुछ न कुछ भी नहीं, उसका हाँ रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा, टू मच वर्क हो सकता है, नो रजिस्टर ही, लेकिन उसने अभी बहुत बार ये बात को रिपीट की, थोड़ी भी बार की लेकिन इमोशनली कही होगी, जिससे बस ये हो गया कि भी पेरेंट्स बड़ी बहन को प्यार करते मुझे प्यार नहीं करते।
2: ना दिस इज अवेयरनेस एक्चुअली, जो हम कह रहे ना कि इस बात जब कोई एक हमें कुछ कहकर चला जाए और हम बार बार उस चीज को अपने आप से रिपीट कर रहे हैं, अवेयर सी व्हाट एम आई डूइंग, यू नो, अगर हम उस टाइम रुक कर देख लें कि उसने एक बार कहा ये हो सकता है सच नहीं है, चेक कर लिया और देख लिया सच नहीं है। व्हाई एम आई टॉर्चरिंग माई सेल्फ,
1: व्हाई डू वी डू दैट, आई हैव डन दैट,
2: वी ऑल हैव डन
1: दैट, आई एम सेइंग आई वेंट थ्रू माई होल सेल्फ एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट वेदर आई एम अ मैनिफेस्टर ऑर नॉट, एंड आई फाउंड दैट नो आई एम नॉट, आई

0: that analysis where it, I found, but I kept on repeating. Why do we do that?
1: Because we are not sure.
0: Hmm.
1: We're not sure. क्योंकि public opinion हमारे लिए बहुत important है.
0: हम
1: अपने आप को क्योंकि उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते. अगर मैं आपसे अभी कहूँ ना कि अपनी विशेषताएं कुछ सुनाइए, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता. उन लोगों से पूछो जो मेरे आसपास रहते हैं. It's like saying जो मेरे आसपास लोग हैं वो मुझे मेरे से अच्छा जानते हैं. इसलिए ज्यादातर हमारे लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम, और वैसे भी हम औरों की तरफ ज्यादा देखते हैं ना, इसकी विशेषता, इसकी कमजोरी, अपनी नहीं देखते. तो इसलिए अगर हमें कोई कह दे कि आपके अंदर ये विशेषता है, कई बार झूठी महिमा हो सकती है वो. It could be false praise, but because somebody else has said, it's true. If somebody criticizes, वो झूठ हो सकता है, बट बिकॉज somebody else has said, it must be true.
0: ये सब कहीं ना कहीं सच्चाई से थोड़ा सा तो
1: क्योंकि किसी और ने कहा. जब हम अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, अपने आप से मिलना शुरू कर देंगे, तो फिर पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा. कोई कुछ कहेगा, सुने, चेक, डिस्कार्ड और एक्सेप्ट एंड मूव ऑन.
0: आई थिंक एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू रीच दैट लेवल. इट डजेंट रियली मैटर यू नो व्हाट अदर्स आर सेइंग, बिकॉज सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन
1: सेल्फ. जब हम अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए तो दूसरा क्या जानेगा हमें. हमारे से अच्छा दूसरा कैसे जान सकता है हमें. इट्स नॉट पॉसिबल, बट वी गिव देम दैट अथॉरिटी.
0: तो हम सजगता पे थे कि सजग रहने के लिए जो हमने एक पूरा प्रोसेस किया है, और उसके हमें फायदे. सजगता आते ही पहला ये एहसास कि पब्लिक ओपिनियन रियली डजेंट मैटर, ये एक बात समझ में आती है. तो राजयोग में आपने कहा कि जल्दी भी कैच कर सकते हैं हम. तो राजयोग के लिए कुछ और कैसे, जैसे वहां बैठना तो वही पूरा तरीका है, उसके बाद क्या हमें कुछ और सोचना चाहिए?
1: क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ना, ये रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. इवन ये होल जो प्रोसेस है, इट्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द आउटर टू द इनर. जो थॉट्स है वो कौन क्रिएट कर रहा है? आई द सोल. मैं आत्मा जब संकल्प करती हूँ तब उसको हम मन कहते हैं. मन आत्मा की ही फैकल्टी है. तो अब अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस, अभी जो हम कर रहे हैं कि बॉडी की एक एक पार्ट पर फोकस करें, ये बहुत हेल्पफुल होगा. क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में है. मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, ये अभी तक बहुत कूट कूट के भरा है. एंड फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू द स्टेज कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है. तो जितनी जल्दी हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तो हमारे ये सारे एक्सटर्नल जो बैरियर्स हैं, ये बहुत जल्दी हम इनसे डिटैच हो जाएंगे. तो राजयोग में हम ये अभ्यास करते हैं कि यू नो रीच टू हु एम आई, नो टॉक टू योर सेल्फ हु एम आई. एंड बिकॉज नॉलेज मिल गई है तो आंसर अपने आप निकलेगा. तो हम जब बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स जैसे आते हैं, जैसे गिरीश भाई ने भी कहा कि बच्चों के, हस्बैंड के, ये सब आएंगे. तो एवरी टाइम दैट थॉट कम्स, फर्स्ट तो आई कीप सीइंग कि किस चीज के थॉट मेरे को बार बार आते हैं. इसका मतलब मैं अभी भी अपने आप को उस चीज के साथ बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर रही हूँ. मे बी एज अ मदर, मे बी एज वट एवर, एज अ प्रोफेशनल. देन आई अगेन टेल माई सेल्फ, येस दिस इज माई रोल, लेकिन ये मैं नहीं हूं. अभी जो बैठा है मेडिटेशन करने, दैट्स नॉट a mother, that's not an engineer, that's not a teacher. जो meditation अभी करने बैठा है वो कौन है? वो मैं हूँ. मैं कौन हूँ? क्या मैं एक मदर हूँ? नहीं, मदर मेरा रोल है.
0: मैं इवन कानुप्रिया भी नहीं हूँ.
1: नहीं, कानुप्रिया तो मेरा नाम है सिर्फ. कानुप्रिया तो मुझे एक आइडेंटिफिकेशन लेबल मिला है, तो दैट आई कैन एड्रेस यू एज कानुप्रिया. यू नो आई एड्रेस पीपल बाय नेम. नहीं तो नाम नहीं है. मैं नाम नहीं हूँ. मैं तो शरीर भी नहीं हूं. ये शरीर भी मेरा है, मेरा हाथ, यू सी. तो ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूं? यू नो दैट्स हाउ आई कीप ऑन टॉकिंग टू माई सेल्फ, कि मैं रिलेशन नहीं हूं, मैं डेजिग्नेशन नहीं हूं, मैं तो नाम भी नहीं हूं, मैं तो शरीर भी नहीं हूं. सो ब्रेक डाउन ऑल दोज थॉट्स विच आर कमिंग. सो देन मैं कौन हूं? सो स्लोली वो सारी थॉट्स जो आ रही थी, जो सारे दिन में बहुत ज्यादा इंटेंगल, वो धीरे धीरे साइड होते जाएंगे. फाइनली आई कम बैक टू द ट्रूथ, द रियलिटी, कि आई एम दैट ब्यूटिफुल कॉन्शियंट एनर्जी. मैं एक आत्मा हूं. मैं कैसी आत्मा हूं? यू नो, मैं कहाँ रहती हूं? मेरा स्वरूप कैसा है? व्हाट डू आई डू द होल डे? दैट्स हाउ आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ. देन द आंसर्स आई स्टार्ट गिविंग टू माई सेल्फ बेस्ड ऑन द नॉलेज. क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है कि हमें नॉलेज मिले कि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप. मुझे शांति चाहिए नहीं,

0: आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप, मुझे प्यार चाहिए नहीं। इनिशियली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। देन आई टॉक टू माई सेल्फ, इज इट ट्रू कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ? मुझे, मैं तो सारा दिन अशांत रहती हूँ, मैं तो कितना
1: टेंशन रहती हूँ,
0: तो कैसे हो सकता है कि मैं ऑलरेडी शांत स्वरूप हूँ? यू नो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन एंड दिस कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड देन आई सेड हाँ मैं शांत स्वरूप हूँ क्योंकि मुझे शांति अच्छी लगती है, तो इसीलिए मुझे वो चीज की आज भी अट्रैक्शन हो रही है। मैं कितना भी गुस्सा करूं मुझे गुस्सा अच्छा लगता नहीं है, अच्छा हमेशा वही लगेगा जो हमारी नेचर होगी, जो नेचुरल होता है, अननेचुरल चीज अच्छी नहीं लगती। देन आई स्टार्ट, दैट्स द प्रोग्रामिंग दैट गोज ऑन कि मेरी ओरिजिनल नेचर पीस है। फिर कोई टेंशन वाली थॉट या कोई बीच में आ गई, ये थॉट क्यों आ रही है जबकि मेरी ओरिजिनल नेचर, यू नो, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायलॉग एंड दिस इज अ प्रोग्रामिंग दैट आई विल डू अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर आई फीड इन ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस इन टू दिस कंप्यूटर दैट आई एम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी प्योर कॉन्शियस चैतन्य शक्ति आत्मा जो यहाँ बैठकर इस पूरे शरीर को चलाते
1: हैं। ये बातचीत जो हो रही है, तर्क वितर्क है, ये मेरा दिमाग
0: दिमाग इज ब्रेन,
1: मेरे दिमाग आत्मा के साथ कर रहा है या क्या हो रहा है?
0: जी, दिमाग इज अ ब्रेन, तो ब्रेन फिजिकल, ब्रेन फिजिकल है,
1: मेरी मेरा मन कर रहा है,
0: हाँ
1: मेरा माइंड कर रहा है,
0: माइंड करता है। ये दो लॉयर्स हैं और एक जज होता है।
1: जज इज
0: बुद्धि, इंटेलेक्ट, हमने पहले भी कहा था। आत्मा जब सोचने का काम करती है तो वो मन है, जब आत्मा निर्णय लेने का काम करती है तो वो बुद्धि है जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं। और फिर जब वो इंटेलेक्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया और हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, यस मैं हूँ शांत स्वरूप, फिर वो धीरे धीरे मेरा संस्कार बनता जाता है। तो आत्मा ये तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये दो लॉयर्स वो मन है, मैं शांत स्वरूप हूँ, नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है,
1: लॉयर मन ही दोनों
0: दोनों साइड का, यू नो, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस दोनों मन ही कर रहा है। क्योंकि मन एक नए बिलीफ सिस्टम से थिंकिंग चल रही है और एक पुरानी बिलीफ सिस्टम की थिंकिंग भी बीच बीच में उसको कट करती है। फिर धीरे धीरे बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज चेंजिंग नाउ ना, थॉट की जो सोर्स थी बिलीफ इन्फॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस, अब हमारी इन्फॉर्मेशन की सोर्स पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमने भरनी अब शुरू की है। पहले भर नहीं रहे थे, पहले नेगेटिव था तो थॉट नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव भरना शुरू किया तो वो वाली थॉट्स भी शुरू हो गए,
1: तो वो तर्क ज्यादा स्ट्रांग होने लग गया
0: है।
1: क्योंकि वो सही लगने लग गया
0: है। एब्सोल्युटली। फिर जो आत्मा है उसको सच्चाई तो हमें हरेक को पता है, अंदर हरेक को पता है कि गुस्सा नहीं अच्छा लगता, तो फिर बुद्धि वो आंसर देगी, यू नो, दिस इज वॉट यू आर, दिस इज वॉट यू आर। एंड कुछ दिन, जैसे कहा एक महीना करते रहिए, जैसे शायद उतना, मतलब एवरीबडी विल टेक देयर ओन टाइम, सो वी विल नॉट रियली से के यू नो इतना टाइम लगेगा। थोड़े दिन के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट जस्ट बिकम्स नेचुरल एक्सपीरियंस। और इस चीज को फिर हम सारा दिन में, जो हमने कहा ना एक एक मिनट, क्योंकि सारा दिन में फिर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ऑफिस में घुसे, मैं कौन हूँ जो ऑफिस जा रहा है, मैं कौन हूँ जो अपने परिवार से बात कर रहा है, ये बार बार एक रिविजन जब होती जाती है तो धीरे धीरे वी आर मूविंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस
1: टू अगेन
0: सोल कॉन्शियसनेस। अगर आप दिन में एक मिनट पे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आधा मिनट पे सोल कॉन्शियस है, आप ईगोलेस हैं उस टाइम। सोल कॉन्शियसनेस मतलब ईगो नहीं, इट्स ईगोलेस। और जितनी देर आप ईगोलेस हैं, टेंशन, एंग्जाइटी एंड द होल लिस्ट,
1: तो बस एक मिनट भी अगर हम ईगो लेस हैं,
0: वेरी बिग,
1: लेकिन एक मिनट के बाद ही हम फिर ईगो में आ जाएंगे,
0: लेकिन वो धीरे धीरे परसेंटेज
1: कम होता जाएगा। ओके, वंडरफुल।
2: अंडरस्टैंडिंग आएगी तो नहीं होगा फिर।
1: जी,
0: अगर हम एक मिनट करते हैं ना, मैं शांत स्वरूप, उसका इफेक्ट कम से कम 5-10 मिनट रहेगा, फिर उसके बाद फिर वो चेंज होता जाएगा ना धीरे धीरे।
2: जो ईगो के थॉट है वही चेंज हो जाएंगे। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ईगो वाला और उनको सोचता है सेल्फ एस्टीम अपने बारे में, तो मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली हम सेल्फ की ओर ही डायरेक्ट हो,
1: कि अगेन कॉन्स्टेंट ये चलता रहेगा अपने साथ। ये प्रोसेस जो हमने सुबह 4 से 5 के बीच में या कोशिश की उससे हम शुरू करें, और जैसे कि आपने कहा कि मेडिटेशन में भी हमने यही देखा जो पूरा राजयोग की आप बात कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वही बात, एक पॉजिटिविटी, एक जो किस तरह से अपने आप के बारे में अवेयर होना कि मैं कौन हूं और मेरे क्या क्या विचार चल रहे हैं, ये एक वॉच डॉग की तरह भी है।

0: बुद्धि तो वो ये देख रही है कि क्या हो रहा है, ये अवेयरनेस है, सजगता है. देन वी कैच द थॉट्स विच वर देयर. नेगेटिव पॉजिटिव हम बाद में आएंगे एनालिसिस पे, वो मेरे ख्याल से अंडरलाइन होगा फिर.
1: फिर वो उसमें अंडरलाइन डिफरेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर,
0: वो एनालिसिस करेंगे जब, तभी हम वो अंडरलाइन पे आएंगे. वो अंडरलाइन जो है हम अगली कड़ी में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त खत्म हुआ. लेकिन बिल्कुल ये दो एस्पेक्ट्स जो थे, दो हम स्टेप्स पे थे. अवेयरनेस हमने पहले ही समझ ली थी थोड़ी बहुत, सजगता. आज हमने एक मेडिटेशन के एस्पेक्ट को भी समझा कि मेडिटेशन इज अगेन अ साइंस बेसिकली, यू नो, अ वे ऑफ लाइफ. एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज, अवेयरनेस अवेकनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट. दिस इज वॉट द रियलाइजेशन इज कमिंग नाउ टू अस. थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत क्लैरिटी से ये बात सामने आ रही है कि अवेकनिंग इज मस्ट, अवेकनिंग हैज टू हैपन, बट इट शुड हैपन एट अर्ली एज. दिस इज वॉट आई फील. थैंक यू सो मच. खुद को तलाशने के इस पूरे सफर में आज एक बहुत खूबसूरत पड़ाव था, जब हमने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से मेडिटेशन से हम अपनी आत्मा से रूबरू हो सकते हैं, हम खुद को पहचान सकते हैं. ये एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप राजयोग मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में जा सकते हैं और इस मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका अनुभव भी कर सकते हैं. ये जो मेडिटेशन का कोर्स है ये निःशुल्क है. और आपको बता दें कि दुनिया के 120 देशों में 8000 सेंटर्स है, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स जो हैं, और उसके अलावा भारत के कोने कोने में ये सेंटर्स स्थापित हैं. तो अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसी के साथ अब वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसकी अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात. तब तक के लिए दीजिए इजाजत.
2: आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन. खुश रहो, खुशियां बांटो.
3: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
4: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना, नीचे करना है. ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है. हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: जब भी हम जीवन की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं, तो रचयिता या रचनाकार की बात करते हैं, और सबसे पहला नाम जो हमारे सामने उभर के आता है वो है माँ का। माँ बगैर क्रिएशन या रचना संभव नहीं है, या यूं कहे नारी के बगैर जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। नारी जीवन चक्र का वो सेंट्रल पॉइंट है, वो धुरी है जो जीवन के अलग अलग चीजों को बांध रखती है और आगे बढ़ाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी माँ का, उसकी बहन का, उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का हाथ होता है। बट उन नारियों का क्या जिनको हम कई बार हमारे समाज के बाहर समझते हैं, जिनको हम समाज के दायरे के बाहर समझते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम में साथियों आज मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में एक खास मेहमान है। ये वो खास मेहमान है जिन्हें भारत सरकार ने 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। एक नारी को नारी शक्ति पुरस्कार दिया नारी उत्थान के लिए, स्पेशली उन महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए जिनके जीवन के बारे में शायद कोई सोचना भी नहीं चाहता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उन महिलाओं की, उन नारियों की जो कि यौन उत्पीड़न का शिकार हैं और जीवन की परिस्थितियों में धक्का खाते हुए वो वैश्यावृत्ति की ओर जा चुकी हैं। उर्मी बासु जी का जीवन उन्होंने इन महिलाओं के जीवन उत्थान के लिए, इनके परिवार के जीवन उत्थान के लिए, इनके बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित किया हुआ है। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से उर्मी जी ने हमारे लिए समय निकाला है। रेडियो मधुबन की तरफ से उर्मी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपने आज हमें ज्वाइन किया।
4: नमस्कार शांतनु भाई और ब्रह्म कुमारीज इंटरनेशनल सेंटर के मेरे सारे भाई और बहनों, दीदियों, सबको बड़ा नमस्कार। और जो लोग ये आपका ये अनुष्ठान सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार और मेरी शुभेच्छा।
3: दोस्तों जिन लोगों को ये पता नहीं है मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि उर्मी बासु जी कुछ समय पहले हमारे शांतिवन परिसर में आई थी जहाँ पर उन्होंने काफी समय रेडियो मधुबन में गुजारा भी, तो वो वहाँ से हम शुरू करना चाहेंगे। उर्मी जी आज की बातचीत, आपका वो अनुभव क्या था जब आप माउंट आबू आए, आबू में आप वहाँ के लोकल लोगों से भी मिले, तो हमारे जो श्रोता है वो आबू निवासी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज योर फीलिंग जब आप यहाँ पहुंचे?
4: मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ा सा लेकिन बहुत करीब की परिवार में आई और सबने मुझे इतना प्यार दिए, इतना सम्मान दिए, मैं विवलित हो गई। और मुझे लगा कि जगह का नाम है शांतिवन, और मैं बहुत मन में और पूरे मेरे दिमाग में बहुत शांति लेके मैं वहाँ से वापस आई। उस अनुभूति शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता, नहीं कर सकता। इस सभी को मैं मन के बहुत गहरा उपलब्धियों के जरिए बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश थी और बहुत परिपूर्ण, खुद को बहुत परिपूर्ण समझी।
3: परिवार की भावना तब आती है जब अंदर में परिपूर्णता की अनुभूति होती है, और जब आप अंदर से फुलफिलमेंट और परिपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब आप परिवार के बीच में हैं, अनजान लोगों के बीच में नहीं। उर्मी जी ने जब ये कहा तो मुझे ये भी याद आया कि उर्मी जी एक बहुत बड़ा परिवार हमारे साथ है जो कि रेडियो मधुबन का परिवार है। हमारे कितने श्रोता ऐसे हैं जो वर्षों से रेडियो मधुबन का साथ देते आए हैं, रेडियो मधुबन को केवल सुनते नहीं है, रेडियो मधुबन को रेडियो मधुबन बनाने वाले ये हमारे श्रोता है। और आपने एक काफी अच्छा समय, मुझे याद है हम चाय लेकर के हम बैठे थे और हमने स्टूडियो में काफी टाइम बिताया था। इट डिडंट फील एट ऑल दैट आप पहली बार रेडियो मधुबन आए, ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराने दोस्त हैं और रेडियो मधुबन में आए हैं। बट तब कारण कुछ और था, आज कारण कुछ और है। आज कारण ये है कि हम जानना चाहेंगे आपसे आपके जीवन की यात्रा, कैसे आपने शुरुआत किया। समाज सेवा में आप शुरू से जुड़े हुए रहे हैं, बचपन से ही आपका परिवार, आपके माता पिता समाज सेवी प्रवृत्ति के रहे हैं, सेवा भाव आपके रग रग में बसा हुआ है। तो सेवा का आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे, आप समझिए बुजुर्गों की सेवा चुन सकते थे, अनाथ बच्चों की सेवा चुन सकते थे, आप प्रकृति के प्रति भी अपनी सेवा भावना, मतलब सेवा के तो कई साधन होते हैं, कई रूप होते हैं। आपने इतना चैलेंजिंग, जो कि मैं कहूंगा बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है, लोग इस प्रकार की सेवा में जाने में थोड़ा डरते हैं कि भाई वैश्यवृत्ति से जो लोग जुड़े हुए हैं, जब मैं उनकी सेवा में जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसी कई बातें होती हैं। तो आपने कैसे इस सेवा की फील्ड को चुन लिया, थोड़ा वहां से शुरू करते हैं।
4: मैं 20 साल की थी जब टाटा इंस्टीट्यूट में गई अपनी सोशल वर्क समाज का कार्यक्रम पढ़ाई करने के लिए, और तब मुझे कभी लगा ही नहीं था कि

0: हे जो यौन कर्मी है उन लोगों के साथ काम करूंगी या वो हमसे अलग है, ऐसा कभी मुझे मेरे दिल में आया नहीं। मुझे लगा कि ये लोग बहुत पीड़ित है और बहुत पिछड़ा हुए है और समाज हर समय इन लोगों को अलग कर देते हैं और इनके लिए कुछ साधन नहीं है। तो मैंने उनका जो पेशा है उसके तरफ कभी नहीं देखे। मैंने वो सब लोगों को जो महिलाएं से मेरी मुलाकात हुई, मैं सोचे ये कोई भी मेरी बहन हो सकती, मैं मेरी कोई भी मेरी दोस्त हो सकती, कोई भी मेरी बेटी जैसे हो सकती। इतने कम उम्र में ये काम करते हुए मैंने देखा लड़कियों को कि मैं हैरान हो गई। और एक बार के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ स्पेशल कुछ काम कर रही हूँ। ये डर मेरे मन में नहीं था क्योंकि मैं जिस परिवार से आई हूँ वहाँ मैं हमेशा मेरे बुजुर्गों को देखे कि साहस के साथ कोई भी डिसीजन लिए या कोई सिद्धांत लिए तो वो बहुत आसानी से, लेकिन उसका जो एकदम फाउंडेशन है उसकी स्थिति जो है वो हर टाइम बहुत ही साहस कर। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कुछ स्पेशल कर रही हूँ, कोई अधिक चीज नहीं कर रही हूँ। ये मुझे एक बार के लिए भी मेरे दिमाग में आई। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी उन दिनों मुझे एक मौका मिला, एक नहीं काफी मौका मिले ऐसा एक जगह जाने के लिए जहाँ ये सब औरतें जो महिलाएं जो यौन कर्म में काम कर रहे थे उनसे मिलने की। और तब मेरा उम्र बहुत छोटा था और मैं मेरे मन में उतना अनुभव नहीं था, उतना काम करने के लिए जो साधन जरूरत है वो मेरे पास नहीं थे। तो काफी समय लगा 1986 में मैं मास्टर्स कंप्लीट करी। फिर जाके 2000 में मेरे जीवन में एक ऐसा मौका आया जब मैं इन लोगों के लिए काम करने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी। शांतनु भाई कभी कभी आप मुझे ये वर्ड्स दिया करिए प्लीज।
1: आपने एक अपॉर्चुनिटी लिया जो कि हम समझते हैं कि आपको एक मौका मिला।
0: हाँ, एक मौका था और उन लोगों के लिए काम कर
1: जी। तो ये 2000 में आपने न्यू लाइट्स की शुरुआत की, राइट?
0: हाँ।
1: तो उस पे हम आएंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके माता पिता जो थे आई थिंक दोनों डॉक्टर्स थे, राइट? और जनरली ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स ही बनाना चाहते हैं, या मतलब ये इजी होता है ना, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुम ये कहाँ जा रही हो या कैसे, क्या था ये?
0: मैंने ना कभी मेरे पिताजी को डॉक्टर के रूप में देखी नहीं, डॉक्टर से ज्यादा समाजकर्मी की समाज सेवक की कर्मी से देखा। मैं देखती थी कि कोई बच्चा आया जो बहुत ही बीमार और बहुत ही मतलब उसका बहुत जबरदस्त डिहाइड्रेशन हो रहा है डायरिया के कारण, और मैंने बाबा को देखा दवाई देने से पहले ही वो बच्चा को लेके उसको माँ को दिखाते थे कैसे उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना के ORS कोई नहीं सिर्फ नमक और शक्कर का पानी लेके उसको कैसे बूंद बूंद पिलाया जाएगा और माँ को हेल्प करते हुए देखेंगे। सो मेरे मन में पिताजी का जो इमेज था, जो पिक्चर तस्वीर मेरे मन में था वो डॉक्टर कम और जनसेवक ज्यादा। तो इसलिए जब मम्मा ये डिसीजन ली कि हाँ पिताजी तो दवाई देके सब लोगों को हील करते हैं, लेकिन उनका काम के बाहर भी बहुत एक बड़ा स्थान रहता है जहाँ पर काम करने का बहुत ही बड़ा
1: अपॉर्चुनिटी है।
0: बाबा सब टाइम बोलते थे कि डॉक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं, डॉक्टर इंसान को बचाने के लिए, इंसान को सिखाने के लिए, इंसान का उपकार करने के लिए।
1: वाओ, आप समझ सकते हैं साथियों, जिनके अभिभावक जिनके परिवार में इस प्रकार के प्रिंसिपल्स इस प्रकार के उसूल हैं कि

0: डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। चिकित्सा ये पेशा होता ही इसलिए कि किसी के जीवन को बचाया जा सके, किसी को मदद पहुंचाया जा सके, किसी के दुख को कम किया जा सके। अगर कोई पिता अपने बच्चे को ऐसी परिभाषा सिखाता है तो वो पिता वो माता कितने महान है, और डेफिनेटली उनकी जो संतान है वो कितना महान कार्य आगे चल करके करेगी, इसका तो आज हमारे सामने सबूत उर्मी जी है ही। लेकिन उर्मी जी, मैंने पढ़ा कहीं पर कि आपके पिताजी चूंकि इतना सेवा करते थे, वो हर एक की सेवा करते थे, आपकी माता भी उनका साथ देती थी, एक बार उनके ऊपर हमला भी हुआ था, शायद उनको चाकू मारा गया था या कुछ, उसके बाद क्या आपने देखा उनके सेवा भाव में कुछ परिवर्तन आते हुए? क्या वो थोड़ा से ज्यादा सतर्क रहने लगे, या क्या मैसेज वो इवेंट ने, उस सिचुएशन ने जब आपके पिता पे जानलेवा हमला हुआ? स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथी के साथ तो कहानी सुनने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन क्या उसकी वजह से सेवा भाव में कुछ परिवर्तन देखा आपने? क्या वो सिर्फ जोश के साथ साथ अब होश से भी सेवा होती थी, या क्या रहा? मतलब कई बार लोग बोलते ना, तुम सिर्फ दिल से सेवा करते हो, दिमाग से सोचते ही नहीं हो, क्या सेवा में दिमाग से सोचना चाहिए? तो क्या है वो चीज अगर आप शेयर करेंगे?
1: उस घटना के बाद कोई परिवर्तन तो आया ही नहीं, परंतु मेरे पिताजी को उनके दोस्त लोग और काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स उनको आके बोलने लगे कि उनका नाम था स्वराज, क्योंकि वो स्वराज आंदोलन के टाइम में पैदा गए थे। तो बाबा को बोलने लगे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, तुम परिवार है तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे 3 बच्चे हैं, इन लोगों का सुरक्षा के लिए तुमको दूसरा कहीं जगह चले जाना होगा। तो बाबा ने बोला नहीं, यहीं पर मैंने अपना काम, पीपल लोगों का सहायता देने का काम शुरू किया, चिकित्सा के काम शुरू किया, यहाँ ये मेरा घर है, ये मेरा कर्म स्थान है, यहाँ से मैं कभी कहीं नहीं जा सकता। और उस घटना के 3 हफ्ता बाद जो लोग बाबा को छोरा भोंके थे और हमारा घर जलाए थे, हमको एकदम एक दिन में, वो डेट था 6 मार्च 1971, और अगर आप कभी, आपको आर्काइवल मटेरियल मिलेगा तो उसके 1-2 दिन बाद का न्यूज़पेपर में काफी इसके बारे में चर्चा होगी। तो उसके 3 हफ्ता बाद जब ये लोग जो सब कम उम्र के थे, जो हमारा घर अटैक कर रहे थे, बाबा को छोरा भोंके थे और घर जलाए थे, वो लोग जब आए ये बोलने के लिए कि उन लोगों ने कुछ गलती किए, बाबा ने जिस तरीके से उनको समझाए और उनको संवेदनशील होके उनके साथ पेश आए, तो मुझे वैसा लगा कि अगर हम वो कंपैशन, दूसरों को अंडरस्टैंड करने की जो हमारे में क्षमता है, तो उसको इस्तेमाल करें, तब कहीं भी हिंसा आगे नहीं बढ़ सकती। अहिंस पथ से वो चले, क्योंकि मेरे दादाजी वो भी गांधी जी के फॉलोअर थे और फ्रीडम मूवमेंट में थे, वो मिलिट्री ऑफिसर थे, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, वहाँ का नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि वो बाबा आमटे के साथ या इनके साथ गांधी जी के पथ में चल सके। जाके वर्धा में गांधी आश्रम में काम शुरू किए। तो ऐसा ये रहा हमारा फैमिली का शिक्षा।
0: तो मतलब शुरू से ही आप सेवा से जुड़े रहे हैं, मतलब आपका सेवा से जुड़ना तो नेचुरल लगता है, क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि आपके पूर्वज जो थे वो सदा से सेवा से जुड़े हुए थे।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये मेरे मन में नहीं आया कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ, अगर मैं ये पेशा में ना आती तो ऐसा पेशा में जाती जहाँ मेरा काम में भी लोगों का कुछ मदद मिलते। समझे? तो ये मेरे लिए आश्चर्य नहीं है, अगर मैं दूसरा कुछ करती, अगर मैं बैंकर होती, या अगर मैं पैसों के पीछे भागती, या अगर मैं कोई बड़ा सा एक कॉर्पोरेट जॉब ले लेती, उस धारणा, उस चिंता कभी मन में रहे नहीं। और आज मैं बहुत ही गर्वित हूँ कि मेरे जो भाई की लड़की, वो दिल्ली से मास्टर्स की, और वो अभी इस कोविड से पहले वो गाजा स्ट्रिप में रेफ्यूजियों के साथ काम कर रही है, करती थी तब, अभी वापस आई, फिर जाने की सोच रही है। तो उसके लिए भी वो तो चौथा

0: पीढ़ी हो गया, मेरे दादाजी, मैं और वो, तो हम हमारे ये एक परिवार का परंपरा रहा। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसने भी ऐसा ही काम चुना जहाँ वो बहुत डिफिकल्ट जगह है, गाजा जाके उतना आसान नहीं है, रेफ्यूजियों के साथ और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये काम करना मेरे काम से भी तो मुझे लगता है बहुत कठिन है।
1: ये आपका बड़प्पन है कि आप कहते हैं कि आपके काम से भी कठिन है, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी यही सोचती होंगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत कठिन है। और मैं समझता हूँ आपके द्वारा कभी एक दिन हम उनके साथ भी चर्चा करने का हमें मौका मिलेगा, हमारे श्रोता साथियों को उनके अनुभव भी सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन जो बात आपने कही कि अहिंसा के पथ पर रहते हुए आपके पिताजी ने संवेदनशीलता दिखाई, जो सहानुभूति और जो क्षमा भाव दिखाया उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें छुरा भोंका, जिन्होंने उनको मारने की कोशिश की, आपके घर को आग लगा दिया, ये कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत के रग रग में बसा हुआ है। ये कोई कई लोग इसे गांधी जी से जोड़ते हैं, लेकिन ये शुरू से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते, ये सारी बातें जो है शुरू दिन से ही भारत का अभिन्न अंग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को हम भूलते गए। लेकिन आज आप जब हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे बैठे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये कभी भी कमजोर नहीं होते, ये हमेशा बलवान का हथियार होते हैं, या जो चरित्रवान लोग होते हैं उनका ये साधन होता है, उनका ये ताकत होता है। कई लोग सोचते हैं अहिंसा जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो थोड़े से कमजोर होते होंगे, इसलिए वो शायद सामना नहीं कर सकते। बट मैं कहता हूँ, या उर्मी जी के अनुभव से उर्मी जी शेयर करेंगे कि दोस्तों, अगर आप सहन कर सकते हैं वास्तव में आप शक्तिशाली हैं। सहन वही कर सकता है जो ताकतवर होता है, टूट वो जाते हैं जिनमें ताकत की कमी होती है। तो इसलिए जो अहिंसक हैं, जो सहनशील हैं, उनके शील में, उनके चरित्र में वो ताकत तो आती ही है, और ये आज उर्मी जी को देख करके हम सब समझ सकते हैं। उर्मी जी, मैं यहाँ पर इस चर्चा को उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर सेवा भाव था ऑलरेडी। आप चाहते तो युवाओं के साथ भी काम कर सकते थे, क्योंकि आपने देखा आपके पिताजी ने युवाओं के बीच में रह करके युवाओं में एक परिवर्तन लाया। आपने ये इन बहनों के साथ काम करने का कैसे सोचा, जो हमारी अहिल्याएं हैं या कणिकाएं हैं या जिनको हम वैश्यवृत्ति में युक्त देखते हैं, इन बहनों के साथ काम करने का ध्यान कैसे आया? Why did you choose that particular field?
0: Actually, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की, और उन दिनों मैं एक कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, उनके अंदर एक स्पेशल सेल फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस हुआ करता, दैट वॉज द फर्स्ट सेल। और वो कमिश्नर जूलियो रिबेरो के टाइम में सेटल किया गया था, और एसजी सोमान थे तब कमिश्नर, जिनके अंडर मैं वो प्रशिक्षण ले रही थी। और वो करते ही उसी टाइम मुझे कामाठीपुरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाने का एक मौका मिला, और वहां जाके तो मैं हैरान, एकदम हैरान हो गई। मैं सोच ही नहीं सकती थी इतने छोटे बच्चों को जैसे कि पिंजरे के पीछे बंद करके रखा है, और आजू बाजू सब लोग घूम रहे हैं, और माहौल बहुत ही एकदम, मतलब बहुत ही पेनफुल, वेदनादायक, और उसमें बहुत ही कष्ट में वो सारी लड़कियां रह रहे थे। तो उस समय से 1985 से लेके सीधा 2000 साल आ जाती मैं, फास्ट फॉरवर्ड टू 2000, और इस टाइम में उसी इलाके की कई लड़के एक बार मेरे पास आई और मुझसे बोला कि आप थोड़ा हम लोग का मदद करिए, हम एक स्पोर्ट्स डे करेंगे। मैंने बोला कि देखो, ऐसे तो पैसा देके मदद करने की मेरी परिस्थिति है नहीं, लेकिन मैं जरूर कुछ कोशिश करूंगी। तो मैं अपने दोस्तों से रीच आउट करी कि देखो, ये दिस बॉयज ये सब एक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मदद अगर मिले तो अच्छा रहेगा। उनको लोग पैसा मत दो, लेकिन तुम्हारे कंपनीज में कभी कभी टी शर्ट तुम लोग बना लेते हो, कैप्स बना लेते हो, हेल्थ ड्रिंक्स है जो एक्सपायर होने वाले है, बिस्किट्स है, बड़े बड़े कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान लीवर में मेरे एक दोस्त था, कैडबरीज में।

0: खास नहीं था। और ये मैं सब टाइम बोलती हूँ, अगर मन में इच्छा है कुछ करने का, साधन की कमी नहीं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता। और ऐसे ऐसे आते हैं कि वो उसी वक्त आप महसूस करोगे कि हम सिर्फ निमित्त, काम कोई दूसरा कर। दिस ये बात मैं हजार बार कहूंगी कि मैं इस काम के सिर्फ निमित्त, मेरे मुझे ये मौका दिया जा रहा है इस कर्म करने के लिए, मुझे चुना गया है इस काम करने के लिए, बहुत इच्छा रहने के बावजूद हम कभी कर्म नहीं कर पाते क्योंकि शायद ईश्वर, हमारे बुजुर्ग एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड, वो हमें रेडी नहीं समझे कोई काम करने के लिए हमको तैयार होना। अब तैयार हम नहीं होते, हमारा इवैल्यूएशन कहीं दूसरे जगह में होता। हम अगर बोले अरे हम तो तैयार हैं, अभी चलेंगे लड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। कोई आपको समझते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हाँ अभी ये तुम्हारा कर्म है, ये जाके करो। तो मैं भी वैसे सोची कि हाँ ठीक है। तो कई दिन बाद वो लड़के फिर दोबारा मुझसे मिलने आए, थैंक यू बोलने आए, और मुझे रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप एक बार अगर चल के देख लोगे हमारा मोहल्ला तो हम लोग बहुत खुश होंगे। तो ऐसे ही मैं कुछ सोची भी नहीं थी मैं गई, और मेरे लिए मेरे फर्स्ट विजिट टू अ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इन कोलकाता, जहाँ की मैं पैदाइश की हूँ, मुझे लगा मेरे अपने शहर में ऐसा एक जगह है जिसको हम देखते नहीं, देखना नहीं चाहते। लोग कैसे रह रहे, छोटे छोटे बच्चे कैसे रह रहे, माँ उनके कोई ग्राहक के साथ एक चारपाई के ऊपर, छोटा 2 साल का 1.5 साल का बच्चा नीचे सोता हुआ देखा। मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में उसकी इतनी भयंकर प्रतिक्रिया हुई, मैं क्या बताऊं। मैं सिर्फ ये सोचता हुआ रह गया, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। मुझे एक बार भी नहीं मेरे मन में आया ये मेरा काम नहीं है, ये इसमें बहुत खतरनाक परिस्थितियां आ सकते, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या प्लान करूँ ना। What can I do? कि वो लड़की महिलाओं को थोड़ा सा मदद देने की और उन बच्चों के लिए एक दूसरी जीवन, एक दूसरा परिस्थिति बनाने के लिए। तो मैं सोचती रहे फिर उन लड़कों के पास वापस गई, उनको बोला अगर मैं एक इवनिंग का कुछ क्रेश जैसा, जब माँ लोग काम करते हैं उस टाइम बच्चों को सही सलामत रखने के लिए अगर मैं एक छोटा कमरा मुझे मिले तो अच्छा रहेगा, आप लोग अगर मुझे सहायता करोगे तो मैं कुछ करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो उन लोग बोले हाँ आइए, हम आपको हमारा क्लब रूम जो है उसका एक हिस्सा आपको देंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ काम करने कौन जाएगा, कोई टीचर अवेलेबल नहीं थे, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, कोई लोग आके काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैंने किया क्या, वही का जो 11th क्लास पास, 12th क्लास पास जो यंग पीपल थे उन्हीं में से चुने मैं 3 लोगों को लिए और 2 मासी को लिए जो उम्र वाले थे, जो अधिक यौन कर्म में नहीं थे और लेकिन उनका कोई ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो उनको बुलाई मैं कि आप 3 बच्चों को देख के रख सकते हो, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो सिर्फ मैं 5,000 रुपया दिया और मेरी एक दोस्त, उन्होंने 5,000 रुपया दिया, 10,000 रुपये से हमने क्या खरीदा, मैट्स, प्लास्टिक मैट्स खरीदे, एक स्टील का वाटर फिल्टर खरीदे, 20 प्लेट्स खरीदे, 20 स्पून खरीदे और एक बेबी बाथ टब खरीदे, एक वाटर कंटेनर खरीदे और कुछ तवलिया जैसे चीज खरीदे, ऐसे ही हुआ। और जहाँ हम काम करते थे उसमें हम कभी ताला भी नहीं लगाए क्योंकि हमसे लूट लेने वाला कुछ चीज था ही नहीं।
1: लूट के भी कोई ले जाएगा तो अच्छी चीजें ही लेके जाएगा और उसमें दूसरा कुछ भला ही होगा।
0: तब मेरे दो तीन जो मेरे साथ काम करने वाले थे वो दीदी उसमें ताला नहीं है, हम क्या करते थे, हम नारियल का रस्सी रहता ना उसमें, उसे बांध के हम चले जाते काम के एंड ऑफ इवनिंग। तो ये मुझे लगा न्यू लाइफ के सक्सेस की दो तीन चीजें हैं

0: एक है लोकेशन, क्योंकि जो यौन कर्मी माँ थे उनके लिए सड़क पार करके दूसरे जगह बच्चों को पहुंचाने का कोई ये नहीं था, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं था। सेकेंड थिंग, मैंने कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व किए, यंग पीपल को टीचर के जरिए और ओल्ड पीपल को केयर के बस के जरिए। आज भी उसी मॉडल में चल रहा है शंतनु, 23 इयर्स हुआ। अब तो बड़े बच्चों ने विलायत से आके आंटी हम क्या करें बताइए। तो और तीसरी है टाइमिंग, क्योंकि मैंने देखा दो चार और संस्थाएं थे जो दिन में वहाँ काम करते थे, शाम के टाइम चले जाते थे। तो मैंने सोचा कि वो शाम का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, जब ऑल द मदर्स आर वर्किंग, उनों के लिए तो कल के लिए कमरे का किराया, कल के लिए खाना का पैसा, कल के लिए अनाज लाने का पैसा, कल दवाई के पैसे। आज अगर काम ना करे तो कल वो कैसे उसका दिन बिताएगी। इसीलिए हर महिलाएं उस टाइम रेडी होकर वो अपने कस्टमर्स के वेट करते हैं। तो ये टाइम था, हमने शुरू किया 5 से 9 बजे तक। शुरू की टाइमिंग, लोकेशन और पीपल, समय और स्थान और पात्र, स्थान काल और पात्र। शंतनु, इससे बढ़ के इससे आगे कोई कुछ नहीं। अगर स्थान सही हो, समय सही हो, और किन लोगों के जिन लोगों के साथ आप काम करते हो वो सही हो, तो ये तीन चीज अगर एक जगह आ जाए तो कुछ भी नामुमकिन।
1: तो साथियों, सुना आपने, समय, स्थान और पात्र। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, शुरुआत में ये चेक कीजिए क्या स्थान सही है, समय सही है, और जिन लोगों के साथ करना चाहते हैं, जिनके लिए करना चाहते हैं, क्या वो लोग सही में पात्र हैं। ये तीन चीजों के आधार पे उर्मी जी ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया न्यू लाइट्स के जरिए। न्यू लाइट्स इंग्लिश में, जिसका मतलब हिंदी में होता है नई रोशनी। तो न्यू लाइट्स के जरिए उन्होंने क्या किया, रेड लाइट एरिया में जो बच्चे हैं उनके जीवन में नई रोशनी लाई। ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है उर्मी जी की, न्यू लाइट्स का ये मतलब होता होगा, बट आपने न्यू लाइट्स नाम क्यों सोचा?
0: मैं जब वहाँ पहुँची वो बहुत एक अंधेरा सा और डरावना सा, जिसमें कहीं होप नहीं था, रोशनी, आशा की रोशनी नहीं थी। इसलिए मुझे लगा न्यू लाइट्स, अगर कुछ नई चीज का शुरुआत करें तो हम लाइट ढूंढते ना कोई जगह में जाके, कोई अंधेरा जगह में जाके सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरे इसमें लाइट चाहिए। क्या ढूंढते हैं, हम टॉर्च ढूंढते हैं, हम मोमबत्ती ढूंढते हैं, दिया ढूंढते हैं, इसी ऐसी भावना से। और कुछ ऐसा बहुत सोच के बहुत करूंगी कुछ नहीं सोची, सिंपल सा एफर्ट, सिंपल इनिशिएटिव। सच्ची में कोई ब्लूप्रिंट नहीं था मेरे पास, मैंने कोई स्टैटिस्टिशियन के पास नहीं गई, मैं कोई डेटा एनालिसिस नहीं किया, मैंने कोई भी कंसल्टेंट से बातें नहीं की, डेवलपमेंट कंसल्टेंट से कंसल्ट नहीं की। मेरा मन में ये लगा कि दुनिया के हर कोने में हर एक माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती, तो सिर्फ वो बच्चों को ठीक से रखने के लिए हर माँ चाहती। तो ये सिस्टम, ये अगर ये सपोर्ट हम दिए तभी चल के बाद में मानव ने सोचने लगा कि हाँ, मेरा बच्चा भी स्कूल जा सकता है, मेरा बच्चे को भी हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं, मेरे बच्चों को भी कोई अंग्रेजी किताब पढ़ सकते हैं, मेरा बच्चा कंप्यूटर में काम करे। मुझे याद है शुरू में एक बार मैं कंप्यूटर, उन दिनों लैपटॉप नहीं था, लेकिन हमारा उतना किसी के पास उतना आसानी से नहीं था, तो एक मैं सेकेंड हैंड डेस्कटॉप की रिक्वेस्ट करी थी फेसबुक से। उन्होंने बोला वो बच्चा डेस्कटॉप लेके क्या करेगा। तो मैं अंदर ही अंदर में, मुझे गुस्सा, मेरी जवाब शायद अभी इन रिट्रोस्पेक्ट में लगता है कि सही नहीं हुआ, लेकिन तब मैं भी 20 साल कम उम्र की थी, 23 इयर्स कम उम्र की थी। मैंने फटाक से उनको बोला जो आपके बच्चे करेंगे सीखेंगे, आई मीन यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो क्या बेवकूफी की क्वेश्चन है। तो ये है हमारे समाज के डिविजन, हम अलग है, हमारे बच्चे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता, वो लेके क्या करेगा, वो तो एक कोई मतलब सड़क पे चलने वाली रहने वाली औरत की लड़,

0: को ये कैसे हो?
1: मैं समझता हूँ उर्मी जी, आज भी ये जवाब सही है। उस समय भी ये जवाब सही था, आज भी सही है। आप रेट्रोस्पेक्ट में ये नहीं सोचे कि वो रॉन्ग जवाब था, क्योंकि ये जवाब एकदम एकदम एकदम सत्य है। जो आपका बच्चा इस साधन के साथ करेगा, वो ये बच्चा भी करेगा, कोई भी बच्चा कर सकता है। साधन कभी भी ये नहीं डिसाइड करता कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये तो साधक के ऊपर होता है। तो इसीलिए ये जो आपने जवाब दिया था उनको, ये आपके अंतरात्मा की क्लैरिटी को दर्शाता है कि आप कितने सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। और इसलिए जो आपने बात कही कि न्यू लाइफ की शुरुआत बहुत साधारण सहज तरीके से हुई, सिंपल तरीके से हुई, क्योंकि आजकल चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है। सिंपल चीजें ढूंढ पाना, सिंपल लोगों को ढूंढ पाना शायद बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए सब चीजें मुश्किल हो गई है। और जहाँ पर सिंप्लिसिटी है, वहाँ पर सब चीजें आसान दिखती हैं, सहज दिखती हैं, शांति का एक अनुभव होता है। जब आप अपनी इस कहानी को हमारे साथ शेयर कर रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक बहुत बड़े फिल्म निर्देशक ने हाल ही में एक फिल्म बनाई थी कामेटीपुरा के ऊपर, जो कि बॉलीवुड में बहुत फेमस भी हुई। उसमें भी कई चीजें दिखाई गई, और वो चीजें जब फिल्म के रूप में आती हैं तो हम उसको बहुत रोचक तरीके से देखते हैं, लेकिन जब कोई वहां जाता है तो शायद वो चीजें उतने रोचक या उतने समेटे हुए ढंग से नहीं दिखती। वो चीजें वैसी दिखती जैसे होती हैं फिल्मों में, तो हम फिर भी चीजों को थोड़ा सुंदर तरीके से देखते हैं। लेकिन जब आप वहां खुद पहुंचते हैं, खुद जाते हैं, तो आप वहां पर जाकर के चीजों की एकदम आप पारदर्शिता देखते हैं कि जो चीज जैसी है वैसे आप देख पाते हैं। उसमें कोई लाइट्स कैमरा एंगल नहीं होता ताकि उसको आप सुंदर तरीके से देखें, आपके अभिव्यक्ति पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े, उसकी वजह से आपको कोई अलग रूप से नहीं दिखाया जाता है, जो है जैसा आप वैसा देखते हैं। तो जब आपने वो चीजें देखी कामाटीपुरा में, बॉम्बे में, फिर जब आप वापस यहाँ आए कलकत्ता में, और कलकत्ता में जब आपने इन चीजों को देखा, तो आपने अपने जीवन का एक रास्ता चुना कि मुझे किसी भी प्रकार से वैश्यवृत्ति से जुड़ी हुई जो बहनें हैं उनके बच्चों के लिए एक अच्छी उम्मीद क्रिएट करनी है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। और 5,000 रुपए के दो डोनेशन से आपने 10,000 की शुरुआती कीमत से अपने एक बड़े यज्ञ की शुरुआत की। मैं इसे यज्ञ कहूंगा क्योंकि इसमें कईयों ने अपने सेवा का, समय का, साधन का, संपत्ति का आहुति दिया है, और कईयों ने इस यज्ञ से बहुत अच्छा अच्छा फल प्राप्त किया है। तो मैं चाहता हूँ उर्मी जी, अभी अगर आपके इस पूरे यज्ञ में कुछ ऐसे बच्चे हैं या कुछ ऐसी माताएं हैं या बहनें हैं जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा या जीवन में कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि परिवर्तन के रूप में प्राप्त की, कोई ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो कौन सी वो सक्सेस स्टोरीज होंगी? जस्ट ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड सबसे पहले कौन सी स्टोरी याद आती है?
0: सारे स्टोरीज है। अभी फिलहाल मार्च के महीने में एक जर्नलिस्ट आए थे जो 2005 में न्यू लाइफ में आए, और उस टाइम ये छोटा बच्चा का उम्र था 13 साल। अभी जब वो वापस आए तो वो फिर मतलब ऐसे ही कोइंसिडेंटली ही वाज आल्सो देयर, ही इज 29 इयर्स ओल्ड नाउ, ओके, एंड ही इज वर्किंग ऑन कार्निवल क्रूज एज अ शेफ, इंडियन शेफ, और ही इज इन द डूइंग एले टू अलास्का राउट, ओके। और उसकी माँ, वो 4 भाइयों का परिवार है, वो सबको एजुकेशन में हेल्प कर रहा है, अपना एक घर बनाने का उसने जमीन ले लिया है, पूरा लाइफ पूरा वो फैमिली का परिवर्तन हो रहा है। तो वो जर्नलिस्ट भी जब आए वो एकदम मतलब चौंक गए, और ये बड़ी बात नहीं कहना चाहती मैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में ये उसका स्टोरी पब्लिश हुआ। और एक लड़की,
1: मैं हमारे साथियों के लिए बता दूं, उर्मी जी जिस बच्चे की कहानी के बारे में बता रही हैं, उस बच्चे ने लॉस एंजेलिस से अलास्का तक एक टूर है, उस टूर के दौरान एज अ शेफ, आप देखते होंगे मास्टर शेफ आदि दोस्तों टीवी पे, आजकल शेफ की कितनी डिमांड है, तो वो बच्चा कहाँ 13 वर्ष की आयु में जब उर्मी जी के संपर्क में आया, और न्यू लाइट्स के द्वारा का जब देखभाल होता रहा, आज वो 29 वर्ष की आयु में एक बहुत ही नामी ग्रामी शेफ के रूप में काम कर रहे हैं, और अपने परिवार के लिए एक घरौंदा बांधने की भी

0: कर रहे हैं। जी उर्मी जी, नेक्स्ट आप कुछ एक और बहन की कहानी बता रही थी।
1: और एक लड़की जो जिसके परिवार में 5 सिस्टर्स है और वो है नंबर 2। उसने अभी 2 चीज एक साथ कर रही है, वो मास्टर्स भी कर रही है पढ़ाई में एंड उसके साथ बीएड का भी ये लिया, फिर उसके साथ काम भी कर रही है। और एक लड़की वो TCS में काम कर रही है, उसमें ऐसे बड़ा नामी दामी कंपनियों में ये लड़कियां सब काम कर रही है और माँ लोगों को सपोर्ट कर रही है। न्यू लाइफ में हरदम वापस आती, बच्चों को ख्याल रखते हैं और बोले ऐसे मत कर ऐसे मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कई गए तो वापस आके हमारे साथ अभी टीचर्स हैं, सोशल वर्कर है टीचर।
0: तो इतनी सारी अच्छी अच्छी कहानियां आप छुपा के रखी हैं, आप हमारे साथ शेयर नहीं कर रही हैं। हम तो आपसे शिकायत करेंगे कि आपको अक्सर आना चाहिए रेडियो मधुबन पे और ऐसी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 कहानियों को सुनते हुए जितनी खुशी मुझे हुई मैं समझता हूँ दोस्तों आपको भी हुई होगी। कैसा लगा सुनकर के ये कहानी जब उर्मी जी शेयर कर रही थी कि उन बच्चों का जीवन आज कैसा है? आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने अनुभव में, अपने फीडबैक में। उर्मी जी, ये जो जीवन परिवर्तन हुआ इन लोगों का, इस जीवन परिवर्तन में बहुत मेहनत उनकी भी रही, आपकी भी रही और आपके साथ कई लोगों की भी रही, लेकिन इस दौरान कई अनुभव आपके ऐसे रहे होंगे मदद के जो कि अदृश्य रहे होंगे, जो कैसे हुए आपको भी नहीं पता। जैसे कि कई ऐसे होंगे अनुभव जहां पर आपको पता ही नहीं चले कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत मुश्किल था। तो ऐसे कुछ अनुभव है क्या आपके?
1: बहुत सारे हैं। कभी कभी तो बैंक अकाउंट में 5,000 ही रुपया रहता है और मैं सोचती हूँ ना ठीक है देखा जाएगा, कोई हैरान नहीं। मुझे मालूम है कि कल सुबह होते ही मेरे पास 2 लाख रुपए का पेमेंट का बिल सब आते रहेंगे, खाने का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, स्कूल का, कॉलेज का, मेडिकल बिल, ये सब आते रहेंगे। मतलब ठीक है 5,000 है देखा जाएगा, जिन्होंने काम दिया उन्होंने ही लेके देना।
0: वाह, तो इससे पता चलता है उर्मी जी आपका निश्चय ऊपर वाले पे भी बहुत स्ट्रांग है और इसलिए ऊपर वाला भी आप पे बड़ा निश्चय रखता है, इसलिए आपको ही उसने निमित्त बनाया जो आपने प्यार पहले कही। और जब कोई बहुत अच्छा निमित्त होता है तो उसके द्वारा जब उसे सम्मानित किया जाता है तो उसके द्वारा उस निमित्त को चुनने वाले का भी सम्मान होता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ जब भारत सरकार ने आपको नारी शक्ति पुरस्कार दिया तो उसने, भारत सरकार ने न केवल आपका सम्मान किया लेकिन उस चुनाव का भी सम्मान किया, उस डिसीजन का भी सम्मान किया जिसमें ऊपर वाले का सम्मान हुआ। जब ये सम्मान आपको दिया जा रहा था तब आपको क्या फील हुआ कि क्या आपने कोई मुकाम हासिल किया कि या अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई या क्या था, क्या लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गए, क्या लोगों ने सहायता ज्यादा शुरू की, कैसा रहा?
1: नहीं ऐसे नहीं, लेकिन ये जो सम्मान है ये तो अमूल्य, ओके इसको मापा नहीं जाए। और मुझे लगा कि गर्वित होने के बदले में मुझे लगा मैं और हम्बल और मतलब मैं सबसे आभारी ज्यादा रही, क्योंकि एक नहीं मैं अकेले तो नहीं किया कुछ, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है बाय वे ऑफ मनी, बाय वे ऑफ लेबर, समय का, ध्यान का। और जो लोग मुझे सपोर्ट किए मैं मतलब कि कोई दोस्त फोन पे अगर बोला अरे तू अच्छी है ना ख्याल रखना, ओके तू आजकल बहुत टायर्ड दिख रही है इतना काम मत किया कर, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन।
0: तो दोस्तों आपने सुना, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है जरूरी नहीं कि आप भी जाकर के उसके साथ काम करने लग जाए, अगर आप कर सकते तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं कर सकते केवल उस व्यक्ति से प्यार से बात करना कैसे हो, अपना ख्याल रख रहे हो या नहीं, केवल इतना भर पूछने में भी उस व्यक्ति को बड़ा चैन, बड़ा सुकून, बड़ा राहत महसूस होता है कि मैं अकेले नहीं हूँ उस रास्ते पर। और केवल इतना भर करने में भी आपकी सेवा छुपी हुई है। तो आज आपके सामने अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसे आप फोन करें और उससे बताएं कि तुम जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना, कभी भी कुछ आवश्यकता हो मेरे को जरूर बताना। भले मैं और आप शायद उनको डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते लेकिन अगर वो अपना दिल खोल के रख सकते

0: रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद होती है। तो उर्मी जी, जब कभी प्रॉब्लम आती थी और आपको दिल खोलने की आवश्यकता होती तो आप किसके पास दिल खोलते थे?
1: कभी दोस्तों में, जब तक माँ थी तब तक माँ को ही बता देती, अरे देखो ना ये हो गया वो हो गया, कभी पुलिस के साथ कुछ झंझट हो गया, पुलिस में कंप्लेन लिखाने गए वो लोग लिए नहीं, हजार तरीके का प्रश्न पूछने लगे, डिले हो रहा है, जितना जल्दी से मैं उस परेशानी का मतलब सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ उतना आसानी से नहीं हो रहा है, ऐसा तो हरदम होता है ऐसा बहुत सारे।
0: और एक और दोस्तों के साथ भी आपने शेयर किया, तो अच्छे दोस्त अच्छे मित्र बहुत कीमती होते हैं,
1: बहुत।
0: और आपने कई ऐसे मित्र इन बहनों में भी बना लिया होगा, जो जिन बहनों को आपने अपने साथ जोड़ा, क्या इन बहनों के भीतर भी आपको कोई ऐसी बात नजर आई जो कि हम सब सीख सकते हैं उनसे?
1: उनसे ये सीखना जरूरी है कि रेजिलियंस किसको कहते हैं, सशहन से बचाए, हर दिन वो काम करने के बाद भी वो एक साथ बैठ के हंसते हैं, बंद दोस्तों के साथ बातें करते हैं, रात के 2 बजे अगर कोई बीमार हो उसके साथ टैक्सी में, उन दिनों तो एम्बुलेंस भी नहीं हुआ करता था, उतना आसानी से मिलता नहीं था। और मैंने देखा बहुत बार अगर कोई उस कम्युनिटी में कोई डेथ होता, सारे लोग एक साथ चले, लगता है हर एक इंसान अकेले में है और अकेला काम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं। तो ये जो एकता है, ये जो पारिवारिकता है, ये जो परिवार की एक भावना है, और ये जो संवेदनशीलता है एक दूसरे के प्रति, ये सीखने लायक है। और जो बात आपने कही सहनशीलता, सहन करने की ताकत जो है, ये इन्हें बहुत खास बनाता है। दोस्तों, ये सवाल पूछने के पीछे मेरा भाव ये था कि जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रति कोई धारणा तैयार करते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, जब हम उनसे कुछ सीखने की बात करते हैं तो उनके प्रति हमारा सम्मान बढ़ता है।
1: ग्रीन के नजर से देखते हैं ना कि वो तो समाज के बाहर है, वो खराब है, उनके ऊपर हम बहुत आसानी से जजमेंट डाल देते हैं। और एक बात भी बताऊं, मेरे अब मैं जितना उम्र है और अगर 10 साल जीऊं, 20 ईयर्स जीऊं, कोई किसी को नहीं मालूम, 10 घंटा भी जी सकती हूँ, कोई बात नहीं। बात ये एक चीज मुझे मालूम है कि मैं, मेरे लिए कभी कोई चीज का कमी नहीं, मतलब क्या, रहने के लिए जगह उस मोहल्ला में मेरे मुझे 100 रूम्स है, है ना, 200 पीपल आके मुझे हाथ से खिलाते चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है, मैं ये उनको बहुत बार कही हूँ कि अगर मेरा परिस्थिति तुम जैसे होता, मैं भी शायद यही काम करती, मेरे घर में अगर छोटे बच्चे होते और मेरा पति मुझे छोड़ दिया होता और मेरे पास कोई शिक्षा नहीं रहते, कोई स्किल्स नहीं रहते, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया होता, तो मैं कैसे इन बच्चों को पाल पोस सकती। इसलिए तुम जो कर रही हो, तुम परिस्थिति के शिकार हो, उसमें कोई जजमेंट, उसके वो सब चीजों के बाहर है, दैट तुम एक बच्चे का माँ हो और किसी की लड़की हो, बेटी हो।
0: तो जो उर्मी जी कहना चाह रहे हैं दोस्तों, वो ये कि इंसान को उसकी परिस्थितियों से नहीं परिचय करना चाहिए, इंसान को उसकी इंसानियत की वजह से मानना समझना चाहिए। अगर मैं किसी को उसकी परिस्थितियों की वजह से देखता हूँ, तो कल जब उसकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी तो उसका मेरे प्रति, मेरा उसके प्रति धारणा ही बदल जाएगी। परिस्थितियाँ क्षणभंगुर है, वो आज है कल नहीं रहेंगी, लेकिन व्यक्ति तो रहेगा, व्यक्ति के साथ वो संबंध रहेगा। इसलिए आज भी वो बच्चे बार बार वापस आते हैं, उर्मी जी के साथ मिलकर के सेवा कर रहे हैं, और न्यू लाइट इंडिया के जरिए कई लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू लाइट इंडिया के बारे में या उर्मी जी के काम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा वेबसाइट पे www.newlightindia.org, और मैं समझता हूँ आपको जरूर जाके एक बार देखना चाहिए। उसके जो फोटोग्राफ्स है, वो आपके चेहरे पे एक ऐसा मुस्कुराहट ले आएंगे जैसा मुस्कुराहट अभी उर्मी जी के शक्ल पे है, या मेरे शक्ल पे आपको दिख रहा होगा, या आप हमारी आवाज से सुन सकते होंगे। उर्मी जी, आपने इस सेवा के तहत भारत का बहुत भ्रमण किया है, लोगों ने आपको जगह जगह बुलाया है, एज अ मेंटर बुलाया है, एज अ गाइड बुलाया है, एज अ स्पीकर बुलाया है, आप कितने ही

0: देश में भी और विदेश में भी गए, जब भी आप ट्रैवल करते हैं, कौन सी वो एक चीज आपको भारत में नजर आती है जो कि भारत को भारत बनाती है?
1: प्रेम।
0: आपने तो बड़े फटाक से जवाब दे दिया। कई बार हमारे सभी स्पीकर सोचते हैं कि कौन सी एक चीज है, प्रेम ही क्यों चुना आपने एज एन आंसर?
1: बिकॉज इट इज दैट दिस इज द ओनली, ये एक ही देश है जहाँ अगर मैं कल भिक्षु बन के सड़क पे जाऊँ, लोग मुझे बिना पैसे में पानी पिलाएंगे, कहीं नहीं देते दुनिया में। अगर तुम एयरपोर्ट में पास कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और वो अगर डिस्पेंसर खराब है, कोई दुकान में जाके तुम पूछो जो मुझे एक बोतल पानी चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मुझे ऐसे दीजिए, कोशिश कर लेना कहीं भी। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में प्रेम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस धरती का सबसे बड़ा, इस इंडिया की मिट्टी में प्रेम,
0: तो भारत भूमि में वात्सल्य, प्रेम, वो ममता जो है प्रेम के रूप में भारत भूमि में और भारतीयों में कण कण में बसता है। दोस्तों आज चेक करना है खुद को कि सच में मेरे जीवन से भी वो प्रेम झलकता है। क्या मैं एक दूसरे के साथ प्रेम से रहता हूँ? क्या मैं मेरे परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने समाज के साथ, अपनी प्रकृति के साथ, जिस प्रकृति के बीच में हम रह रहे हैं, क्या उसके साथ हम प्रेम से रहते हैं? प्रेम मतलब ये सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान। तो उर्मी जी, अभी चूंकि घड़ी के कांटे हमें आपसे ज्यादा बात नहीं करने देना चाहते, लेकिन बातें तो बहुत करने का मन करता है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस थ्रू आउट जर्नी में, जो कि आपने 1980 से शुरू किया और आज भी चल रहा है, इस पूरे जर्नी में आपने कौन सी चीजें सीखी?
1: सबसे बड़ी बात सीखी पेशेंस, धीरज। कोई चीज आज बोलो कल नहीं हो सकती, उसके लिए वही समय, काल, वही घुमा फिरा के वही चीज, जो वो चीज जब होना है, इसलिए हम कहते हैं मुहूर्तम, जो चीज जब होना है वो उसी वक्त ही होगा, उसके आगे पीछे हम कितना भी लड़ ले नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी परिस्थितियां आए कि मुझे लगा बहुत कठिन परिस्थितियां है, किसी भी हालत में हल नहीं रहा, जिस क्षण में मैं ठान लेती हूँ इसके बारे में मेरा कुछ नहीं करने का है, जब ये सुलझना है उसी वक्त सुलझ जाए, ऐसा ही हूँ। एक तो धीरज और दूसरी ये है कि हिंसा बड़ा ही है, बहुत सा किसी के साथ हिंसा से पेश आना बहुत आसान है। कोई तुमको एक मुक्का मारा, तुमने उसको मुक्का मार दिया, फाइन। लेकिन कोई तुमको मुक्का मारे और तुम अंदर ही अंदर में बोलो मैं इसके साथ हिंसा से पेश नहीं आऊंगा, उसके लिए बहुत इंटरनल डिसिप्लिन का बड़ा जरूरत है। ट्रेन में भी जाके देखोगे, कभी तुम अपना बैग रखा, तुम्हारे सीट पे कोई बैठा हुआ है या उसके चार पांच रिश्तेदार हैं, उनको छोड़ने के लिए उनमें बुजुर्ग भी है और वो उनका सब सामान ठीक कर दे रहे हैं, वो लोग तो ट्रेन छूटने से पहले निकल ही जाएंगे। लेकिन मैं खास तौर से देखती हूँ जो बाकी पैसेंजर्स है, अरे ये जन नहीं है, थोड़ा हटाइए, आपका बैगेज हटाइए, ये करिए वो करिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आधे घंटे बाद तो ट्रेन चलने लगेगी, जो पैसेंजर है वही चलेंगे। दूसरे लोग जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम गिविंग है, और कोई कहीं गए लाइन में खड़ा होने का धीरज हम लोग को कम हो गया, सब सोचते हैं मैं सबसे आगे चल के लाइन का हेड में जाऊँ, किस लिए, तुम किस लिए चुने गए कि तुम सबसे पहले जाओगे, तुम्हारे सामने और 50 लोग खड़े हैं, हर एक का रियलिटी अपना अपना रियलिटी है, तो वो दिमाग में लिख के चलना
0: चाहिए। और मैं जी, आपने कितने सरल उदाहरणों के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी, मैं कहूँगा जीवन के बहुमूल्य शिक्षाओं को हमारे सामने रखा कि धीरज और अहिंसा ये जीवन को धरोहर बना देता है, किसी भी आम जीवन को खास बना देता है। साथियों आपने सुना उर्मी जी को आज, उर्मी बासु जी जो कि फाउंडर है न्यू लाइट सेवा संस्थान की, जो कि वेश्यावृत्ति से जुड़ी जो बहने हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए पिछले कई दशकों से सेवा कर रही है, और उनकी सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि भारत देश में किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है,

0: वो दिया। नारी शक्ति पुरस्कार उर्मी जी को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उर्मी जी एक नारी है, इसलिए दिया क्योंकि उर्मी जी एक इंसान है और इंसान की पीड़ा को समझते हुए उसे मिटाने का, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी, एक उमंग, उत्साह और एक मौका देने का अनवरत प्रयास कर रही हैं, अथक प्रयास कर रही हैं। उर्मी जी, अगर जाते जाते आपको एक मैसेज देना है हमारे सभी साथियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
1: मैसेज में उतना देके लोगों को मतलब बाइंड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इतना ही बोल सकती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ये सोच के बैठे नहीं रहना कि जब मेरा सब परिस्थितियाँ सही होंगे तब करेंगे। कोई भी एक्शन, कोई भी कर्म अगर करना है तो आज ही करते हैं, उसके लिए सोचते हुए, सोचना कम एक्शन ज्यादा,
0: कर्मयोगी बनने में ही बहुत बड़ा मजा है। और अगर कुछ करना है तो अभी करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जो बात उर्मी जी ने अभी कही दोस्तों कि जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं कुछ करूंगा, फिर तो उस काम में कुछ मजा ही नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं, कोई एडवेंचर ही नहीं। मजा तो तब है जब चीजें विपरीत परिस्थिति में खड़ी है और आप एक और बाकी परिस्थितियाँ दूसरी और आप सामना करके उसको निकलते हैं, उसमें मजा है, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो तैयार नहीं है, आप तैयार करते हैं उस मौके को। तो उर्मी जी के इस मैसेज के साथ अब उर्मी जी पे एक बहुत भारी प्रश्न, रैपिड फायर राउंड उर्मी जी आपके साथ खेलेंगे हम। आर यू रेडी?
1: ओके, लेकिन अगर मुझे कोई जवाब नहीं आएगा तो मैं बोलूंगी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आप सारे जवाबों का सही जवाब देंगी, क्योंकि आपने उस समय भी उस व्यक्ति को सही जवाब दिया था कि अगर आपके बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखने के लिए करेंगे तो ये बच्चे भी यही करेंगे। मुझे लगता है आपकी हाजिर जवाबी आज भी आपको मदद जरूर करेगी। तो आपके लिए पहला सवाल, सेवा क्या है?
1: आत्मत्याग,
0: खुद का त्याग, सेवा, वेरी नाइस। इंसान क्या है?
1: बुद्धि।
0: इंसान की पूरी परिभाषा उसकी बुद्धि से झलकती है, वो क्या डिसीजन बनाते हैं उस पर झलकता है, वेरी नाइस। शांति क्या है?
1: जो हम हर सांस से जो जीते हैं, और ये अपने अपने परिभाषा में शांति लिया।
0: सुख क्या है?
1: इल्यूजन।
0: कर्म क्या है?
1: जीवन।
0: जीवन क्या है?
1: कर्म।
0: वेरी नाइस। भारत क्या है?
1: प्रेम।
0: भारतीयता क्या है?
1: भारतीयता प्रेम, सद्भावना, सहनशीलता, सारा दुनिया को समेट लेना।
0: इसका मतलब हिंदी बोल पाना, या कोई पर्टिकुलर भोजन पसंद करना, या बस पासपोर्ट पे इंडियन लिखा होना, ये भारतीयता नहीं है। भारतीयता अर्थात प्रेम, सद्भावना, संवेदनशीलता, सहनशीलता, धीरज, इन गुणों का प्रदर्शन कर पाना अपने जीवन में, ये भारतीयता है। तो बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया आपने उर्मी जी। अगला सवाल, माँ कौन है?
1: माँ सबसे बड़ी माँ है धरती। अगर उसका सम्मान हम ना करें, उनका उनको कहीं भी किसी भी तरीके से उनका नुकसान पहुँचाए, तो हम अपनी जो शरीरी माँ है उनका भी नुकसान। माँ है ममता।
0: एक आदर्श नागरिक कौन है?
1: इस देश में आदर्श नागरिक है वो जो हम देश का जो परिचय बता रहे हैं, धीरजशील, सहनशील, जिसमें सद्भावना हो, जिसमें प्रेम की भाव हो, वो होगा आदर्श नागरिक, ऐसे वाले आदर्श नागरिक।
0: वेरी ट्रू। आखिरी सवाल, उर्मी कौन है?
1: नश्वर जीवन, 70 साल हो, 80 साल हो, लोगों में थोड़ा सा प्रेम बांटना, और जो कर्म दिया जाएगा वो करने के लिए हिम्मत जुटा के चले।
0: तो हर वो व्यक्ति जो समझता है कि मैं चंद पल का मेहमान हूँ और इस चंद पलों में मुझे प्रेम बांटना है, मुझे जो कर्तव्य मिला है उसे निभाना है, वो व्यक्ति उर्मी है। तो उर्मी जी, आपकी परिभाषा में आपने अपने को परिभाषित किया, लेकिन आपने अपने परिभाषा से देश को भी परिभाषित किया कि भारत

0: भारत तब बनता है जब भारत में इस प्रकार के लोग रहते हैं जो भारत का परिचय अपने अंदर छिपे हुए गुणों के द्वारा, मूल्यों के द्वारा देते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े थे उर्मी बासु जी। उर्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना भी करे कम है, जो काम आज आप कर रहे हैं अपने पूरे संगठन के साथ, वो काम शायद कर पाना मेरे लिए या हम में से किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने आपको चुना और इसलिए हम सदा ही ये दुआ करेंगे कि आप ये सेवा और भी आगे करते रहें। अगर किसी भी तरीके से रेडियो मधुबन या हमारे श्रोता साथी आपके साथ जोड़ सके या आपको मदद कर सके, ये हमारा सौभाग्य होगा। और इसलिए फिर से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, www.newlightindia.org में आप जाकर के बहुत कुछ जान सकते हैं किस प्रकार से आप इन्हें मदद कर सकते हैं। और जैसा कि उर्मी जी कह रहे थे कि जो भी अच्छा काम करना होता है उसके लिए मुहूर्त अब ही होता है। रुकिए नहीं, इंतजार नहीं कीजिए, जो भी आप करना चाहते अपने जीवन में, कुछ भी अच्छा जरूर आज कीजिए। बाकी मैं दोबारा आपके साथ आऊंगा आपके सामने एक और खास मेहमान को लेकर के, आपके इस बहुत खास कार्यक्रम में, यशस्वी भारत में। तब तक के लिए दोस्तों, 90.4 FM रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, जैसा कि उर्मी जी ने कहा, प्रेम बांटते रहिए।
1: धन्यवाद शांतिलु भाई, बहुत
0: सो मच।
1: के सारे श्रोताओं जी, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।
0: थैंक यू।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल, सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो। प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है शांति। चलिए हम आज शांति पर चिंतन करते हैं। आज की इस दौड़भाग भरी जिंदगी में शांति एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम सभी जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुभव करना चाहते हैं। यह केवल बाहरी स्थिति नहीं बल्कि यह आंतरिक मानसिक अवस्था भी है जो हमें संतुलित सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। शांति का अर्थ न केवल युद्ध या संघर्ष के अभाव से है बल्कि यह आंतरिक संतोष मानसिक शांति और सुख का अनुभव भी है। शांति का अनुभव व्यक्ति को मानसिक शारीरिक और आत्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध करता है। वर्तमान समय में शांति की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। समाज में बढ़ते तनाव मानसिक दबाव हिंसा आतंकवाद और प्रतिस्पर्धा ने शांति की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया है। लोग रोजाना की जिंदगी में नकारात्मकता चिंता और तनाव का सामना कर रहे हैं जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस स्थिति में शांति केवल बाहरी संघर्षों का समाधान नहीं है बल्कि यह मानसिक संतुलन और आत्मा की शांति की ओर एक मार्ग है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी शांति का अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में शांति को एक सकारात्मक और पवित्र गुण के रूप में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह कहा है कि जो अपने भीतर शांति रखता है वही बाहरी दुनिया में भी शांति का अनुभव करता है। बौद्ध धर्म में शांति को निर्वाणा की स्थिति मानी जाती है जो जीवन के सभी दुखों और क्लेशों से मुक्त है। इस प्रकार इस्लाम धर्म में भी शांति का महत्व है और इसे सलाम के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण शांति। शांति प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी सोच और मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर हमें जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। योग और प्राणायाम जैसे मानसिक और शारीरिक अभ्यास शांति के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा आत्म मंथन और ध्यान भी शांति प्राप्त करने के उपाय हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है और आत्मा के साथ एकता महसूस करता है तो उसे वास्तविक शांति का अनुभव होता है। बाहरी संसार के संघर्षों और परेशानियों से ऊपर उठकर हमें अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। अंततः शांति केवल एक व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है बल्कि यह समाज और देश की भी आवश्यकता है। जब समाज में शांति होती है तो लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे के साथ रहते हैं और समाज में अपराध हिंसा और युद्ध की संभावना कम होती है। शांति का प्रसार समाज में समृद्ध विकास और सौहार्द का कारण बनता है। इस प्रकार शांति एक अमूल्य धरोहर है जिसे हमें अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है और यही हमें आत्मिक संतोष और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का चिंतन शांति के ऊपर। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
0: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। साथियों बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सबसे दिल का कमल सबसे सुंदर मेहनत का फल सबसे मीठा
1: होए होए होए
0: इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM. आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच.
1: एक चीज पढ़ना चाहूंगा, नॉलेज और विजडम के बीच में थोड़ा डिफरेंस जानना चाहूंगा. नॉलेज इज लर्निंग समथिंग एवरी डे, विजडम इज लेटिंग गो ऑफ समथिंग एवरी डे. ये जेन का प्रॉवर्ब है.
2: बहुत सारा है, ये भी एक मंत्र बन सकता है जीवन का.
1: तो लेट गो. लेट गो ऑफ व्हाट?
2: हाँ, लेट गो ऑफ व्हाट? वी हैव हर्ड दिस वर्ड सो ऑफन, लेट गो.
1: बच्चे भी बोलते हैं ना, लेट गो. लड़ते तो लेट गो यार, लेट. हाँ,
2: हाँ, लेट गो मतलब छोड़ दो, बात को छोड़ दो, बात को छोड़ दो. लेट गो. नॉलेज इज लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. Wisdom is letting go of something every day. It's a very beautiful line. कि नॉलेज है हर रोज नई चीज को सीखना, which is beautiful. लेकिन वो नॉलेज विजडम तब तक नहीं बनेगी जब तक यू डोंट लेट गो ऑफ समथिंग एवरी डे.
1: क्या लेट गो करें?
2: क्या लेट गो करें? आप सोचो क्या लेट गो करें.
1: अभी जो चीज मैं लेट गो कर तो फिर दो दिन में आती है.
2: तो फिर लेट गो ही नहीं की ना, इसीलिए दो दिन में वापस आ जाती है. लेकिन वही लाइन कि रोज हम इतना कुछ नया सीखते हैं, वो नॉलेज हम रोज ले रहे हैं, लेकिन हम वाइज तब बनेंगे. वाइज कब बनते हैं? जब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं. इनफैक्ट ब्रह्मा कुमारीज में जो हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, विच इज अ कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द सुप्रीम सोल, कि परमात्मा को जब हम याद करेंगे रोज विधि पूर्वक, एक्यूरेटली,

0: और सारा दिन याद करेंगे और उससे जो आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी, उसमें जो सबसे पहली शक्ति आत्मा अनुभव करती है वो है पावर टू लेट गो।
1: मैं बीच में एक बात पूछना चाहूंगा, विधि पूर्वक जो आपने शब्द यूज किया, विधि पूर्वक क्या है?
0: विधि पूर्वक मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए आप याद किसी को करने बैठे लेकिन फिर बाकी सबको याद कर रहे थे, तो विधि नहीं हुई सर।
1: नहीं समझा मैं।
0: हमें से मेजोरिटी ही परमात्मा को याद करते हैं, राइट? पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रे करते हैं, भजन करते हैं, हम याद कर रहे हैं, मेडिटेट करते हैं, इन एवरी वे हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। लेकिन वो एक सूक्ष्म चेकिंग कि उतनी देर में एक्चुअली आत्मा कितनी देर परमात्मा से जुड़ी हुई थी और कितनी देर इधर उधर की इस दुनिया की बातों को याद कर रही थी। इट्स नॉट अबाउट टाइम कि हम 10 मिनट के लिए बैठे, हम आधा घंटा बैठे,
1: हम 3 घंटे बैठे, तो 5 घंटे बैठे,
0: या इट्स ओके, इट्स नाइस, हर एक जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उतनी देर में विधि पूर्वक कितनी देर याद थी और कितनी देर सिर्फ बैठे थे लेकिन मन इधर उधर भटक रहा था, तो फिर वो विधि पूर्वक याद नहीं थी। अगेन इट्स लाइक सेइंग कि हमने मोबाइल को चार्जर से लगाया लेकिन अगर वो कनेक्शन विधि पूर्वक नहीं था,
1: लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए,
0: स्विच भी अगर ऑन था क्योंकि परमात्मा का स्विच तो ऑन ही है,
1: अच्छा,
0: लेकिन चार्जर जहां लगता है मोबाइल के अंदर अगर वो थोड़ा सा इतना सा भी लूज रह जाए, फिर उसके बाद हम कितने भी घंटों लगा के उसको जा सकते हैं और थोड़ी देर बाद आएंगे तो फोन चार्ज होने की बजाय
1: डिस्चार्ज हो,
0: पहले जितना था उससे कम ही होगा क्योंकि हम 4 घंटे बाद आए उसको चेक करने के लिए। दिस इज विधि पूर्वक कनेक्शन। अब ये हमें हर एक को चेक करना है कि हम बैठे हैं परमात्मा को याद करने, क्या हम ऑफिस की बातें, घर की प्रॉब्लम्स, या ऐसे ही जो हुआ था कल सारा दिन में वो याद आ रहा है, या आज सारा दिन में मुझे जो कुछ करना है वो याद आ रहा है, या जो किसी ने मुझे कह दिया था थोड़े दिन पहले वो बात याद आ रही है, एंड फिर हम 15 मिनट बाद उठे और कहें पूजा हो गई।
1: लेकिन साइलेंस में अकेले बैठे तो यही बातें याद आती हैं, जब कोई चीज बिजी हो जाए, कुछ काम करते रहें, कंप्यूटर पर रहें, तो इतना वो याद नहीं आता है।
0: तो जब यही बातें याद आती हैं तो फिर परमात्मा से कनेक्शन उतनी देर में नहीं जुड़ा ना।
1: एक सेकंड जुड़ता है, फिर इधर उधर की बात आती है, फिर वापस जाते हैं, फिर पता चलता है कि मैं तो वहां था ही नहीं, फिर इधर घूम गया, फिर चला गया।
0: मेरे साथ
1: तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भी जो एक चीज किसी चीज से कनेक्टेड है, किसी ने मुझे कुछ बोला हो, वो वर्ड आता है ना, वहां से न्यूज़पेपर वहीं रहते, आंख वहीं रहती है, लेकिन ब्रेन पूरा वर्ल्ड घूमता रहता है, फिर मैं आता हूँ, फिर वापस रिवाइंड करके पहली लाइन से पढ़ता हूँ।
0: तो विच मीन्स कॉन्सेंट्रेशन टूटी ना, मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो रहा ना,
1: बातें हैं ना पुरानी भरी पड़ी,
0: तो वो इधर उधर
1: तो लेट गो करना, इरेज करना।
0: ये चीज अगर आपने देखा कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ और याद आया, तो इसका मतलब अखबार को विधि पूर्वक नहीं पढ़ा। कई बार तो पढ़ भी लेते हैं कोई भी चीज, जैसे बच्चे आज कहते हैं कि हमने पढ़ लिया, कि वो जो पढ़ रहे हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहा क्योंकि विधि पूर्वक नहीं पढ़ा। विधि पूर्वक नहीं पढ़ा मतलब एकाग्रता से नहीं पढ़ा। अगर एकाग्रता से पढ़ा होता सारा कुछ अंदर जाता। अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा था। तो विधि पूर्वक याद, जब तक विधि नहीं तब तक सिद्धि नहीं। विधि से ही सिद्धि होगी, जब विधि राइट होगी, तरीका राइट होगा, तो रिजल्ट राइट ही होगा। अगर कनेक्शन राइट है तो चार्जिंग होगी ही होगी, लेकिन कनेक्शन लूज है तो चार्जिंग नहीं होगी। परमात्मा से कनेक्शन हमारा जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि क्या आत्मा डे बाय डे पावरफुल होती जा रही है। अगर आत्मा डे बाय डे वीक होती जाए, विच मीन्स उसके नेगेटिव संस्कार ही बढ़ते जाएं, तो फिर हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं मेरा कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, बट आई एम गेटिंग वीकर डे बाय डे। तो परमात्मा से विधि पूर्वक कनेक्शन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, और जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ती है हर एक अपने जीवन में एक परिवर्तन अनुभव करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर्स को। है तो सोल पावर, लेकिन वो सोल पावर सारा दिन में किस अलग अलग रूप में दिखती है, इसको हम अष्ट शक्तियां कहते हैं, 8 पावर्स ऑफ द सोल। और इसीलिए आप देखो जब

0: देवियों की भी पूजा करते हैं, तो कहते हैं अष्टभुजाधारी देवी, क्योंकि ये सिंबल ही जो बने, यू नो रिचुअल्स में, प्रेयर्स में जो सिंबल्स बने बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनके मीनिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, प्रोवाइडेड हम उसको मीनिंग के साथ फिर उसको करें। आज हमारा करते समय ध्यान सिर्फ इस बात पे होता है कि ये देवी की मूर्ति है, इसकी अष्टभुजाएं हैं। एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, ये देवी है, देवी है मतलब ये दिव्य गुणों वाली आत्मा है,
1: देने वाली
0: डिविनिटी है, ये डिवाइन आत्मा है, और इस डिवाइन आत्मा के अंदर 8 पावर्स हैं। अब पावर्स को कैसे सिंबलाइज करेंगे, तो चित्रकार जिसने बनाया, सपोज किसी को कहा जाए एक आत्मा का फॉर्म बनाना है जिसके अंदर अष्ट शक्तियां हैं, वो संपूर्ण डिवाइन आत्मा है, उसके अंदर अष्ट शक्तियां हैं, उसका चित्र बनाओ, तो चित्र बनाने के लिए शक्ति के रूप को भुजाओं में दे दिया, और इसीलिए उस देवी को अष्ट भुजाधारी दिखाया। तो आत्मा में जो अष्ट शक्तियां राजयोग करने से डिवेलप होती हैं, उसी को हम इस पूरी सीरीज में देखेंगे कि व्हाट इज द पावर्स दैट आई द सोल कैन डिवेलप इन माई सेल्फ। एंड उसमें जो अभी आपने सुनाया, द फर्स्ट पावर इज पावर टू लेट गो। लेट गो क्या क्या करेंगे, क्या लगता है क्या क्या लेट गो करना होगा?
1: लेट गो तो बस जैसे किसी को गुस्सा आता है,
0: कमजोरी आपने, हाँ, और
1: या किसी को कोई आदत है शराब पीने की या सिगरेट पीने की या ये सब चीजों की, इसी को तो आप कहेंगे ना इसको मुझे लेट गो करना है।
0: और कोई बात, क्या लेट गो करना है?
1: दुखी रहने को, मतलब
0: अब इन सारी चीजों पर अगर हम धीरे धीरे वर्क करना शुरू करें, क्योंकि इसीलिए वो कोटेशन इतनी ब्यूटीफुल थी, विजडम इज ओनली वेन यू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ समथिंग एवरी डे। हम कितनी भी नॉलेज अक्यूमुलेट कर लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, कितना भी ज्ञान,
1: एवरी डे का मीनिंग ये भी हो सकता है कि पूरे दिन में आपको कुछ कोई बोल दे, तो उसको भी लेट गो करो ना।
0: दिस इज इट, यस,
1: एवरी डे तो यही होगा,
0: एवरी डे
1: ये तो पुराने कितने जन्मों से संस्कार है, मेरा गुस्से का है या मतलब चिढ़ने का है या हर्ट होने का है या रोने का है या ज्यादा बोलने का है, मतलब ये तो क्रॉनिक टाइप है, बट एवरी डे जो डे टू डे हादसा होता है, आज उसने कुछ बोल दिया, आज उसने हर्ट कर दिया, आज किसी को हमने बोल दिया और गिल्टी फील कर रहे हैं, तो पूरे दिन को शाम को सोने से पहले लेट गो करो ना।
0: दिस इज इट, और सोने से पहले भी क्यों, हो भी गई बात, तुरंत तुरंत उस टाइम क्या करना है, लेट गो करना है। तो अब वो मीनिंग समझ में आ रहा है ना उस कोटेशन का, सच अ ब्यूटीफुल मीनिंग। बहुत सारे
1: एवरी डे का सोचे तब
0: यही चीजें होती हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं ना, हमें पढ़कर इसको थोड़ा सा गहराई पर उसको अगर हम 2 मिनट बैठ के रिफ्लेक्ट भी करेंगे, हमें मीनिंग
1: समझ। मैं क्या करता हूँ ना, पूरा मीनिंग समझने से पहले दूसरों को भेजना शुरू कर देता हूँ, वाह वाह वाह कितना अच्छा है, तो मैं ना मेरे अंदर तो वो पीता भी नहीं, भीगता भी नहीं है, प्रॉपरली उसको मैं एब्जॉर्ब भी नहीं करता, कितना इंटरेस्टिंग है, इसको भी भेज दो, मतलब ऐसे लगता है मुझे शायद मुझसे ज्यादा दूसरे लोग कमजोर हैं, दूसरों को ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरी बीवी को भेज दो, बच्चों को भेज दो, दोस्तों को भेज दो, दे नीड मोर।
0: एंड यू नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्यों हम तुरंत उनको भेजते हैं,
1: क्योंकि हम सबसे वो सुधर जाए तो हमारी लाइफ बन जाएगी, मैं तो ठीक हूँ,
0: सिंपल है ना, क्योंकि जैसे ही हम कोई चीज पढ़ेंगे हमें वो कोई ना कोई याद आएगा जिसने कुछ ऐसा किया था जो हमें अच्छा नहीं लगा था, हम चाहते हैं ये मैसेज उसको भेज दें, वो रियलाइज कर ले और वो ठीक हो जाए, क्योंकि ही और शी नीड्स टू चेंज। और अभी आपने स्टार्टिंग में जब मैसेज पढ़ा तो यू सेड इसका मीनिंग क्या है, एंड आई हैवंट इवन शेयर्ड एनीथिंग सिंस देयर, एंड आपने ही खुद करते करते खुद उसका मीनिंग निकाल दिया, क्योंकि हर आत्मा जो हम कहते हैं ना 7 गुण, उसमें एक गुण है कि हर आत्मा वाइज है, हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। हम कितना हर जगह जा रहे हैं ज्ञान ढूंढने के लिए, हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसको सिर्फ करना क्या है, 1 मिनट पॉज करके रिफ्लेक्ट करना है, उसको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो 1 मिनट पॉज करके रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, वी डोंट रिफ्लेक्ट ओनली, द मिनट वी विल रिफ्लेक्ट वी विल नो द आंसर। एवरी सोल नोज द आंसर्स, एवरी सोल अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो उसके इनेट में है।
1: इसलिए कोई चीज जब

0: समझ में नहीं आती या कोई चीज का आंसर नहीं मिलता है, तो दो तीन दिन बाद अपने आप नहाते नहाते या तैयार होते होते कुछ और गाड़ी चलाते चलाते उसका आंसर मिल जाता है।
1: यही तो प्रूफ है ना कि हर चीज जो हमारी अपनी है, सिर्फ एक मिनट रिफ्लेक्ट करके उसको अपने अंदर नहीं देखा, उसको यूज नहीं किया, तो उसी को बाहर ढूंढने चले गए।
0: आपके रिफ्लेक्ट का मीनिंग समझाएंगे थोड़ा?
1: आपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ते ही कहा ये समझ नहीं आया मैंने, ठीक
0: हाँ।
1: है, क्योंकि आपने उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया था, सिर्फ पढ़ा था, उसको पढ़कर उसके ऊपर विचार नहीं किया,
0: चिंतन नहीं किया,
1: उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, सिर्फ पढ़ा और पढ़ते ही कह दिया कि नहीं ये तो इसका मीनिंग नहीं समझ में आया। एंड जैसे ही दो चार मिनट उसके ऊपर चिंतन किया, खुद को ही उसका आंसर आ गया। अब जितना हम इसको खुद करें रादर देन लुकिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम अदर पीपल, जितना हम उसको खुद करते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर अभी हम आंसर भी सपोज किसी और से ले लें, फिर आंसर भी सुन लेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे उस पर, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो उसको यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो वो विजडम नहीं बनेंगे। तो हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हर आत्मा शक्ति स्वरूप है, इसलिए we just only have to start using it, and jitna we will use it we'll realize abundance, unlimited hamare andar hai wo shaktiyan. Bahut sare hamare belief systems hain, jo wo belief systems ko bhi ab hame let go karne ki zarurat hai. Jaise humne awakening mein baar baar hum dekhte hain ki hamare kitne purane belief systems hain. Jaise aapse kabhi baat hui ki gussa to karna hi padta hai, thode din pehle aapne kaha tha hurt to hona hi tha, natural tha, kisi ne insult ki thi.
0: मेरा एक और बिलीफ सिस्टम है कि इतनी सारी शक्तियां मुझ में नहीं है।
1: हाँ, हमारे अंदर नहीं है।
0: हाँ, जो आपकी आप बता रही है ना,
1: हाँ,
0: सोल की शक्तियां।
1: लेट्स टेक इवन दिस, अगर हम ये बिलीफ करते हैं कि ये शक्तियां मेरे अंदर नहीं है, जब तक मैं इस बिलीफ सिस्टम को लेट गो नहीं करूंगी तो आगे चलने का मेरा फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाई द बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जब तक बिलीफ सिस्टम को ही चेंज नहीं किया तो ऊपर से जितना भी काम करने की कोशिश भी की, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज नीचे का बिलीफ सिस्टम क्या है कि ये शक्तियां मेरे अंदर नहीं है। तो सबसे पहला बिलीफ सिस्टम अपने अंदर जो कॉन्शियसनेस में होता है उस पर चेंज लाने की जरूरत है। अनलेस वी वर्क देयर, आगे नहीं बढ़ेगी फिर।
0: जैसे यू नो, घर में आमतौर पर बातचीत होती है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहां भी, तो यार मैं संत थोड़ी हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं, मैं तो इंसानी तो हूँ।
1: अब वो कहते ही क्या कर दिया,
0: मुझ में थोड़ी इतनी क्वालिटीज हैं, मैं थोड़ी इतना ये सिगरेट छोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर मैं थोड़ी संत हूँ, मैं महात्मा बन जाऊँ क्या? मतलब पीपल आज भी वही सोचते कि ये शक्तियाँ महात्मा में हैं, बड़े बड़े लोगों में है या किसी में, हमारे में।
1: कहने से हम सिर्फ अपने आप को परमिशन दे रहे हैं
0: कि डू इट अगेन,
1: कि अपनी नेगेटिविटीज को यूज करते जाओ। मैं संत नहीं हूँ। संत कोई हमारे से अलग नहीं होते हैं। संत आत्मा वो जो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को ज्यादा यूज कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। वो क्वालिटी हर आत्मा के अंदर है, जो आत्मा उस ओरिजिनल क्वालिटीज को ज्यादा यूज कर रही है।
0: बट ये लेके तो सभी आते हैं ना पिछले जन्म से।
1: क्या लेकर आते हैं पिछले?
0: कोई स्ट्रांगर आत्मा जन्म लेती है विद क्वालिटीज, किसी के ऊपर लेयर्स ऑन लेयर्स ऑन लेयर्स होते हैं।
1: बट इट ओनली मीन्स कि मुझे वो लेयर हटानी है ना।
0: दबे हुए हैं अभी, कितनी ज्यादा लेयर है और क्या उसके ऊपर केमिकल डालना है, कैसे लेयर हटाना है।
1: लेकिन बिलीफ सिस्टम तो राइट होना चाहिए ना। लेकिन जैसे ही अगर
0: अच्छा, बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि हम भी वही हैं, हमारे अंदर भी यही है, हमारे ऊपर लेयर पड़ गया है, आज नहीं तो कल हम हटाएंगे।
1: यही तो ब्यूटी है कि परमात्मा आकर जब हमें ये ज्ञान देते हैं, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग विच आई फर्स्ट थिंग लाइक्ड, कि वेन आई वेंट एंड आई अंडरस्टूड दिस ज्ञान, कि परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं कि हर आत्मा, एंड विच मीन्स हर आत्मा ओरिजिनली इतनी प्योर, ब्यूटिफुल एंड पावरफुल थी, ये आज तक नहीं मालूम थी बात। हमेशा कहते थे ये देव आत्मा है, ये संत आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये मनुष्य आत्मा है, इसके अंदर ये प्योरिटी है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर
0: आपने कहा थी।
1: हर आत्मा का वो ओरिजिनल संस्कार है,
0: इनबिल्ट
1: उसकी वो नेचर है। इक्वली दिस इज द मोस्ट इम्पावरिंग थिंग टू नो, इट्स वेरी इम्पावरिंग टू नो दिस, कि ये संस्कार

0: संस्कार जो हम औरों के अंदर देख रहे हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं ना, जब हम किसी के अंदर डिविनिटी देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति में देखते हैं, धर्म स्थापकों के चित्र में देखते हैं, आज के संत आत्माओं के चेहरों पे वो देखते हैं रूहानियत, हमें वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती है। लेकिन हमारे जीवन में उतना ही रह जाता है कि उनकी देखना, वो अच्छा लगना, पर हमने कहना वो बहुत महान है। आज हम जाते थे मंदिर में, हम क्या कहते थे कि तुम कितने महान हो और हम क्या हैं, हम तो तुम्हारे चरणों की धूल हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, यही पूजा करके आ गए। तो अगर हम रोज, अगर हर रोज आपका बेटा आपके सामने आपको आकर कहे आप कितने महान हो, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, तो क्या रिजल्ट निकलेगी उसकी? दिस इज ओनली व्हाट वी वर डूइंग।
1: मेरा ध्यान कहाँ चला गया अभी? ये जहाँ हम लोग शूट तो कर रहे हैं हैदराबाद में, हमारी ग्रुप बैठी थी जो हम लोग स्टेज पे प्लेज वगैरह करते थे, और हम लोग सोचते थे देखो ये एक्टर कितना बड़ा है, ये कितना अच्छा एक्टर बन गया, ये शमी कपूर का आज पोस्टर आया, आज फलाने का पोस्टर आया। तो जब मैं बोलता यार एक्टर बनना चाहिए, तो दूसरे साल बोलते हमारा कहाँ है यार, ये तो बड़े लोगों की बात है, हमारी किस्मत है, हम लोगों की किस्मत में स्टेज लिखा है, बस आओ डायलॉग बोलो, सुबह से शाम की रोटी का भरोसा नहीं है, कहाँ हम कहाँ बन सकते, इतने बड़े बड़े सपने हम में वो कहाँ। तो जैसे आपने कहा कि हम में वो, मतलब जैसे ये भी वही है, हम में वो शक्ति नहीं है, और वो एक बिलीव था उनका जो नहीं बन सके मेरे साथ वाले।
0: वो बिलीव था इसलिए वो नहीं बन सके,
1: और मेरा बिलीव था कि मतलब नहीं, वो भी इंसान है, अगर वो बन सकता तो मैं भी।
0: सिंपल, तो एक बिलीफ सिस्टम चाहिए ना सिर्फ, तो
1: बिलीफ सिस्टम पकड़ के गया था
0: ना। सिस्टम अब इसी में,
1: ये टाइप ऑफ बिलीफ ना मेरा स्पिरिचुअलिटी में है। मुझे लगता है कि नहीं मेरे अंदर कहाँ वो शक्ति है,
0: तो भी अपने आप को क्या कहते हैं, हम तो गृहस्थी है ना, तो हम तो यहाँ तो वो सब कुछ है, तो सब कुछ चलता ही है।
1: एक और लाइन भी बड़ी खूबसूरत लोग यूज करते हैं, हम थोड़े सोलह कला
0: संपूर्ण थोड़ी है, हम तो गलतियों का पुतला है। तो ये सब कहते कहते अपने आप को लिबर्टी दे दी वैसे चलने की, लेकिन चलते चलते उसका रिजल्ट तो हमें ही मिल रहा है ना। तो परमात्मा आकर इतनी ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल ज्ञान की ये पॉइंट है जो आत्मा को एकदम से एम्पावर कर सकती है कि नहीं आप सब इक्वल हो, एवरीवन, एवरी सोल हैज दैट पावर एट दैट प्योरिटी, जस्ट अगर थोड़ी सी लेयर है भी अभी तो वी रिमूव इट, बट अगर हम बिलीव ही नहीं करेंगे उस बात को तो फिर तो हम रिमूव करने पे भी वर्क नहीं करेंगे, और जब वर्क नहीं करेंगे अगर, तो लेयर्स तो डे बाय डे फिर बढ़ती ही जाएंगी। जैसे जैसे हमने कहा हम संत थोड़ी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, आज तो हम गृहस्थी भी मनुष्य भी नहीं रहे। आज लोग क्या कहते हैं, मनुष्य मनुष्य जैसा भी अगर व्यवहार कर ले तो कमाल।
1: लोग तो कहते ना मैं तो इंसान हूँ यार, लेकिन इंसानियत कहाँ है?
0: क्योंकि अगर हम ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे पर डिक्लाइन की तरफ जाएंगे।
1: इसका डिक्लाइन का भी ना मुझे एक आपसे बात करते हुए एक थॉट आ रहा है, उसका भी रीजन दैट जड़ एक थॉट है, सिर्फ एक थॉट है ना,
0: बिकॉज वी थॉट के वी सी इफ आई
1: कांट
0: क्लाइम अप देन आई एम जस्ट स्लाइडिंग डाउन,
1: दिस इज अ वीक थॉट
0: इफ टुडे ऑल्सो वी,
1: सो दैट वॉज अ पावरफुल थॉट। जब मैं एक्टर बनने के लिए, मतलब मैं क्यों नहीं बन सकता, वो भी इंसान में भी,
0: लेट्स क्रिएट दैट पावरफुल थॉट टुडे।
1: हाँ तो यहाँ क्यों मैं नहीं बोल सकता कि ये जो संत महात्मा है वो भी तो इंसान थे?
0: दिन जब आपने कहा होगा इतने साल पहले कि मैं भी तो एक्टर बन सकता हूँ, लेकिन कहने से बन नहीं गए ना, वो पहले बिलीफ सिस्टम था कि मैं तो बन सकता हूँ, फिर उसके ऊपर की मेहनत, और मेहनत और बिलीफ सिस्टम दोनों का मिला रिजल्ट। तो ऐसे ही आज पहले बिलीफ सिस्टम कि मैं पावरफुल डिवाइन आत्मा हूँ, वो डिविनिटी जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, हम सिर्फ पूजा ही करते हैं उस डिविनिटी की। डिविनिटी की पूजा करना मतलब उससे इंस्पिरेशन लेकर वो मेहनत करके वो डिविनिटी अपने अंदर इमर्ज करना, उसकी पूजा करना डिविनिटी की, और अपने लिए कहना कि मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, तो डे बाय डे डिक्लाइन ही होता जाएगा। तो आज पहले ये बिलीफ सिस्टम कि मैं तो एक प्योर डिवाइन पावरफुल आत्मा हूँ, बनने वाली हूँ नहीं, मैं हूँ, और अब फिर सारा दिन इस पर क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन याद रखना है, सारा दिन में इसको यूज करना है। इमेजिन सिर्फ एक लाइन अगर आज हम ले

0: आज एक होमवर्क लेते हैं कि आई एम अ डिवाइन सोल। अगर हम सारा दिन इस लाइन को अपनी कॉन्शियसनेस में रखें, उसी कॉन्शियसनेस से बात करें, उसी कॉन्शियसनेस से व्यवहार करें हर एक के साथ, तो आज हमारा दिन रोज से अलग नहीं होगा सिर्फ एक थॉट लेने से, आई एम अ डिवाइन सोल। सिर्फ सपोज आपको आज किसी मूवी में देवी देवता का रोल प्ले करने को मिल जाए, तो कैसे नहीं करेंगे उसको, करेंगे
1: और अच्छी तरह करूंगा।
0: अच्छा, और उतनी देर, पूरे दिन एक्टिंग चलेगी उस मूवी की, सुबह से रात तक तो शूटिंग चलेगी ना एक मूवी की, और उसमें आपको सपोज किसी देवता का रोल प्ले करना है, तो पूरा दिन कैसे बात करनी पड़ेगी
1: देवता जैसा,
0: तो कर लेंगे
1: 100%।
0: तो जब पूरा दिन एक मूवी के लिए कर सकते हैं,
1: तो एक लाइफ के लिए
0: क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं हम कर सकते हैं। सो इजी, एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट, हम कौन है, आई एम दैट। लेट्स टेक दिस वन मंत्र टुडे एंड वी विल सी हाउ द डिविनिटी विद इन अस विल इमर्ज। हर एक की तरफ देखने का नजरिया, हर एक से बात करने का तरीका, हर एक के साथ देवी देवता क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, गुड विशेस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आई एम अ डिवाइन।
1: चाहे हम उनको कुछ भी बोले,
0: चाहे हम कुछ भी बोले, हम उनके सामने जाकर अपनी कमजोरियां निकाल रहे हैं। आपने कहा ना कोई सेल्फिश है, कोई ये है, तो देवी देवताओं के सामने भी जो जाकर पूजा करते हैं वो कौन है? चलो देवी देवता है, फिर हम कहते हैं कि जड़ मूर्ति है। संत महात्माओं के सामने भी जो जा रहे हैं आज, वो कौन है? अपनी कमजोरियां ही लेकर जा रहे हैं ना, अपने जीवन में किए हुए पाप लेकर जा रहे हैं ना, अपनी गलतियां सुना रहे हैं। लेकिन संत महात्मा क्या करेंगे, आशीर्वाद और दुआ देंगे। एक बच्चा भी अपनी गलती अगर अपने पेरेंट को सुनाएगा, तो पेरेंट भी उसके बाद क्या अंदर से दुआ करेगा कि सब ठीक हो जाए इसका। तो हम सारा दिन हरेक के लिए ये दुआ और आशीर्वाद नहीं कर सकते। कर लिया अगर, तो हमारे अंदर की डिविनिटी इमर्ज हो गई। ये परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं, और जैसे जैसे हम ये सीखते जाते हैं, वी विल एक्सपीरियंस इट। दिस इज नॉट थियोरी, वी विल एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ इट। आई एम अ डिवाइन सोल। डिविनिटी मुझे बाहर औरों के अंदर देखनी नहीं थी सिर्फ, वो मेरे अंदर है, एंड आई कैन इमर्ज इट टूडे। शुड वी टेक दैट एज द मंत्र फॉर टूडे?
1: डेफिनेटली विल टेक दैट फॉर मंत्र टूडे। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आई वेंट स्ट्रेट टू माई चाइल्ड, आई वॉज इमेजिनिंग के मेरा बेटा मुझे बोले मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं तो बिल्कुल मतलब नीच हूँ, छोटा हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ।
0: तो पिता इमीजिएटली क्या कहेगा, तुम मेरे बच्चे हो।
1: तुम मेरे बच्चों को ऐसे बात करते हो,
0: तो मेरा
1: क्या हो गया तुमको?
0: मेरे बच्चे के अंदर मेरे संस्कार जाएंगे,
1: हाँ,
0: मेरी पावर जाएगी, मेरी वाइब्रेशन जाएगी। तुम तो बहुत,
1: ये सबसे अच्छा लगा
0: हम
1: मुझे।
0: तो संत आत्माएं महात्माओं के भी बच्चे नहीं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा के बच्चे कैसे? एक ये लाइन ही सारे सब देखो, कहते हम रोज हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो हम कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए? तो जो लाइन हम बोलते हैं, क्या हम उस लाइन को बिलीव करते हैं? क्या हम उस लाइन को मानते हैं? क्या आत्मा मानती है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं? जिस क्षण आत्मा मान जाएगी कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तो उस क्षण कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी पूरी तरह से। आज अगर आपको यही पता चल जाए कि आप किसी बहुत बहुत मशहूर आज के जमाने के उस महात्मा के बच्चे हैं, आपको आज पता चल जाए ये बात कि आप इस संत आत्मा के आप बच्चे हैं,
1: मैं इतना एलिवेटेड फील करूंगा।
0: एलिवेटेड फील करेंगे ना,
1: हा?
0: और वो एलिवेटेड फील करना,
1: हाँ,
0: आपकी फिर सोच शब्द और कर्म में आएगा ना,
1: तो फिर बार बार मैं हिसाब करूंगा ना, मैं तो उनकी औलाद हूँ, उनके वंश से आ रहा हूँ।
0: तो अब परमात्मा ने आकर याद दिलाया, तुम तो परमात्मा के बच्चे, तुम देवी देवताओं की वंशावली। रोज कह रहे हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, रोज कह रहे हैं ये मेरी कुल देवी है, हम इस कुल देवी की वंशावली है। हम मीन्स हम किसके बच्चे? तो फिर एलिवेटेड फीलिंग क्यों नहीं आई?
1: उन गुणों के,
0: उस वंशावली के ना, देवी देवताओं की वंशावली,
1: तो वही गुण हम में भी है ना,
0: उनकी फैमिली के हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो कितना जो हम देखो, इसीलिए जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोज बोल रहे हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम सखा बंधु, सब कुछ मेरे, सब कुछ। लेकिन मैं कैसा हूं? तो मैं तो इंसान हूं, ग्रस्त

0: सकती हूँ, मुझे तो ऐसा है नहीं,
1: गलतियों का पता चला।
0: तो ये है विधि पूर्वक उसको याद करना। विधि पूर्वक याद करना मीन्स कनेक्शन से, रिश्ते से, क्वालिटी से। और अगर विधि पूर्वक याद करेंगे जो कुछ उसका है वो सब कुछ हमारा बनना शुरू हो जाएगा फिर।
1: ग्रेट, थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: राज योगा मेडिटेशन इज डेवलपिंग अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन मी द सोल एंड गॉड द हाईएस्ट पावर। व्हेन देयर इज एन एक्यूरेट कनेक्शन, मी द सोल विल गेट चार्ज्ड बाय गॉड्स पावर्स। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स माइंड एंड इंटेलेक्ट are together on the same subject. Mind creates the thoughts and intellect visualizes it, creating an experience for the soul. During meditation or prayers, we are absorbed in the remembrance of God. The result will be me the soul feeling light and powerful. Original sanskars of the soul will emerge naturally. We are a divine soul, child of God. If we believe and remember that we are child of God, then our consciousness, thoughts, words and behavior will be divine and royal.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खाबो खास सफर, और मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ इस प्रोग्राम को और आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। तो ये कहते हैं, अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो, अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उतना सीखो, अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण सीखो। तो आइए इन चार लाइनों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने 50s एंड 60s के मैं लेकर आया हूँ, और साथ ही साथ आज कुछ खास बातें फिल्मी मसाला, वो भी ओल्ड मेलोडीज के बारे में बात करेंगे। 1953 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम आहा था, AAH, जी हाँ। और यहाँ पर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजा नवाठे ने, और इस फिल्म के डायलॉग्स, फोटोग्राफी और पिक्चराइजेशन जो है इंद्र राज आनंद साहब ने किया था, और इसमें कलाकार जो थे नरगिस, राज कपूर और विजया लक्ष्मी पर पिक्चराइज किया गया था, और भी बहुत सारे कलाकार थे। और इसमें एक शॉर्ट स्टोरी ये बताया गया कि उस जमाने में टीवी का कोई इलाज नहीं था, आज तो बहुत अच्छी तरह से इलाज हो जाता है, लेकिन फिर भी टीवी हो जाने पर बहुत ध्यान देके जितना भी इसका कोर्स है वो आपको पूरा करना है। उस समय ऐसी कोई कोर्स वगैरह नहीं थे तो उसके कारण बहुत लोगों की मौत हो जाती थी। तो इस फिल्म में ये चीज बताई गई, और अपनी माँ के इशारे पर राज जो फिल्म का हीरो है वो चंद्रा को पत्र लिखता है। इस बात से वो अनजान रहता है कि उस पत्र का जवाब देने वाले चंद्रा न होकर उसकी बहन नीलू है, और यहाँ पर एक क्लाइमेक्स होता है। इन दोनों का प्यार पत्र के माध्यम से हो तो जाता है, लेकिन सही लड़की कौन है, किससे मैं प्यार करता हूँ, ये बड़ा इस फिल्म का जो रोचक है वो इसमें दिखाया गया है। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो अक्षर यानी जे से शुरू होता है, गाना आपको सुनाने वाला हूँ, और बहुत ही खूबसूरत गाना है जाने न नजर। तो आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस गीत को हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था, और साथ ही साथ मुकेश और लता जी ने इसका आवाज दिया था। शंकर जयकिशन साहब का संगीत बहुत ही खूबसूरत है, गाना सुनते ही आपके पैर थिरकने लगेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो पुनी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। बहुत ही प्यारा गीत आपने सुना, लता जी और मुकेश जी का खूबसूरत गाना 1953 आपने सुना। आइए 1953 में ही एक और बहुत ही पॉपुलर बड़ा फिल्म जिसको कहते हैं बिग फिल्म, वो था अनारकली। जी हाँ, ये अनारकली एक 1953 में रिलीज हुई भारत की ऐतिहासिक ड्रामा वाली फिल्म है। नंदलाल जसवंत लाल द्वारा निर्देशित और मुगल बादशाह जहांगीर की ऐतिहासिक कहानी के आधार पर इस फिल्म को बनाया गया था। नासिर हुसैन और हमीद भट्ट द्वारा इस कहानी को लिखा गया था और इसमें जो कलाकार थे वो भी बड़े अच्छे थे। बीना रॉय जिन्होंने नादिरा का रोल किया यानी मुख्य रोल अनारकली का, और उसके बाद प्रदीप कुमार सहजादा सलीम जहांगीर का रोल उन्होंने किया। उसके बाद कुलदीप कौर, रूबी मेयर, एसएल पुरी, मोहन कृष्णा, नूर जहां, मुबारक, इन सभी कलाकारों ने भी अपनी विशेष कला इस फिल्म में दिखाई। बहुत ही प्यारा सा ये फिल्म बनी जो ऐतिहासिक कहानी को बयां करता है। इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जे अक्षर वाला, मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी। और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण साहब ने, लता जी और हेमंत साहब ने इस गीत को गाया है। श्री रामचंद्रन का खूबसूरत संगीत अनारकली 1953 का ये गीत कहते हैं, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। आइए बात करते हैं अब आगे। 1953 के बाद 1954 में एक फिल्म आई और उस फिल्म में एक टैक्सी चालक की टैक्सी ड्राइवर की कहानी को बताया गया है। किस तरह से मुंबई में टैक्सी रावरंग की जीवन कहानी है, उसमें कैसे लोग जो है फंस जाते हैं, ऐसी कहानी को उसमें दर्शाया गया था और गुरुदत्त साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और इस कहानी को लिखा था अबरर अलवी ने। फिल्म कलाकार थे गुरुदत्त, जगदीश सेठी और श्यामा, ये तीनों ने मुख्य रोल अदा किया। उनके साथ में बहुत सारे और कलाकार थे और मुख्य रूप से एक टैक्सी चालक का कहानी, कालू, जिसका जीवन बदलता है, जो दो महिलाओं से प्यार करता है। इस तरह की ये क्लाइमेक्स वाली स्टोरी है, एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना आपके लिए अभी। जी हाँ, आर पार फिल्म का मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, गीता दत्त का गाया हुआ, ओपी नैयर साहब का संगीत। खुश रहो, खुशियां बांटो।

परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं 1955 की ओर। जी हाँ, 1955 में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम ही मिस्टर एंड मिसेस पचपन था। जी हाँ, ये फिल्म खास जो है, सीता देवी एक जो है समाज सेवी है और वो अपनी भतीजी अनीता के लिए शादी का आयोजन करती है ताकि वो अपनी आजादी से अपने जीवन को जी सके और सामाजिक सेवा कर सके। लेकिन अनीता को शादी का सही अर्थ पता चलता है, तब फिर क्लाइमैक्स होता है। तो आइए, इस फिल्म का ये कहानी है। गुरुदत्त के डायरेक्शन में, अरबर अली के डायलॉग्स इसमें है और मधुबाला, गुरुदत्त, ललिता पवार पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म। इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, जाने कहां मेरा जिगर गया जी। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, गीता दत्त और रफी साहब का गाया हुआ, ओपी नैयर साहब का संगीत, आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अबू के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। आइए 1956 की अगर बात करें तो उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम बसंत बहार था। ये फिल्म का नाम अपने आप में बहुत पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए काफी है। राजा नवाते ने इसे डायरेक्ट किया था, राजेंद्र सिंह बेदी ने इसके डायलॉग्स लिखे थे और ये फिल्म बाद में अलग अलग जो है भाषाओं में भी प्रदर्शित हुई। और मुख्य ये जो फिल्म ली थी तारा सू, इस एक कन्नड़ा जो उपन्यास है, कन्नड़ा नॉवेल से इस चीज को उठाई गई। भरत भूषण, निम्मी, कुमकुम इस फिल्म के मुख्य कलाकार रहे। और राजा नवाटे द्वारा निर्देशित बसंत बहार 1956 का एक बहुत ही सुंदर क्लासिकल फिल्म मानी गई है। वही एक खूबसूरत गाना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, बसंत बहार का ये गाना अभी आपके नाम। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, खाबूगा सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए अब बात करते हैं 1960s का। जी हाँ, 1960 में एक फिल्म आई थी बहाना। एक फिल्म थी जहाँ पर एक हीरो है, डॉक्टर का रोल करता है और हीरोइन के पिताजी का वो ट्रीटमेंट करता है। जैसे ट्रीटमेंट करता है उसका पिताजी खत्म हो जाता है, फिर उसे बड़ा अफसोस होता है हीरो को और वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आर्मी में एक जवान का ट्रीटमेंट करता है तो वो भी मर जाता है। तो इस तरह की कई चीजें इसमें क्लाइमेक्स मिस्ट्री बताई गई थी। तो आइए, एम कुमार के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी। महमूद, मीना कुमारी और कृष्णा कुमारी पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म। और इसमें एक गाना है राजेंद्र साहब का लिखा जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन का संगीत, अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: भाई आगे बढ़ते हैं 1960 के बाद, अब आते हैं 1961 में। 1961 में एक फिल्म आई थी जंगली, जो बहुत ही पॉपुलर रहा। आज भी बहुत लोगों को ये फिल्म का नाम जैसे ही आप सुनेंगे तो हीरो का नाम भी याद आता है। जी हाँ, सही बात आपने समझा है। तो जंगली नाम सुनते ही शम्मी कपूर का नाम आ जाता है, जिसमें बकायदा बहुत ही प्यारे हीरो रहे उस समय। जंगली फिल्म के बाद ही शम्मी कपूर का एक बहुत बड़ा पहचान मिला। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकार शम्मी कपूर, सायरा बानू और शशिकला है। तो 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे शम्मी कपूर जो हीरो थे, और उनका नाम उसमें शेखर था, और एक बेहद खूबसूरत महिला के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन उस खूबसूरत महिला जो है वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसको बाद में ये सच पता चलता है, उस महिला की माँ जो है वो उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। तो यहाँ पर बड़ा ही क्लाइमेक्स और जो कहते हैं ना इमोशन वाली जो टचिंग्स है वो इसमें आ जाती है। तो इस फिल्म को सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था और आगा जानी कश्मीरी ने इसके डायलॉग्स लिखे थे। शम्मी कपूर, सायरा बानू, शशिकला इस फिल्म के मुख्य कलाकार रहे। तो शैलेंद्र साहब का लिखा एक गाना इसमें बहुत ही खूबसूरत है, जो हमारे बचपन की खूबसूरती को बयां करती है, और इसको आवाज दिया है लता मंगेशकर जी ने। शंकर जयकिशन का संगीत, जंगली फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके नाम। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को ये गीत सुनकर बहुत ही खुशी हुई होगी और कहीं न कहीं आप अपने बचपन की यादों में हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने बचपन की यादों से निकलकर जवानी की ओर पहल करते हैं। 1961 का ही एक और खूबसूरत फिल्म जिसका नाम था माया। ये फिल्म जो है माया नाम से ही आपको पता चलता होगा कि किस तरह की फिल्म है। और 1961 में ये फिल्म डीडी कश्यप साहब ने बनाई थी और इसके जो कलाकार थे देवानंद, माला सिन्हा, मुबारक, ललिता पवार, सुरेश कुमार, आगा और हेलन, ऐसे कई कलाकार इस फिल्म में काम किया था। ये फिल्म माया जो है खास असली नकली के कुछ समय बाद बनाई थी और असली नकली और इस माया फिल्म की स्टोरी बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस में ये जो माया फिल्म है अच्छी तरह से कमाई कर गई, क्योंकि इसमें एक खास बात थी, सलीम चौधरी का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत ने लोगों को बहुत पसंद आया। तो ये इसकी वजह से ये फिल्म जो है उस समय 1961 में एक ही स्टोरी के दो फिल्म रिलीज होने के बावजूद भी इस फिल्म को ज्यादा तवज्जो मिली। तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, लता जी का गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं, ओल्ड मेलोडीज 50s एंड 60s के। अब बात करते हैं एक फिल्म 1965 में आई थी जिसका नाम था मेरे सनम। जी हाँ, मेरे सनम। इस फिल्म में आशा पारेख, विश्वजीत और हेलन ने काम किया था। इस फिल्म के मुख्य डायरेक्टर थे अमर कुमार। नरेंद्र बेदी साहब ने इस फिल्म को लिखा था, इसकी स्टोरी डायलॉग्स वगैरह। नीना और उसकी माँ लॉज में ही रहते हैं, समझ लीजिए, और जहाँ उसे कुमार विश्वजीत से शादी करने के फैसले करते हैं, तब नीना को कुमार के अंधेरे अतीत का पता चलता है। तो ये एक सस्पेंस फिल्म है। विश्वजीत जो हीरो है उनको पता नहीं जब बचपन की जो बातें वो क्या हुआ था, हीरोइन की जो माँ है उसको पता चल जाता है और फिर सस्पेंस क्रिएट होता है। कहानी का जो मुख्य पहलू है यहाँ पर दिखाई देता है। तो मेरे सनम इस फिल्म का एक गीत जो है बहुत ही प्यारा सा है, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया हुआ, ओपी नैयर साहब का संगीत। मेरे सनम का एक खूबसूरत गाना आपके लिए अभी। वो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सुने हैं रेडियो पुनी आवाज, खबरों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। 1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है आंसू बन गए फूल। तो बड़ा ही खूबसूरत नाम इस फिल्म को ये दिया गया है, आंसू बन गए फूल। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा दुख के बाद सुख का सवेरा दिखाई दिया होगा। तो आइए, इस फिल्म में जो है विशेष सेठ धर्मदास के रूप में एक व्यक्ति को बताया गया। सेठ धर्मदास प्रधान आचार्य विद्यानंद के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें जेल भिजवा देते हैं, और विद्यानंद जब जेल से बाहर आते हैं या जेल में रहते हैं तब सेठ से हर कीमत पर बदला लेने की सोचते रहते हैं और उनके दिल में ये चाहत बनी रहती है। तो ये इस फिल्म के मुख्य कलाकार देव मुखार्जी, अलका, अशोक कुमार, अनुप कुमार और प्राण, निरुपमा राय, राजा मेहरा, हेलन और जानकी दास रहे। और इस फिल्म का एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अभी। 1969 के इस फिल्म का ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, जाने कैसा है मेरा दीवाना। आइए इस गीत को सुनते हैं। गोविंद मुनि साहब ने इसे लिखा था, आशा जी और किशोर दा ने इस गाने को गाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आंसू बन गए फूल का ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीली आवाज 107.8 FM पर। ख्वाबों का सफर में आज हमने बहुत सारे खूबसूरत गाने 50s एंड 60s के गाने तो सुने ही, लेकिन उसके साथ उन फिल्मों के मसाले भी सुने जो शायद आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और कहते हैं सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को मोटिवेशन भी बीच बीच मिलता रहा होगा चंद लाइनों के माध्यम से। लेकिन कभी कभी कवि के या कलाकार के कुछ शब्द जो है हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, जब हम इन शब्दों को, इन लाइनों को सुनते हैं तो एक जीवन में जो है प्रेरणा मिलती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस कार्यक्रम से कुछ न कुछ मिला होगा। और इसी के साथ मैं अब आपसे चाहूंगा इजाजत। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत याद, नमस्कार, सलाम, खम्मा गनी, खुश रहो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी में सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणे आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंदी रहा।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक

0: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमीन पर बैठेंगे, बातें करेंगे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है, शनिवार हम लोग आप सभी से रूबरू होते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के साथ, जोड़ देते हैं आपको आज के दिन विशेष हमारे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए। हम लोग नए नए करियर के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी करियर की ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी कभी नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग फील्ड में रहेंगे तो चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन स्कूल टाइम में ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलता। इसीलिए लोग जो हैं स्कूल में, आप देखेंगे कि कई बार कुछ ऐसे पिकनिक कराते हैं कुछ स्कूल के माध्यम से कि आपको कोई फैक्ट्री दिखाने लेके गए, कोई आपको किसानों का खेती काम करते हुए उनको दिखाना शुरू कर दिया, पहाड़ों के बीच में आपको लेके गए। तो इस तरह के ये जो बाहरी का आवरण है जो हमारे स्कूल के साथ साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ एज ए पिकनिक माना, मौज करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो चीजें हम लोग देख कर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहां पर आपको सीखना होता है, लर्निंग होता है कि ये चीजें कैसी होती हैं। अगर फैक्ट्री देखने गए तो फैक्ट्री कैसे बना और उसमें क्या चीजें बनती है, कितने लोग लगते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ऐसी कुछ चीजें अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अगर आप कोई बिजनेस चीजें देखने जाते हैं, कुछ ऐसे मार्केट में चलेंगे तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट में सारी चीजें आती कैसे हैं और डिलीवर कैसे होती है, लोगों के पास में कैसे पहुंचती है, वो आपका अगर सोचने का तरीका आ जाए आपको तो आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीजों को मैनेज करते हैं या समझते हैं या किस तरह की आपकी सोच है। तो सिर्फ पिकनिक है, मौज मस्ती के लिए गए, ऐसा सोच के जाएंगे तो फिर आप कुछ उठा नहीं पाएंगे, है ना। तो कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आपको करियर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा कि क्या है इसमें और किस तरह से ये काम किया गया है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ पंजाब लुधियाना से विशेष हरि किशोर जी आए हुए हैं और आप वाटर फिल्टर का काम करते हैं और बात लंबे समय से, तो उसके बारे में जानेंगे आपसे। लेकिन आपको पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। कैसे हैं हरि किशोर जी आप?
3: जी बहुत ही बढ़िया
2: जी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपकी बचपन की कुछ यादें भी ताजा करिए। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और वहां का परिवेश कैसा था, तो हमें अच्छा लगेगा।
3: जी भाई जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया बाबा। बचपन से ही स्कूल टाइम में गाने का बहुत शौक रहता था, नाट्य कला में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा और समय अनुसार ये अवसर भी मिले और स्कूल में कविताएं, गीत और अभिनय करते और ये सब करने का काफी इंटरेस्ट रहा शुरू से, यानी तो ये सब करते हुए। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि हमारे जो लौकिक पिताजी थे, यानी कि हमारे पिताजी, वो आर्मी में थे।
2: अच्छा,
3: मिलिट्री में। तो जैसे उनकी आर्मी की ड्यूटी होती थी जहां पे भी, तो वो हमें अपने साथ ही रखते थे, यानी कि फैमिली को। तो फैमिली को साथ जैसे रखते थे तो वहीं पे हमारा पढ़ना लिखना, हमारी परवरिश वो आर्मी कैंपस में ही होती थी, यानी कि वहां के जो फैमिली क्वार्टर्स होते थे वहीं पे रखा जाता था। पढ़ाई भी हमारी जहां उनकी पोस्टिंग होती थी, ट्रांसफर होती थी, तो उनके साथ साथ ही वहां जाना होता था। तो ऐसे ही

0: बहुत सारे मौके मिले आर्मी में भी, जब उनके वो कुछ कार्यक्रम होते थे तो वहां पे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। तो ऐसे करके अभिनय वगैरह करते रहे।
1: तो मैं चाहूंगा कि बचपन की कुछ यादें ताजा कराइए कि आप संगीत वगैरह की जो बातें कर रहे हैं
0: जी,
1: तो कुछ स्कूल में आपने कंपटीशन में या कुछ प्राइज आपको मिला हो, ऐसे कुछ इवेंट हुए हो जिसमें आपने भाग लिया हो, उसके बारे
0: में। उस समय तो भ्राता जी कोई प्राइज की कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि ये बात करें तो मैं जाऊंगा 1980 में।
1: अच्छा,
0: तो उस समय में जो स्कूल का जो था वो क्लास होती थी 9 की, तो उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती थी, छोटी क्लासेस जो होती थी उसमें ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती थी। तो इन चीजों को सामने रखते हुए तो एक चलो एक जैसे स्कूल में जो भी जैसे होता है किसी को गिफ्ट के तौर पे पेन दे दिया, कॉपी दे दी, तो मना ये सब चीजें चलती थी उस समय। तो ऐसा होता था। बाकी अभिनय की बात करें तो जैसे हम जाते थे किसी दूसरे अन्य स्थानों पे, तो वहां पे जब हम अपना आर्ट शो करते थे तो वहां पे प्राइजेस वगैरह दिए जाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ वहां पे मिलते थे। अभी लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में 1985 में हम लुधियाना में आए थे
1: जी।
0: तो वहां पे फर्स्ट में जैसे ही हमें थिएटर करने का मौका मिला और थिएटर करते करते बहुत सारे कह सकते हैं कि अवार्ड वगैरह भी दिए जाते थे वहां पे, तो वो सब भी हासिल हुए और अभिनय करने का जो एक अच्छा था कार्यक्रम, आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्म लाइन में भी तब्दील होता गया।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और बचपन की यादें भी आपने ताजा कराई। उस समय तो इस तरह की कोई बात होती नहीं थी, लेकिन जहां भी आप प्रेजेंटेशन देते थे लोग पेन या फिर किताब आपको देते थे एज ए यादों के बारे में। तो आई और मैं चाहूंगा कि बचपन में स्कूल लाइफ में जैसे आपके पिताजी आर्मी में रहे हो
0: जी,
1: तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी मना बदली भी होते थे आपके स्कूल के, तो उसके बारे में बताइए।
0: हाँ, बदली होती थी। उसमें ये था कि कुछ समय वहां पढ़ लिया, कुछ समय और किसी जगह पे जाके स्कूल में कह सकते हैं कि दाखिला ले लिया, तो ऐसा ये सब चलता था।
1: अच्छा अच्छा, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होती थी क्या?
0: जी, परेशानी तो वैसे स्टूडेंट लाइफ थी तो ये तो होता था कि जो पढ़ेंगे तो पढ़ने पे ही सारा डिपेंड होता था, कितना हम पढ़ लेंगे उसी के आधार पे सारा सब कुछ चलता रहता था। हाँ, नवीन अगर बात करें कि वहां कुछ और था यहाँ कुछ और है, तो ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता था, एक जैसा ही रहता था। जी जी जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा है ना, कोई जगह पे हम लोग थोड़ा ज्यादा समय रुक गए तो वहां के जो एनवायरमेंट है उससे फैमिलियर हो जाते हैं, फिर नए जगह पे जाएंगे तो वापस थोड़ा टाइम लगता है।
0: हाँ, वो टाइम तो ठीक कहा आपने, लेकिन जैसे छोटी क्लासेस थी ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो उस समय बस इतना ही था कि जो टीचर्स होते थे तो वो पहले जब उनको मना स्कूल में लिया जाता था, उनका दाखला होता था, तो वो मना पूछा करते थे आप इंग्लिश के बारे में, या वो जो चैप्टर होते थे स्कूलों में जो भी अपने, तो उनके बारे में पूछा करते थे, बताते भी थे ठीक है ये बच्चा चलने लायक है या उस क्लास में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, तो इसी तरह ये सब चलता था। तो वो समय थोड़ा सा होता था भाई, फिर भी क्वेश्चनों के जो आंसर पूछे जाते थे तो वो दिए जाते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने बचपन की याद कराई और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बचपन में कुछ ऐसी चीजें भी, होमवर्क नहीं करने पर मार भी पड़ती थी क्या उस समय आपको, या कुछ ऐसी मस्ती वाली बातें आपकी किसी
0: मार की बात? हाँ, मार की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है भ्राता जी, प्लेसमेंट तो होती ही है, अगर हम स्कूल का कार्य नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि होगा, ऐसा तो होता ही था। तो हाँ, अपनी बात करें तो कभी जैसे कभी कोई क्वेश्चन मिला और उसका आंसर लास्ट में अगर थोड़ा सा भी एक भी कहीं शब्द गलत हो जाता था तो नेचुरली ही हाथ आगे करना पड़ता था। जी
1: जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा है और इस विषय को लेकर हम लोग बातें करने वाले

0: कि ये करियर को लेकर आपका क्या भावना थी, आप क्या सोचते थे बचपन में, आपकी जो है किस तरह की विचारधारा थी करियर को लेकर, या बचपन में कुछ ऐसे सोचा भी करते थे कि नहीं ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई पढ़ना है और आगे का आगे देखा जाएगा इसी मानसिकता में रहते, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने करियर को लेकर थोड़ा सा चिंता या फिर थोड़ा सा उसके ऊपर विचार चलता है स्कूल पढ़ते हुए।
1: जी भाई जी,
0: तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आपके विचार कैसे चलते हैं उस समय और किस तरह का, और देखा गया कि वो परिवेश कैसा है, आप जिस संकुल में रहते हो, जहां पर रहते हो, वो परिवेश भी आपको जो है मोटिवेट करता है कि क्या करना है, क्या बनना है। तो अगर ऐसे आपके आसपास में लोग नहीं हैं और आप नहीं जान पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, या फिर माता पिता भी इतना अवेयर नहीं है कि क्या बताना है बच्चों को, किस तरह से उनके करियर के लिए उनको काउंसलिंग, खुद माता पिता अगर बोले कि भाई आप पढ़ते पढ़ते क्या बनना चाहते हो उसके बारे में सोचिए, आपकी रुचि क्या है इसके बारे में हमें बताइए, ताकि हम आगे उसके बारे में आपके लिए तैयारी कर सके, तो ये बातें साथ कई कई कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो शायद बच्चों को ये सवाल पूछते हैं, तो दोनों तरफ से बात अच्छी हो जाती है, तो बच्चे की मानसिकता तैयार होती है, वो बच्चा बताएगा तो उसी हिसाब से काम कर सकते हैं।
1: जी, जी जी।
0: तो हर एक साल दो साल के बाद उसको अगर आप इस तरह की बातें उनके साथ शेयरिंग करते हैं तो बच्चों की शेयरिंग सुनने के बाद उसकी रुचि क्या है और उसके मार्क्स देखिए, उनका सब्जेक्ट में किधर अच्छा काम आ रहा है, बच्चा अच्छा गेन कर रहा है, तो उस अनुसार उसको अगर मैनिपुलेट करते हैं तो आपको काउंसलिंग करने की या बाद में करियर के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, आपको पता पड़ जाता है कि बच्चा इसमें एक्सेल है और उसकी मनसा ये है, तो दोनों मैच हो रहा है तो आप उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय में शायद माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते थे जिसके वजह से ये चीजें पीछे रह जाती।
1: जी भाई जी,
0: आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शायद बच्चों से ये बातें कम होती है, क्योंकि बच्चों का और माता पिताओं का मेल या मिलन जो है समय उनके पास कम है।
1: जी भाई,
0: तो इस वजह से भी ये थोड़ा गैप पड़ जाता है। तो हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से इन चीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेनोमॉड 107.8 एफएम पर जिया करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अरे बड़े मियाँ का हाल तो देखो, ये उम्र ये चाल तो देखो। मस्ती में है सब मस्ताने, प्यार नए कुछ दोस्त पुराने। मस्ती में है सब मस्ताने।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हजूर आप आराम बख्शी की लिखी श्रोता मैरा की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना।
0: अरे हाँ,
2: फिर तोते से बोली मैना, याद रहेगी।

0: अब तिजारत बन गई है।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हरि किशोर जी हमारे साथ है पंजाब लुधियाना से, और बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया अपने पढ़ाई के बारे में, स्कूली लाइफ के बारे में उन्होंने शेयर किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हरि किशोर जी से वापस जोड़ता हूं मैं आप सभी को। हरि किशोर जी, बताइए मुझे कि आप स्कूल टाइम में या आठवीं नौवीं दसवीं में जब आए, सेकेंडरी स्कूल में आप एंट्री कर लिए
2: जी,
1: तो क्या उस समय आप अपने करियर को लेकर कुछ बनना चाहते, इसके बारे में सोचते थे क्या? अगर सोचते तो किस तरह के विचार आपके होते थे?
2: हाँ, ये कहना चाहेंगे भाई जी इसके ऊपर कि बचपन से बस मुझे ये होता था कि संगीत सीखना है और कोशिश करनी है भाई गीत गाने हैं, तो इसमें यही होता था कि चलो मैं एक अच्छा सिंगर बन जाऊंगा या फिर कुछ एक्टर बन जाऊंगा, ऐसा मन में एक संकल्प रहता था और ये भी रहता था। और दूसरा बात करें तो सिंगिंग की, तो सिंगिंग में यही होता था कि ज्यादातर मैं किशोर कुमार जी के गीत सुनता था, तो उनको अपना एक आइडल भी समझता था।
1: अच्छा
2: जी, जी जी जी
1: जी,
2: तो उनके ही गीत बहुत सारे मुझे अच्छे लगते थे, बहुत ही मना स्वाभाविक तौर पे वही

0: कतर में गीत गाता था। वैसे बहुत सारे गीत थे, मोहम्मद रफी साहब है, मन्ना डे हैं, मुकेश जी हैं और अन्य हैं, तो केएल सहगल जी हैं जैसे,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छे महान ये महारथी रहे हैं संगीत लाइन में और सबकी रेस्पेक्ट होती थी। लेकिन किशोर कुमार जी की अगर बात करें तो वो जो गीत जैसे गाते थे और उनकी जो वॉइस टचिंग थी वो बहुत ही हमें आकर्षित करती थी। तो संकल्प यही होता था कि मैं जब भी गाऊंगा तो जब भी कहीं कैरियर शुरू हुआ तो मैं इन्हीं के माध्यम से, यानी कि इन्हीं को सामने रख के मैं कुछ गीत स्टार्टिंग करूंगा।
1: जी, जी,
0: तो ऐसा ये मेरा उस समय चलता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: चलिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि किशोर दा का कोई गीत आप गुनगुनाई दीजिए हमारे श्रोता मित्रों को, अच्छा लगेगा
0: ना? किशोर कुमार जी के गीत तो बहुत है। जैसे बहुत ही खूबसूरत एक गीत हमारे शाहिर लुधियानवी जी ने लिखा था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। तो चलिए दो चंद लाइनें हैं वो मैं आपको
1: सुनाई
0: पेशे खिदमत करता हूं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं

0: एक ऐसे गगन के तले।
1: क्या बात है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। और जैसे कि हम लोग बातें कर रहे थे करियर के बारे में, तो करियर को लेकर आप और क्या सोचते थे, किस तरह की बातें आप जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए और कि गाने के अलावा आपको क्या बनना पसंद था।
0: करियर में भाई जी बस यही होता था कि ज्यादातर हमें यही रहता था कि हमने इस सिंगिंग लाइन या फिर बात करें फिल्म लाइन की, तो कोशिश यही रहती थी कि या तो कोई अभिनेता बनूंगा या फिर कोई सिंगर बन जाऊंगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन लेकिन ड्रामा में कुछ और ही था। तो ऐसा रहा, और यहां तक कि अभी थोड़े समय की बात करें तो चंद 4-5 साल की बात है, उससे पहले भक्ति मार्ग में काफी गीत भजन और माता की भेंटें बहुत सारी गाई हैं।
1: तो अच्छा।
0: ये करियर बन के रहा ये काफी हमारी लाइफ में। और यहां तक कि फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में ऐसा पंजाबी फिल्में बहुत सारी की, जिसमें से धार्मिक फिल्में भी थी, गैर धार्मिक भी थी, और सामाजिक फिल्में जिसे कहेंगे, ये सब। अभी लास्ट में जो मूवी स्टार्टिंग की थी, बॉलीवुड की मूवी फर्स्ट यानी के कह सकते हैं, तो उसमें एक छोटा सा करेक्टर मिला था, वो फिल्म का नाम था दंगल। तो दंगल में बस छोटा सा काम मिला था, तो बस जैसे कहते हैं ना कि समय जो है ना वो अपनी ही रफ्तार से चलता है, और जब वो समय आ जाता है
1: तो अपने आप सब कुछ
0: अपने आप ही ऐसा परिवर्तन आता है कि सब कुछ चेंज हो जाता है। यानी कि ये कहेंगे कि उसके बाद तैयारी थी कि मुंबई जाएंगे, वहां जाके काम करेंगे, जूनियर आर्टिस्टों की बहुत जरूरत होती थी वहां पे, तो सारा कुछ तैयार हो चुका था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: या कहेंगे कि बैग बैगेज भी पैक हो चुका था, लेकिन परमात्मा पिता की मर्जी कुछ और थी। उन्होंने इस भाई को आगे जाने की अनुमति नहीं दी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो हमें वापस बुला लिया।
1: ओके ओके। तो दंगल में आपने कौन सा शॉट किया?
0: दंगल में भाई जी एक्चुअली ना वो जो अपना बोलते हैं जो बिजली डिपार्टमेंट होता है, तो उसके कुछ जो कार्यकर्ता होते हैं, तो उनके ही रूप में एक छोटा सा करेक्टर था, जैसे रनिंग शॉट भी कुछ कह सकते हैं, कुछ अपने फेस इम्प्रेशन कह सकते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो क्योंकि बड़ी मूवी थी, इसमें एकदम तो अगर चाहे कि कोई भी, चाहे पंजाबी एक्टर्स कोई अच्छा भी हो बढ़िया भी होगा, तो भी

0: इंडस्ट्री उसको जल्दी वर्क नहीं देती है. एक सॉन्ग की तो बात वो तो अलग से है, लेकिन एक शब्द जो है वो भी उनकी वो अपने ही हिसाब से चलते हैं. तो वो चाहते हैं कि जब तक ये भले जितना मर्जी इसने काम किया हो, लेकिन जब तक वो इंडस्ट्री में आके कुछ स्ट्रगल नहीं करेगा,
1: तब तक
0: हमारे ऑफिसों के चक्कर नहीं काटेगा, तब तक इससे कुछ भी नहीं करवाएंगे, लेकिन बुलाएंगे जरूर. तो वो आएंगे तो कुछ करेंगे, क्योंकि वो हाँ ये कहेंगे कि देते हैं मौका, देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है.
1: जी,
0: आज अगर एक शब्द का ही अगर क्यों ही कहना है तो वो भी बहुत मायने रखता है.
1: जी जी जी,
0: है ना.
2: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया. मुझे लगता है कि आज के वर्तमान समय में भी ये ट्रेंड है कि अगर फिल्मों में या फिर कहीं आपको थिएटर में काम करना हो तो थोड़ा सा चक्कर जरूर लगाते हैं और आपके अंदर की जुनून को देखा जाता है और आप कितने उसके लिए पैशनेबल है ये देखा जाता है. और जब आपका पैशन ही है तो आप उसके लिए तैयारी रहते हैं, आप चक्कर लगाते रहते हैं और आप काम भी करते रहते हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि एक और बात मैं पूछना चाहूंगा. फिल्मों के अलावा या फिर एक्टर या फिर सिंगर के अलावा और क्या सोचते थे आप कि क्या बनना है आपको?
0: बनना भाई जी, वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे शुरू से ही मैं मिडिल फैमिली को बिलोंग करता रहा हूं और बस यही होती थी कि भाई खाना है, कमाना है तो खून पसीने की कमाई से ही कमाना खाना है. हमने ज्यादा वो नहीं करना है जिससे हमारा ईमान जो है वो बिक जाए. तो यही रहा. बाकी एक चीज और कहना चाहूंगा भाई जी, फिल्म लाइन जो है या संगीत की लाइन है, जो बाहरी लाइन जिसे आज हम आध्यात्मिकता में कहते हैं,
2: बिल्कुल
0: वो भ्राताश्री, वो क्योंकि जब आध्यात्मिकता से जुड़ा जाता है तो उसका और इसका डिफरेंट होता है,
2: बिल्कुल
0: फर्क होता है, जमी आसमान का अंतर होता है. तो इसलिए जो एक योगी होता है उसके लिए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए बाबा ने हाथ पकड़ा, बाबा ने खुद हाथ पकड़ा और मुझे सदाकाल के लिए उस लाइन से अलग कर दिया. ये कहना चाहूंगा क्योंकि वो मैं छोड़ चुका हूँ. बाबा चाहते हैं कि बच्चे अगर आपने कुछ करना है तो बाबा के लिए
2: कर सकते. हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया. जब आदमी आध्यात्मिकता की ओर जाता है तो निश्चित तौर पे आध्यात्मिकता हमेशा कहता है कि आप गंदगी से बचो, विकारों से बचो. तो वहां कहीं न कहीं आप जो है एक्टिंग की दुनिया में जो है आपका खाना पीना अलग हो जाता है, आपका रहन सहन अलग हो जाता है. तो वो कहीं न कहीं आध्यात्मिक माहौल को पकड़े रहना मुश्किल होता है. ऐसा मुश्किल भी नहीं है अगर आदमी जो है जुनूनी है और वो अपने नियम संयम पे कायम रहना चाहते हैं तो उसे कोई विचलित भी नहीं करता.
0: जी भाई जी.
2: तो बहुत सारे ऐसे हैं, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी जो है वेजिटेरियन है
0: जी.
2: तो वहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप छोटे से शुरू करते हैं तो सब चीजें जो है आपको फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं मन जो है आपका वहां पर हार जाता है. तो जो बड़े होते हैं उनकी ऑर्डर्स चलते हैं तो वो उस हिसाब से उनको जो है सब कुछ मिल जाता है, वो भी होता है
0: जी.
2: लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि आप अगर वैल्यू के साथ, अपने मूल्यों के साथ अगर जीना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो बचपन से ही, तो वो चीजें आपके साथ भी चलती हैं
0: जी.
2: तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत. आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 1107.8 एफएम पर. जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपने करियर को कैसे फ्रेम आउट कर सकते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए काम किया जा रहा है. तो आप भी विचार कीजिए आप किस करियर के बारे में सोच रही हैं. अगर नहीं सोच रहे तो आज से सोचना शुरू कर दें. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आइए, हरी किशोर जी से बातें हो रही हैं और हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और जहां पर करियर को लेकर बातचीत हो रही थी और किशोर जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताया कि उनको फिल्म लाइन या सिंगिंग लाइन में इंटरेस्ट था, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे बनने में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं और कई बार हम जो सोचते हैं वो होते नहीं और जो होता है उसके बारे में कभी सोचते नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये एक जिंदगी का फलसफा है, लेकिन अगर आप सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आज न कल जो है उसका अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है, जैसे किशोर जी को भी अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि ये चीजों में ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए उनको रोकने का वो फिर उनको अच्छा भी लगा ये चीज कि शायद मैं अगर वहां जाऊंगा तो जो मुझे चाहिए वो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने उस चीज को गिव अप कर दिया और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर अपना काम कर रहे। तो अब वर्तमान में किस तरह का काम कर रहे हैं आप, किस तरह से आपकी रोजी रोटी चल रही है, उसके बारे में हमें बताइए।
1: हाँ जी, ये बात तो भाई जी बहुत अच्छी करी आपने। रोजी रोटी के लिए तो मनुष्य जो है वो अपना कार्य ही करता ही है, चाहे वो एक मजदूर है, चाहे वो एक ऑफिसर्स है, तो चाहे वो कोई नेता है या अभिनेता है, वो उनकी लाइनें हैं, वो अलग से हैं। तो ये बात कहेंगे कि जैसे अभी बात की कि हम ये जो कार्य हैं वो क्या करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जी मेरा आरओ वाटर प्यूरिफायरी का काम है, तो इसमें सेल है, सर्विसेज है, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं और इनका सारा ये कार्य से ही अपना रोजी रोटी रोटी जो है वो चलती है, धंधा चलता है, यानी कि कारोबार चलता है, तो करते हैं।
0: तो इसके बारे में आपको पहले कुछ पता था या बाद में ही आपने सीखा और इसको करना शुरू कर दिया?
1: कह सकते हैं कि जैसे उस समय मैं ये करता था साथ में, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ थी तो बहुत कुछ देखने में आ रहा था। और थोड़ा सा ये भी कहेंगे कि जैसे पीछे से कोई पावर है जो ये कह रही है कि कुछ साथ में होना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन छोटा सा एक अनुभव सुनाएंगे कि रामलीला ग्राउंड में एक दशहरे से पहले जो 8 दिन या 9 दिन होते हैं उन दिनों में रामलीलाएं हुआ करती थी। तो अभिनय का तो शौक था ही, तो ऐसे ही जब अभिनय करते थे तो वहां पे एक भाई आते थे, उनका वाटर फिल्टरों का ही काम था। तो उन्होंने कहा कि किशोर भाई जी आप भले काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करिए, और साथ में ये जरूर करिए कि आपका जो कारोबार है थोड़ा सा एक साइड में ये भी रखिए, थोड़ा सीख लेंगे तो कहीं काम आ सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो भाई जी कम से कम मैंने 1 साल उस काम को सीखा। सीखने के बाद में वो जहां जहां पे सर्विसेज देती थी, जैसे रेलवेज हो गई या जैसे कोई ऑफिसेज हो गए, तो वहां पे कमर्शियल आरओ एंड डोमेस्टिक आरओ जो थे वो लगा हुआ करते थे। तो उनको जैसे सर्विसेज देना, सारा कुछ देखना, तो मैं जाता भी था, देखता भी था, और आहिस्ता आहिस्ता ये चलना शुरू हो गया। तो कुछ समय के बाद में 2-3 साल वहां पे देखा, काम किया, उसके बाद में फिर अपना ही शुरू कर लिया कि चलो खुद करके देखते हैं तो ये काम अच्छा है।
0: जी जी, जी।
1: तो फिर वो ऐसा, फिर वो नेचुरली उसको अपना लिया काम को, तो आज भी वही कर रहे हैं और संतुष्ट हैं। जितना परमात्मा पिता देता है तो उसमें उसकी रजा में कहते हैं खुश रहो तो सदा ही खुशी मिलती रहेगी। तो दो जनून तो यही है कि दो वक्त की रोटी, चाहे वो दाल से मिले या नमक के साथ मिले, तो उसी में खुशी है सबसे बड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और ये आरओ का काम करते हुए कैसे ये काम चलता है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप कि कंपनी के थ्रू ये सारी चीजें हो जाती है या आप कुछ करते हैं?
1: ऐसा है भाई जी, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और कंपनी का जो होता है, कंपनी अलग अलग की कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियां हैं जो आज मार्केट में चल रही हैं। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है।
0: अच्छा,
1: अगर वो हाँ, क्योंकि चीजें हैं भाई जी, ब्रांडेड चीजें हैं, वो नेचुरली कॉस्टली भी होती हैं, और जो खुद मतलब एक्स्ट्रा तैयार की करके बनाते हैं, तो
0: बनाते हैं।
1: जी जी तो उनका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन क्वालिटीज अच्छी होती हैं। तो बस ये चीजें जब वो सुनते हैं उनको अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि ठीक है आप ही हमें हायर कर दीजिए, बना दीजिए तो अच्छा है। तो ऐसे ही ये सब चलता रहता है। अगर कंपनी की मांगते तो वो भी मिल जाती है,
2: दोनों मना आप करते हैं?
1: जी जी हो जाता है,
2: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक कोई एक्सपीरियंस आपका जो है, जैसे ना जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं और कंज्यूमर को, क्योंकि एक मार्केटिंग वाली फील्ड आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल भी लगता है शुरू शुरू और बाद में एक बार आप अनुभवी हो जाते हैं तो एक सेटिंग हो जाती है।
1: जी भाई जी।
0: एक एवरेज आपको बिजनेस मिलता ही है
1: जी।
0: तो अब मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसको सेट करने में, शुरुआत में क्या दिक्कत आई और बाद में कैसे?
1: जी भाई जी, सेट करने की बात करें तो ये बिजनेस लाइन ऐसी है भ्राता जी, इसके ऊपर, इसके अंदर स्थायी रूप से कुछ नहीं रहता है।
2: अच्छा अच्छा।
1: इसका ये है कि ऊपर नीचे अवस्थाएं जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही इस कारोबार की भी ऊपर नीचे होती रहती है। और आज कहीं थोड़ा सा अच्छा है तो कल थोड़ा डाउन भी है, वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और जहां देखा कि चलो दो पैसे का काम है कर लो तो वो भी चलो ठीक है। हाँ अब ये है कि सब इच्छाएं समाप्त होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बस वो थोड़ा सा तो चाहिए ही है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो सब चलता रहता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक आध गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाई दें।

0: श्रोताओं का गीत जी बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक आध्यात्मिक गीत जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक भाई हैं, बीके भाई हैं, उन्होंने ही कुछ लाइनें लिखी हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि सुना सकूं आपको।
1: बिल्कुल।

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव को सुनकर। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आशा करूंगा कि हमारे मिडिल फैमिली में इस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह का अनुभव हरी किशोर जी ने सुनाया और आपको सुनकर कहीं न कहीं एक कनेक्टिविटी लगी होगी कि बचपन में जिस तरह के हम सपने देखते हैं, बड़े होने तक वो चीजें जो है कहीं न कहीं हम उस तक नहीं पहुंच पाते और फिर जीवन के जो प्रैक्टिकल अनुभव है, जो हमारी वास्तविकता है, उसके साथ हम सौदा करते हैं और उसके साथ जीने भी लगते हैं और धीरे धीरे चीजें जो है हमारे आसपास में जो होती हैं वो उनके जरिए जो चीजें मिल जाती हैं वैसे हम लोग करते हैं। जैसे कोई बच्चे का अगर पिताजी नौकरी करता है, एज ए फैक्ट्री में काम करता है, तो बच्चा भी फैक्ट्री में करने लग जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी थोड़ा सा अगर सपोर्ट करता है या फिर फैमिली की सपोर्ट मिल जाते हैं तो वो कहीं और भी काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इसके साथ में मैं यही कहूंगा कि आप अपने करियर के लिए अगर आप फ्रेम आउट अभी से करना शुरू कर देंगे, अभी से सोचना शुरू करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा मंथन कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। और आज इंटरनेट का जमाना है तो थोड़ा सा आपको जो है नॉलेज भी ब्रीफ में मिल ही जाएगा कि इंटरनेट में क्या क्या चीजें हैं और इसके लिए किस तरह के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, क्या तैयारी है, क्या क्वालिफिकेशन लगता है, क्या पढ़ाई लगती है, टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद या डिग्री के बाद वो चीजें आप हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ाई पूरा कर लीजिए और पढ़ाई पूरा होने के बाद फिर आप अपने करियर के लिए, उस मुकाम के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा सा जो है एप्रिसिएशन वाली बात आती है और उन चीजों को समझ लें और अप्रेंटिस पर कुछ काम, कुछ हद तक दो तीन जगह काम कीजिए जहां पर आपको करना है आपको। और अगर आप आर्टिस्ट के लाइन में जाना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको थिएटर ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ जुड़ के काम करना पड़ता है और थोड़ी देर के बाद आपको जो है आइडिया मिल जाता है, आप उन चीजों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर को बेहतर बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं। और कुछ लगे तो हमें जरूर कॉल करके 9414-1415 इस नंबर पे फोन करके आप अपनी बात हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं और हम आपको हेल्प पूरी तरह से करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ही पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे।

0: और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में, कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा, हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नक प्रेमी रसिक श्रोते हो, तुम्हें ऐकत आहत रेडियो पुणेरी आवाज अर्थात 107.8 FM एंड तुम्ही आहत आरजे जगदीश सोबत रंगतदार आणि बहारदार कार्यक्रमात अलग चीज झलक मध्ये। अलग तुमची रसिक श्रोते हो, झलक आमची। अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, आज 7 जून 2026, अलग चीज झलक प्रयोग क्रमांक 205। अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, खरच खूप खूप खूप धन्यवाद। एकापेक्षा एक दर्जेदार अलग तुम्ही लिहिताय, पाठवताय, न थकता दर रविवारी अलगच्या कार्यक्रमाची चातकाप्रमाणे, पावशा पक्षाप्रमाणे वाट पाहताय। आरजे जगदीश्वर भरभरून प्रेम करताय। अलगकार मित्रांनो, मनपूर्वक धन्यवाद। अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, 7 जूनच्या या कार्यक्रमात आतापर्यंत 12 अलग सादर केल्या गेल्या आणि 12 राशींसारख्या, 12 महिन्यांसारख्या त्या 12 अलग तुम्हाला नक्कीच आवडल्या असतील, कारण त्या आशय संपन्न अलग होत्या। अगदी प्रसंग घडला, कथा लिहिली, असं करणारे अलगकार मित्र दिवसेंदिवस वाढत चाललेत आणि याचा अभिमान आरजे जगदीशला वाटतोय। ऐकूया आणि वळूया पुढच्या अलगकडे, पेशाने प्राध्यापकी करणाऱ्या अलगकार भारतकर बीती अंबाजोगाई येथून लिहितात, डॉक्टरला पृथ्वीवरचा देव मानलं जातं। सध्या ज्ञानाची जागा पैशाने घेतलीये, लाखो भरील पण पोरेला डॉक्टर करील हे बापाचं स्वप्न। देव घडणारी फॅक्टरीच नीट न राहता पैसेवाल्यांच्या हातात गेली। अलगकार सहाय्यक प्राध्यापक भारतकर बीटी, नीट ही शाब्दिक कोटी अत्यंत महत्वाची आहे। ती नीट न राहता म्हणजे कोणतंही कार्य नीट न करता, कोणत्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होणार नाही याची काळजी कर म्हणजे अशा परीक्षांमध्ये घ्यायला पाहिजे, पण पेपर फुटीने डॉक्टरांची परीक्षा सुद्धा कशी विकली जाते आणि पैसे देऊन, पैसे वाटून किंवा पैशाचा अपहार करून, भ्रष्टाचार करून कसे डॉक्टर होतात आणि लहान माणसांची, गोरगरिबांची स्वप्न कशी धुळीस मिळवली जातात त्याची कहाणी तुम्ही अगदी समर्पक शब्दात मांडलीत। खरंच आहे, भ्रष्ट झाली यंत्रणा आणि मग नीट शासनाला गुंडाळ।

पाप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसके दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं एक पुराना स्तंभ हूं। हाँ, इसी नाम से मुझे कई लोग बुलाते हैं। सत्य भी है, मैं प्राचीन हूँ और आज भी महाराष्ट्र की ऐतिहासिक नगरी पुणे में खड़ा हूँ। हजारों इमारतों के बीच मेरा अस्तित्व किसी किसी को धुंधला दिखाई देता है, मगर मैं इतिहास की वो जीती जागती किताब जिसने पुण्य विजय को पुणे बनते देखा है। सालों साल काल चक्र के साथ मैंने अपने जीवन का हर एक क्षण पुणे की मिट्टी को अर्पण किया है। न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियां, अनेकों महान शूरवीरों के कीर्तिमान मेरे मानस पटल पर विभिन्न सुनहरी स्मृतियों के रूप में अंकित हैं। पुणे ने कई दुख की काली अंधेरी रातों को भी पार किया और न जाने कितने सुख के मेले देखे हैं। कभी तोपों की आवाज से लड़ाइयां गूंजी है यहाँ, तो कई शहनाइयों और दीपकों से सजी खुशियां भी झिलमिलाई है।

यहाँ साधु संतों ने धरनी को पावन किया तो कई कलाकारों ने पुणे को शोभान्वित भी किया है। जीवन की खूबसूरती इतिहास के पन्नों में बिखेरती सुंदर अद्भुत नगरी है पुणे।

0: वाह, बहुत सुंदर। क्या बात है, कितनी प्यारी जगह है ये। लग रहा है बड़ी ही प्राचीन है। पुणे में कितना कुछ है ना देखने को, खासतौर से यहाँ का इतिहास, वो तो कमाल का है। पर वो जानने के लिए तो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या इंटरनेट पे खूब सर्च करना पड़ेगा। कितना अच्छा होता अगर इसके बारे में मुझे कोई बता देता। वैसे ये वाला स्तंभ, ये देखो कितना रॉयल लग रहा है। चलो इसके साथ एक सेल्फी तो ले ही लेती हूँ।
1: अरे संभल के, पीछे देखो पत्थर है, देख के चलो। ये सेल्फी लेने के चक्कर में गिर मत जाना।
0: अरे ये आवाज कहाँ से आई? कोई इधर है क्या? यहाँ पीछे यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हेलो, यहाँ कोई है?
1: हाँ मैं हूँ ना, जिसके साथ तुम सेल्फी ले रही हो।
0: सेल्फी? वो तो मैं इस स्तंभ के साथ ले रही हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो?
1: मैं वही स्तंभ बोल रहा हूँ।
0: लगता है मुझसे कोई मजाक कर रहा है। देखो तुम जो भी हो सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा।
1: तुम्हें पुणे के इतिहास के बारे में जानना है ना? मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ। मैं यहाँ का पुराना स्तंभ हूँ।
0: ओह, तो क्या ये सच में आप हो? आप बोल भी सकते हैं?
1: हाँ, और मुझे हर कोई नहीं सुन सकता, बल्कि बस वही लोग सुन सकते हैं जो सच में पुणे से प्यार करते हैं।
0: हाँ मुझे तो पुणे से बहुत प्यार है। तो क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? मेरा नाम मनु है, क्या आप मुझे पुणे का इतिहास बताओगे?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी। आखिर पुणे का इतिहास मेरी रग रग में जो है।
0: तो पुराना स्तंभ जी, सबसे पहले आप क्या बताएंगे मुझे?
1: कहाँ से शुरुआत करें? पुणे खुद में एक कहानी है। आज पुणे में क्या नहीं है, देश और दुनिया में प्रसिद्ध है पुणे, पर उस वक्त का पुणे कुछ अलग ही था। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के पुणे की झलक दिखाता हूँ। तो आज तुमको उस यात्रा पर ले चलता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी पुणे को जानने की।
0: अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा।
1: बात उस वक्त की है जब भारत में मुगलों का राज था। उत्तर में शाहजहां, बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, गोलकुंडा में सुल्तान कुतुब शाह की हुकूमत थी। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। बीजापुर की सल्तनत में मोहम्मद आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष हुआ करता था, जिसका नाम था शाहजी भोसले।

0: शाह जी सेना में उच्च पद पर आसीन थे, बेहद वीर और कुशल योद्धा। शाह जी की पत्नी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को हुआ था। वह महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले के शिंदखेड़ा के राजा के लखोजी राव जाधव की बेटी थी। जब जीजाबाई का जन्म हुआ तब महाराष्ट्र मुगलों के अधीन था और ब्राह्मणों को सुल्तान के समक्ष जाकर छोटे बड़े सभी मुद्दों पर फैसले लेने पड़ते थे। जीजाबाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। अल्पायु में ही उनका शाहजी राजे भोसले से विवाह हो गया। जीजाबाई एक तेजस्वी महिला थी। 19 फरवरी 1630 को उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शिवाजी भोसले। शिवाजी कुशाग्र बुद्धि और असामान्य प्रतिभा का धनी ये बालक भारत के इतिहास में वो प्रभावशाली व्यक्तित्व होने वाला था जिसने भारत में मुगल सल्तनत का नक्शा ही बदल दिया। ये उस वक्त किसी को ज्ञात नहीं था। बालक शिवाजी का जन्म पुणे के समीप शिवनेरी के किले में हुआ था। स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर शिवाजी ये नाम रखा गया।
1: अच्छा।

0: शाहजी जागीरदार होने के कारण ज्यादातर कामकाज के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। शिवाजी के लालन पालन में जीजाबाई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो शिवाजी को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती। भले ही शिवाजी उम्र में छोटे थे लेकिन बड़ी सोच रखते थे और 12 साल की उम्र में उनका विवाह साईबाई निम्बालकर से हुआ था।
1: 12 वर्ष की कम उम्र में
0: दादाजी कोणदेव उनके प्रमुख गुरुओं में से एक माने जाते हैं। पुणे की जागीरदारी शाहजी भोसले के पास थी। सुल्तान जागीरदारों के जरिए ही बादशाही चलाते थे। शिवाजी ने कम उम्र में ही हिंदवी राज्य स्थापित करने की ठान ली थी।

0: उन्होंने मावड़ में सैनिकों की एक टोली तैयार कर ली। 3 साल तक शिवाजी मावड़ के हर गांव में घूमे। 1646 के लगभग उन्होंने पुणे और पुणे के आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया।
1: अच्छा।
0: हाँ, तभी युद्ध तभी कूटनीति का इस्तेमाल कर शिवाजी ने बीजापुर और अन्य किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने लिए किला बनवाना भी शुरू किया जिसका नाम था रायगढ़। इस बात का पता पड़ने पर आगे जाकर आदिल शाह ने शाहजी को बीजापुर में कैद कर लिया। तब शिवाजी ने नई रणनीति बनाई। मुगल सल्तनत का विस्तार चाहने वाले उस वक्त दिल्ली पर हुकूमत कर रहे बादशाह शाहजहां को शिवाजी ने पत्र लिखा और उनके लिए काम करने का प्रस्ताव रखा ताकि शाहजहां आदिल शाह पर उनके पिता शाहजी भोसले को छोड़ने का दबाव डाले। 1649 में आदिल शाह ने शाहजी को कैद से छोड़ दिया। पिता शाहजी को बंदी बनाए जाने के बाद के 7 वर्षों तक शिवाजी ने कोई विस्तार नहीं किया।
1: 7 वर्षों तक
0: बस अपनी सेना को बड़ा और मजबूत बनाया। इसके बाद जावली पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। शिवाजी ने दक्कन पर भी हमला किया। दक्कन का गवर्नर खुद औरंगजेब था। इस हमले से शिवाजी के साथ आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। औरंगजेब ने शिवाजी को ढूंढने के लिए फौज लगा दी और उनको ढूंढने के लिए गांव वालों पर भी रहम नहीं किया।
1: अच्छा।
0: गांव के गांव तहस नहस किए गए लेकिन शिवाजी नहीं मिले। कुछ समय बाद बीजापुर ने औरंगजेब से समझौता कर लिया और शिवाजी को भी समझौता करना पड़ा। परंतु इस दौरान शिवाजी ने घुड़सवार सेना और नेवी को बढ़ावा दिया।
1: अच्छा, क्यों?
0: क्योंकि आदिल शाह से जंग के लिए ये बेहद जरूरी था। इसके बाद शिवाजी ने कोंकण की तरफ रुख किया। जल्द ही भिवंडी से महाड़ तक के लगभग 140 किलोमीटर तक के क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया। आखिरकार आदिल शाह ने अपने प्रख्यात जनरल अफजल खान को उन्हें खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। जंग में मराठा सेना कमजोर पड़ रही थी परंतु शिवाजी फिर भी अफजल खान से समझौते के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक अलग नीति तैयार की।
1: कौन सी?
0: उन्होंने ये बात फैलाई कि शिवाजी अफजल खान जैसे सेनापति का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हथियार डालने के लिए तैयार है, बस उनकी जान बख्श दी जाए।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि मराठे कमजोर नजर आ रहे थे। तो जब ये बात अफजल खान तक पहुंची तो उसने इसे सत्य मान लिया और इसके बाद अफजल खान और शिवाजी के मिलने की बात तय हुई।

0: ईश्वर झूठी भैरवी भवानी, उबले सागर उछला पानी।
1: ईश्वर झूठी भैरवी भवानी, उबले सागर उछला पानी।
0: कहे पुकार कर

0: कहते हैं ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। कुछ ऐसा ही समझ लो कि ये किस्से ये कहानियां भी बेअंत है। पुणे का हर एक पत्थर एक मंजर बयां करता है। यहां वर्तमान में कामयाबी का हर ऊंचा शिखर जिसे उसके ऐतिहासिक आधार की एक लंबी दास्तान है। जरूरत है तो बस तुम जैसे सुनने वालों की, जो इस गौरवशाली इतिहास की लहरों को अपने मन के समंदर में उठने दें, जिनकी पारखी नजरें इतिहास की गहराई में गोते लगाकर मानव मूल्यों का छुपा हुआ खजाना खोज लाए। चलो अब मैं चलता हूँ। कुछ सैलानी आए हैं, उन्हें भी इतिहास के कुछ नजारे दिखाता हूँ और तुमसे फिर मिलूंगा मनु, अपनी आगे की कहानी के साथ, पुणे के इतिहास की कुछ अन्य परछाइयों के साथ।
1: हाँ, अब मैं भी अपने इस दोस्त से पुणे की सारी कहानियाँ सुनकर ही रहूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद उत्साहित हूँ तुम्हें पुणे के अनेक रूपों से अवगत कराने के लिए। आखिर यही तो असल समृद्धि है हमारी।
1: थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।
2: बदनाम गुलामी इसमें जीने से मरना अच्छा है।
3: बदनाम गुलामी इसमें जीने से मरना अच्छा है।
2: आजादी के लिए मरे जो माता वो सपूत सच्चा है। समर

मगर वे कभी किसी अन्य धर्म के भक्षक नहीं बने। उन्होंने अपने धर्म के बारे में प्रचार तो किया, लेकिन कभी किसी अन्य धर्म के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहे। सबको एकजुट रखा शिवाजी महाराज ने, और महिलाओं का वो खास सम्मान करते थे। इसीलिए शायद उनकी प्रजा में महिलाओं का सम्मान था, क्योंकि जैसा वे करते थे वैसे सभी। और दोस्तों, इसी तरह आप पे भी लागू होता है, जैसा आप करेंगे आपको देख के कुछ लोग तो जरूर करेंगे। ऐसा चरित्रवान राजा किसे नहीं चाहिए होगा। आज तो मुझे बेहद गर्व हुआ और साथ साथ बहुत ही मजा आया छत्रपति शिवाजी की ये दास्तान सुनकर, छत्रपति शिवाजी की ये वीर गाथा सुनकर। मैं भी कोशिश करूंगी और आप भी कोशिश करिएगा कि ये वैल्यूज जैसे दृढ़ता, चरित्रवान, स्वाभिमान, एकता, ये सभी चीजें अपने जीवन में हम लेकर आए। क्योंकि अगर शिवाजी से हम सभी का प्रेम है तो उनकी शिक्षाओं से भी उतना ही प्रेम होना बहुत जरूरी है। मैं विदाई लेती हूँ आपसे, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इस पूरी अवेकनिंग में, इस पूरे जागरण के प्रक्रिया में हमने ये जाना है कि किस तरह से अगर हम रिश्तों को एक नए रूप में देखने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं जो परेशानी आ रही थी, जो मुश्किलें आती हैं, जो हर बार हम ये कहते हैं कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, वो बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बच्चे का अपने पिता के साथ हो या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का हो, आज जरूरत है कि हर रिश्ते को हम एक नए अंदाज, एक नए नजरिए और जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान हमें मिला है, उस अवेयरनेस के साथ देखें तो शायद एक नए रूप में नजर आएगा। पति पत्नी के रिश्ते के कई नए प्रारूप हमारे सामने आए हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हो सकती है, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है रामा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जब से हमने रिश्तों के ऊपर बात करनी शुरू की है, इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं क्योंकि एक नए अंदाज में हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया हर रिश्ते को नई नजर से देखना। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं कि ना मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे एकदम से रियलाइज हुई है कि हम कितना भी सोच लें लेकिन जब हम इस तरह से कार्यक्रम में बैठते हैं तो कुछ और बात ही निकल आती है, एक ऐसी ज्ञान की बात जो हमने सोची भी नहीं होती। तो मैं तो अपने आप को स्वयं मान रही हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है एक बार फिर उसके बारे में बात करते हैं।
1: जहाँ तक हर बात, हर पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करते तो ये हर बात बहुत गूह्य रीति से हमें सारी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो स्वयं इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते और फिर जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जीवन में चलते चलते कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो उस यात्रा को सिंपल करने के लिए जो इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज इट्स वेरी डीप बट वेरी सिंपल, और वो सिंपल होने के कारण फिर वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है।
0: ट्रस्ट की बात करते हैं कि विश्वास, जैसा कि हम शिव बाबा पे कर रहे हैं 100% विश्वास रखते हैं, तो उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, हमने रिस्पेक्ट की बात की थी, हमने ये बात की थी, अपेक्षाओं की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो सारे एस्पेक्ट्स फिर भी इतने मायने नहीं रखते हैं कि कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। सबसे बड़ा जो, क्योंकि वो रिश्ता बन रहा है जहां कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी जन्मों का रिश्ता है, सो वहां विश्वास, हम अपने दोस्त पे विश्वास जरूर कर लेते हैं, यहां विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास कितना जरूरी हो जाता है।
1: विश्वास हर रिश्ते में जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है उसमें विश्वास करना इजी होगा और जो इस तरह से यात्रा के दौरान जुड़ा हुआ रिश्ता है उसमें डिफिकल्ट है। नहीं, आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी है, तो वो तो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसमें क्यों कमी है। तो ट्रस्ट इज नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी यू नो रिलेटेड टू बी अ ब्लड कनेक्शन, इट हैज टू बी अ सोल टू अ सोल रिलेशनशिप। तो विश्वास तो रिश्ते के अलावा भी एक्चुअली हर आत्मा को, हर आत्मा पर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि मैं औरों पर विश्वास करना आज क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं शायद आज खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही।
0: मैंने

0: रिलेशन में बात इसलिए की थी कि हम ये कहते हैं कि चलो उनको तो हम माफ कर सकते हैं, वो है तो हमारा खून ही, हमारा अपना ही है, कोई बात नहीं करते
1: तो उनको हम माफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उनको माफ करना चाहते हैं, बाकी माफ तो हम किसी को भी कर सकते हैं. ठीक, फॉरगिव, वी कैन फॉरगिव एनीबॉडी. व्हाई? बिकॉज आई नो हाउ टू फॉरगिव. लेकिन हम चूज करते हैं किसको फॉरगिव करना, किसको नहीं करना. अगर हमें फॉरगिव करने की कला आती है तो अगर हम एक को कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं. लेकिन वो ट्रस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप करना, वो मुझे पहले अपने आप के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है. वर्तमान समय औरों पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट अर्थात फेथ, एक इंटेग्रिटी जो मुझे आप पर या किसी और आत्मा पर करनी है. लेकिन आज जनरली हम डाउट करते हैं, यू नो, इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो ट्रस्ट बहुत जल्दी हिल जाता है. शिव बाबा हमें बताते हैं कि संशय और निश्चय, यू नो, डाउट या ट्रस्ट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती है. हम जो एफर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज होती है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं इसमें परसेंटेज नहीं होती. हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट
0: बढ़ता जाएगा.
1: तो शिव बाबा कहते या तो निश्चय है या निश्चय नहीं है.
0: लेकिन मैं अपने लिए ये ऑप्शन रखता हूँ कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं इतना हर्ट या हर्ट नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपनी जिंदगी ही
1: ये थॉट पहले से क्रिएट करना कि अगर मुझे धोखा मिला मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट, मतलब आई एम ऑलरेडी डाउटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये धोखा देंगे. तो फिर वेयर इज द ट्रस्ट? परमात्मा यही बताते हैं कि अगर एक भी थॉट डाउट की आए, एक थॉट, ज्यादा नहीं, एक थॉट्स भी डाउट की आए, तो अभी आप डाउट वाली साइड पर है, ट्रस्ट वाली साइड पर नहीं है. अभी संशय है उस रिलेशनशिप में. निश्चय जिस रिलेशनशिप में होगा जहां एक भी थॉट, वर्ड, एक्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक भी थॉट डाउट की नहीं होगी, दैट इज ट्रस्ट. एंड फिर वो इसीलिए परसेंटेज में नहीं हो सकता. जिस दिन तक डाउट्स है माइंड में तब तक हम डाउट वाली स्टेज पे है कि मैं इनको डाउट करती हूँ. लेकिन जिस दिन मन से सारे डाउट्स हट गए, एक थॉट भी डाउट करने आया, उस दिन कह दीजिएगा कि नाउ आई ट्रस्ट दिस पर्सन.
0: लेकिन ट्रस्ट हैज टू बी अर्नड. कहा जाता है कि आपको अर्न करनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा. विश्वास जीतिए आप.
1: ट्रस्ट मुझे करना है तो उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं करना. आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे हैं. अब आपको ट्रस्ट करना या नहीं करना ये चॉइस मेरी है. आपको अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा उसके लिए, क्योंकि वो में भी समय लगता है कि हम आपको जानने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक्चुअली कहा जाता कि ट्रस्ट तो फाउंडेशन है. सो दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू से कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं और बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब ट्रस्ट वाला फ्लोर बीच में डाल देंगे. बट वी सेड इट्स द फाउंडेशन, सो दैट मीन्स इट विल हैव टू बी द फर्स्ट थिंग. इट कांट बी समथिंग दैट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज लेट्स से इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सो टुडे यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. अब आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दो तीन साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करें? हाउ डू आई गो अबाउट इट? और शुड आई से वी बिगिन इट विद ट्रस्ट? बिकॉज तब तो आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, नहीं तो फाउंडेशन डाउट की है. डाउट की फाउंडेशन पे तो वो इमारत वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि डाउट की फाउंडेशन पर खड़ी हुई जो अगले एक दो तीन साल भी बीते उसमें थॉट्स ऑफ ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं. ट्रस्ट इज ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स.
0: ट्रस्ट का मायने क्या है कि मैं आपको पोजेस कर लूंगी कि आप मेरे ही हैं? अगेन ट्रस्ट इज समथिंग हैज टू बी, यू नो, एक्चुअली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आप पे कंप्लीट विश्वास करती हूँ. क्या मैं आप पे एहसान कर रही हूँ? वन. सेकेंड, उसका पूरा पूरा मतलब क्या है कि मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ?
1: दूसरे पर ट्रस्ट करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं. क्योंकि जितना समय हम डाउट में रहते हैं अंदर डिस्टर्बेंस,
0: पेन रहती है, बहुत पेन है,
1: एक इनस्टेबिलिटी कंटिन्यूस, मतलब अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स. और जिस क्षण ट्रस्ट करना शुरू किया ऑल वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स ओवर. तो वो एहसान दूसरे पर किया या अपने ऊपर किया? अपने ऊपर किया.

0: कि सारे जिसको कहे चिंता, बोझ, एंग्जाइटी, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नाउ देर इज नो डाउट. वी कैन डाउट ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. कितनी चीजें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं, और जब वो सारा हट जाता है तो सोचो अंदर क्या होगा. दैट इज पीस, दैट इज हैप्पीनेस, जहां अंदर एकदम स्थिरता आ जाएगी. तो ये किस पर एहसान किया? अपने पर एहसान किया. दूसरे ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, लेकिन जिस क्षण हमें लगा कि अब हम कर सकते हैं, हमने करना शुरू कर दिया. आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब कोई हमारे सामने कुछ कहता है या कुछ करता है तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सोचते भी यही है. वाई?
1: हाँ, अगेन यू नो, क्योंकि कहे तो वो कुछ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर हमें नहीं मालूम कि, क्योंकि लगता ये है कि डिफरेंस होगा जो सोच रहे हैं और कहने में.
0: क्यों ऐसा लगता कि दूसरे के अंदर
1: हम खुद ऐसे हो?
0: क्योंकि हमारे अंदर ऐसा. सो सी, रिलेशनशिप इज माई कॉन्शियसनेस में आपकी इमेज. अब मेरी कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी होगी उसमें ही तो आपकी पिक्चर आकर बनेगी ना. मतलब मेरे पास कलर्स की क्वालिटी क्या है, दैट इज माय कॉन्शियसनेस. अब उन कलर्स से मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ कलर्स होंगे वो उस पिक्चर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे बिल्कुल. अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये इंटेग्रिटी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफ माय थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस आर सेपरेट, तो मुझे क्या लगेगा कि बाकी लोग भी कैसे हैं? ऑटोमेटिकली मैं कैसे इसको बिलीव करूं, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स ही नहीं. तो जो कलर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूसरे को उस कलर में देख नहीं सकती हूँ. मेरे पास वही कलर है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर सारा दिन में कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ. तो मेरे पास वही रंग है. अब वही रंग से मैं आपकी इमेज अपने कॉन्शियसनेस में बनाऊंगी, तो आपकी इमेज भी यही बनेगी कि आप भी सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं. अगर आप कहते भी हैं कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो ही बोल रही हूँ, आई डोंट हैव द कलर, आई डोंट हैव द कलर,
1: आई कांट रिलेट टू इट,
0: आई कांट रिलेट टू इट, आई डोंट हैव द कलर. इट्स लाइक सेइंग कि आई हैव रेड कलर, तो मैं आपकी पिक्चर रेड कलर से ही बनाऊ. आप बोलो नहीं, आई एम ब्लू कलर, आई डोंट हैव ब्लू कलर,
1: आई डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लू कलर. गुड,
0: आई विल स्टिल पेंट योर पिक्चर विद रेड कलर एंड आई विल स्टिल होल्ड ऑन टू द थॉट, नहीं आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं. तो इट इज इंटेग्रिटी एट द वेरी रूट लेवल. और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातों में नहीं, लेकिन सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में. अब जब हम वो ट्रस्ट का कलर अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देंगे, और वो कैसे होगा? जब मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं. अभी तक हम जो सोचते हैं वो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना, कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करना. तो प्रिटेंशन क्यों थी अभी तक? क्योंकि हमने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर हूँ, पोजिशन हूँ, स्टेटस हूँ, एक पर्सनैलिटी जो मैंने क्रिएट की है. तो एक आउटर पर्सनैलिटी है, और उस आउटर पर्सनैलिटी को मुझे सारा दिन दूसरों को क्रिएट करके दिखाना पड़ता है. एंड अगेन इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट कि मुझे बार बार ये डिसइंटेग्रिटी से चलना पड़ता था, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर बेस्ड थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो लेट्स से मैं इस टाइम बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप सोचेंगे अरे आप भी उदास होते हैं. और आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना मेरी सेल्फ एस्टीम को क्रैश कर देगा, अगर मेरी सेल्फ एस्टीम इस चीज पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड नॉर्मली आज दिन तक हमारी सेल्फ एस्टीम औरों के ओपिनियन पर बहुत ज्यादा बेस्ड थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था, और हमें वही चीजें बोलनी पड़ती थी जो औरों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है. तो आई एम चीटिंग माई सेल्फ. तो एक्चुअली इफ यू सी, सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम चीटिंग माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक वॉट आई एम थिंकिंग. वाई? बिकॉज यू माइट नॉट लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन यू डोंट लाइक मी, एंड इफ यू डोंट लाइक मी देन आई डोंट लाइक माई सेल्फ.
1: That's important.
0: So it's very deep. So sara din mein I'm going around impressing people, influencing people, and because of that I just can't be myself. I can't be what I want to be. Spirituality ne hame apna sahi parichay diya ki main kaun hu. Main wo atma hu jiske andar itni beautiful

0: है, शक्तियां हैं, वर्तमान समय कुछ एक कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स ओके, आई एम वर्किंग ऑन दैट. आई डू नॉट वॉन्ट टू क्लेम टू से दैट आई एम परफेक्ट,
1: बट आई कैन ट्रांसफॉर्म ना, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन.
0: आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट टू वर्क ऑन दैट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट. आई हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन आज दिन तक आई वॉन्टेड टू हाइड
1: फ्रॉम माई सेल्फ, यू नो,
0: कि वो सारी कमियों को छुपा के एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि आई एम जस्ट फाइन द वे आई एम. तो देन आई कुडंट बी माई सेल्फ, आई कुडंट बी माई सेल्फ. तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू कीप ऑन चीटिंग माई सेल्फ. तो मेरा अपने पे ट्रस्ट, और जैसी मैं हूं वैसे ही सब लोग हैं, वो मुझे 100%.
1: वो भी कई बार आप भूल जाते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वक्त आप खुद तो सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, हर बार आप अपने आप को याद दिला देते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच हो जाते हैं ये तो भूल जाते हैं. आपको वही, मुझे आप ही दिखेंगी जो जिस रूप में आप हैं. आई विल फॉरगेट, ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है.
0: दैट्स ओके, बट यू नो से जब हम अपने अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, कि मेरे अंदर ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन ये कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स फाइन, यू नो, सो दैट इज एक्सेप्टेंस कि इट्स ओके, ये कमजोरियां हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. इंटेग्रिटी, जब मेरे अंदर ये इंटेग्रिटी आ जाएगी, देन आई कैन एक्सेप्ट अदर पीपल ऑल्सो इन द सेम वे, कि इनके अंदर भी ये गुण हैं लेकिन ये थोड़ी कमजोरियां हैं, बट आई एक्सेप्ट देम विद बोथ द थिंग्स. तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मेरे सामने आने के बाद प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एक्सेप्ट यू. हम प्रिटेंड किसके सामने करेंगे, जो हमें वो कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते.
1: तो इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता यही है, बिगिनिंग में तो देर इज अ प्रिटेंशन, लॉट ऑफ प्रिटेंशन, बट ग्रेजुअली, बिकॉज कब तक, क्योंकि आप 24 घंटे का साथ रहेगा.
0: अब उस रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा दिन प्रिटेंड करना
1: बहुत मुश्किल हो जाता है.
0: आप ऑफिस थोड़ी देर प्रिटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी आप किसी कोलीग के साथ हैं, कभी लेकिन जिसके साथ पूरी जीवन बितानी है उसके सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता. और तब जब कहीं वो प्रिटेंस गिर जाता तो इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन,
1: एंड देन द कंप्लेंट कम्स, इट्स लाइक आपका असली चेहरा अब दिखा. ये
0: स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आपने कहा ना कि जो पहले से जानते थे एक दूसरे को और फिर उस संबंध में जुड़े, लेकिन वो जो पहले जानने वाला पीरियड था
1: वो डिफरेंट था, वो प्रिटेंशन वाला था कि आप 2 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, यू आर योर बेस्ट. That I have, that is actually, yes, that's understandable.
0: लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड जब आप ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर वीकनेसेस, तब दूसरे को आपके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा एंड तब वो जो सोच रहे हैं वो बोलेंगे. तो औरों को हमें प्रूव नहीं करना, लाइक यू सेड ना, यू विल हैव टू विन माई ट्रस्ट. नहीं, आई हैव टू बिकम स्ट्रांग इनफ
1: टू ट्रस्ट यू.
0: ट्रस्ट यू,
1: ट्रस्ट का रियल सेंस में मीनिंग क्या है? मैं आपसे क्या कैसे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं क्या आपसे उम्मीद कर रही हूँ, या क्या मैं आपके क्या विश्वास का बेसिक मतलब क्या?
0: जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती. एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ? देन दैट मीन्स देयर इज अगेन एन एक्सपेक्टेशन.
1: यूल चेंज, यूल डू दिस फॉर मी, यूल डू दैट फॉर मी.
0: तो आप हर टाइम कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो ट्रस्ट मतलब मैंने एक इमेज बना ली कि आपको ऐसा होना है. जितने दिन तक आप इस इमेज के अनुसार चल रहे हैं, आई से आई ट्रस्ट यू, जिस दिन वो इमेज के कॉन्ट्रडिक्ट

0: विश्वास तभी टूटेगा ना।
1: हाँ, यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं सच पे विश्वास, सच पे जो आपकी अधिकता जिसको मैं बहुत प्रशंसा करती थी आपको एक्सप्लोरना शुरू कर दिया तब, लेकिन तब भी मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ
0: पड़ रही है। जब इस फर्स्ट द एनर्जी कहीं और बोल रहे हैं तो आई वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि आप वो क्यों बोल रहे हैं, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट विद यू। लेकिन मेरे सामने जब आप बोलते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ योर एंड माई ट्रस्ट, यू नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रस्ट विद द अदर पीपल, लेकिन हम कहते हैं मैंने आप पर पूरा विश्वास किया, मैंने हर चीज पर पूरा विश्वास किया, आपने झूठ बोला तो मेरा ट्रस्ट टूट गया। हम ये नहीं उस पर विचार करते कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलना क्यों पड़ा।
1: जब मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ या किया जो आपको पसंद नहीं आया,
0: अगेन जब आपने कुछ ऐसा किया जो आपको पता है कि अगर आपने सच बताया तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड आई विल गिव, आई विल नॉट लाइक इट और वट एवर, तो तब आपको झूठ बोलना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम किसकी थी? माय लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, मेरे अंदर एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं थी। इस ताकत की कमी होने के कारण आपको मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा।
1: लेकिन
0: अब हम ये कह सकते हैं लेकिन आपने गलत किया, हाँ। आपने झूठ बोला, बट वी आर नॉट हियर टू लुक एट एवरीबडी एल्सेस फॉल्स। यस, अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट वी कांट चेंज देम। वी आर इन एवरी इंटरेक्शन वी आर गोइंग टू सी मैंने क्या किया इसमें, बिकॉज मैं उनको नहीं चेंज कर सकती कि वो सच बोले, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दूं कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़े।
1: लेकिन रिश्तों में यही एक कहीं ये जो माइंडसेट चेंज होने की बात है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं। हर रिश्ते में वो नहीं दिखता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, तो जहां से मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसी एक सिचुएशन में आपने एक तरह से बिहेव किया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वही सिचुएशन अगर चार साल बाद आई आपने अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से आपका बिहेवियर था, अब मैं किसको एक्सेप्ट करूं, ये वाले को एक्सेप्ट करूं या ये वाले को एक्सेप्ट करूं?
0: जब हम एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलते चलते इस यात्रा के दौरान उतार और चढ़ाव आ सकते हैं, परिस्थितियों के कारण, कोई और इंटरनल टर्मोइल के कारण, मे बी द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट देन आई हैव एक्सेप्टेड एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक ने दूसरे से झूठ बोला, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट टॉक इट आउट की इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यू नो नॉर्मली क्या होता है, आपने मुझसे झूठ बोला, आई एम सो हर्ट कि मैं विथड्रॉ कर जाऊं,
1: मैं बात ही नहीं करूंगी,
0: यू नो मैं इतना हर्ट हूं, अब मैं अपने दुख में घुलती रहती हूँ, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, ऐसा किया क्यों, एंड आई डोंट लाइक यू,
1: एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अंदर तो ये दुख चलता रहेगा, ऊपर से आई क्रिएट अ फेस आई एम ओके, यू नो दैट्स अगेन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कि ये भी कि मैं अंदर से तो उतनी ही परेशानी और ये परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऊपर से आई क्रिएट अ फेस कि इट्स ओके,
0: इट्स ओके। या बट द थिंग इज कि जैसे ही सी व्हाट हैपेंस इज, हम हर्ट जब हो जाते हैं कि आई एम हर्ट राइट एंड नाउ आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू हर्ट मी, सबसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम कि यू हर्ट मी,
1: हमेशा कोई और मुझे चोट देता है।
0: पहले तो उस बिलीफ सिस्टम को जब हम चेंज कर देते हैं कि यू कैन नॉट हर्ट मी, आपने जो किया सो किया, मैं हर्ट हो गई उससे, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी उस बात को स्वीकार करने की, तो उससे क्या होगा, मेरी आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। अभी तक नेगेटिव एनर्जी क्यों जा रही है, यू हर्ट मी, यू हर्ट मी, आपने मुझे धोखा दिया।

0: happening. I am responsible for my state of mind. I am hurt right now. It's my fault. You've done what you have to done. Why am I hurt? So, pehle to apni counseling. Ki why am I hurt? Work on myself. I need to be stable. Dusre ne kuch kiya, but why am I getting affected? So, pehle apni counseling karke apne aap ko strong bana le. Fir hamare andar wo taakat hogi dusre ki help karne ki. Ki what is the reason? What happened? But I'm able to talk with that compassion only when I don't hate you. But jab aap meko jhoot bolte hain, to I hate you at that time. So hate and compassion, gussa and love.
1: In fact, hate, and मैंने आपको पहले ही कटघरे में रख के आप पे पूरा इल्जाम लगा के I've already actually found, I'm saying like, you know, I've made you a criminal already.
0: तो फिर आपको मेरे से compassion नहीं मिल सकती है उस हालत में. क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम्मेवार ठहरा दिया मेरे दर्द के लिए. जब मैं आपको अपने दर्द से अलग कर पाती हूँ कि आप अलग है, मेरा दर्द मेरी सेल्फ क्रिएशन है. तो पहले सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट्स माई क्रिएशन, सो आई हील इट. एंड जब मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, हील कर लेती हूँ, तब मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है कि आपके अंदर जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप और क्या है कि आप किसी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं. एज योर पार्टनर इन लाइफ आई शुड बी एबल टू हेल्प यू थ्रू दैट. लेकिन हम इतने अपने ही दर्द में इतने घुल जाते हैं और दूसरे पर इतना ब्लेम डाल देते हैं कि दूसरा किस दौर से गुजर रहा है
1: ये हम भूल ही जाते हैं कि हाँ दैट्स ट्रू. और गलती करने का जो स्कोप हर एक की जिंदगी में होता है.
0: गलती वो भी समझनी पड़ेगी इन द राइट
1: पर्सपेक्टिव. गलती वो गलत है भी या नहीं.
0: ये हमने उसको गलती माना तो पहले तो उसको भी तो डिस्कस करके वो पर्सपेक्टिव राइट लाना पड़ेगा. लेकिन वो तभी हो जाता है व्हेन आई लव यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन.
1: दैट्स व्हाट वी से अनकंडीशनल लव द वे यू सेड कि द वे शिव बाबा.
0: एंड अनकंडीशनल लव इज वेरी इजी ओनली एंड ओनली इफ आई अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड. अभी वो लव है लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे दर्द आ गया. मैंने ये सोचा आप मेरे दर्द का कारण है तो मेरे प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है. और गुस्सा जहां आया वहां प्यार नहीं है.
1: बुद्ध और नफरत सिक्के के दो पहलू हैं कहा जाता है कि नफरत ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है. ये भी बहुत बातें कही जाती हैं.
0: प्रेम मुझात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, नफरत नहीं. नफरत एक संस्कार है जो बन चुका है, उसको तो हम हटा सकते हैं. लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसमें प्रेम और नफरत दोनों नहीं है. बिकॉज आई लाइक ओनली दैट love. So love is my original nature and I'm filled with it to be able to give it to everyone else.
1: Sister Shivani, aaj trust ko ek naye andaaz mein dekhne ki koshish ki. Ab vishwas ek aisi cheez thi jo hum dusron par karte the lekin aaj ye baat phir saaf ho gayi ki main se hota hua hi har cheez jayegi to wo kar kyun rahi hu apne liye. You know, I become very important. Bahut bahut dhanyawad is puri baat cheez ke liye. Om Shanti. कोई भी रिश्ता कहा जाता है कि उसकी नींव अगर मजबूत हो तो फिर वो इमारत या वो रिश्ता बहुत सुदृढ़ होता है. पति पत्नी के इस रिश्ते में हमने देखा कि हर बार हम कहते थे कि नींव विश्वास की है लेकिन आज विश्वास डगमगा रहा है. तो वो किसी और के कारण नहीं बल्कि हमारे अपने ही कारण. ये बात अगर समझ में आ जाती है तो रिश्तों को एक नया रूप दिया जा सकता है और विश्वास को दोबारा कायम किया जा सकता है. ये भी बात कि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता. जब मेरे ही हाथ में है तो मैं विश्वास दोबारा कर सकती हूँ. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999933555 0999933666 0987366666 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं रिश्तों की. रिश्ते जो हमारी जिंदगी में रस लाते हैं, हमें जिंदगी जीने का नया अंदाज देते हैं और जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. दोबारा आपसे होगी मुलाकात और कुछ खास रिश्तों के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

01024 की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। विचारों की एक लंबी कतार से गुजरते हैं हर रोज हम और आप। विचार जो हमारे अपने ही दिमाग में उपजते हैं और फिर हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। अगर विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जब विचार हमारे हाथ में नहीं रहते, जब वो थॉट्स हमारे हाथ से परे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स के ताने बाने में या फिर माया जाल में फंस कर रह जाते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा भी कहीं न कहीं बदल जाती है। इसीलिए जरूरत यह है कि अपने विचारों को पहचानें और फिर अगर लगता है कि वो नेगेटिव है तो उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से न सिर्फ हमारा डिप्रेशन खत्म होगा बल्कि सही खुशी, सही हैप्पीनेस को जो हम तलाश रहे हैं वो हमें मिल सकती है। किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमने कई स्टेजेस से गुजरे थे पिछले अपनी कड़ियों में। हमने ये जाना था कि सबसे पहले है सजग होना, यानी कि अवेयर होना कि थॉट्स किस दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद आता है कि कैच किया जाए, फिर हमें कहीं ना कहीं उन्हें अंडरलाइन करना है, पहचानना है, स्टॉप करना है, एंड देन वी कैन ट्रांसफॉर्म। हम बदल सकते हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अवेयरनेस से भी आगे बढ़ेंगे और कैच करेंगे उन विचारों को जो नेगेटिव है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। स्वागत है डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका भी हार्दिक
3: स्वागत। शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हमने एक वादा किया था अपने जितने भी दर्शक हैं, मैंने अपने आप से भी कहा था कि मैं ये पूरा प्रोसेस करने की कोशिश करूंगी, और हमने किया भी कि 15 मिनट तो नहीं बैठा गया आज, लेकिन हाँ 4 से 5 बजे सुबह की जो हमने वक्त तय किया है, जो कोशिश की गई है, तो बिल्कुल बॉर्डर पे 5 बजने में 10 मिनट के अलार्म लगा के हमने बैठने की कोशिश की, और 10 मिनट ही कोशिश ये की कि सजगता की कोशिश की जाए। एक एक्सरसाइज आपने बताई थी कि किस तरह से अपने आप को देखें और ऑब्जर्व करते जाएं, ये एक्सरसाइज आपने बताई थी जो आपकी साइकोथेरेपी का एक पार्ट था, कि यहां से लेकर अपने पांव तक क्या कुछ हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। एंड बिलीव मी, देयर वर अराउंड 10 थॉट्स विच केम विच आई कुड कैच, यू नो। सो दिस इज समथिंग विच एक्चुअली हमारे सभी दर्शकों के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि उनके मेल्स और फोन कॉल्स का मैं इंतजार कर रही हूं। लेकिन ये एक जो अवेयरनेस का प्रोसेस है कि सजगता का, इसको जब ये है, इसमें अब कैच कैसे करना है उनको? आए तो थे वो थॉट्स, लेकिन वो आए और गए, आए और गए। उसमें से 10 रजिस्टर जरूर हुए, लेकिन वो जब तक मैं पहुंचती उस वक्त तक, तब तक वो गायब हो चुके थे। तो ये जो अवेयर होने के बाद कैच करने वाली बात है, तो हम वो कैच कैसे करेंगे?
2: तो एक सबसे बस ये जो 10 विचार जो आपको आए उसी को कैच करो। हो सकता है कि आप लिख नहीं दे पाए, है ना, उस समय याद नहीं रहे, तो उसको लिख लो। भले उठ भी जाना पड़े उठ जाओ, फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करो। अपने पास ही रखो डायरी और एक एक वर्ड लिख लो, ज्यादा भी जरूरत नहीं है। कि एक ही शब्द आपने लिख लिया कि भी बेटी का टेंशन, आपको वो विचार आया अभी बेटी की एग्जाम है, नो डॉक्टर्स एग्जाम, आपने लिख दिया, आपको याद आ जाएगा। फिर आपको और कुछ आया और एक प्रोग्राम करना है, उसके लिए तैयारी करना।
1: अच्छा, एक शब्द ही लिख दो।
2: हाँ, तो पूरी बात आपको याद आ जाएगी।
1: तो फिर मुझे लगा कि वो मैं लिखने लग जाऊंगी तो मेरा पूरा वो चेन टूट जाएगा।
2: अगर याद रहे तो बेस्ट है, अगर याद न रहे तो लिखो। और भले एक दो दिन नहीं भी लिखो, क्योंकि रिपीट होने, जो आपका रूट कॉज है जिसको आपको कैच करना है, वो थॉट आपके रिपीट होने। पहले तो मैं

0: को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार के विचार आते हैं। उस समय जो आपको विचार आते, एक तो जो काम करना है उसके विचार आएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें आपके जीवन की है उसके विचार कुछ आएंगे,
1: जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उसके
0: भी आ सकते हैं, और जो रूट है उसके भी विचार आ सकते हैं। जो आपको बार बार विचार डिस्टर्ब कर रहा है कि जो डिप्रेशन का कारण हो सकता है, डिप्रेशन न भी कहो, जीवन में जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जो पूरी खुशी को हमें अनुभव करने नहीं देते हैं, उसका कारण उस विचार में आ जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, इसमें हमें ये तो डिफाइन हम नहीं कर सकते अभी कि ये विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव है,
0: अभी नहीं
1: ये
0: करो।
1: तो जब हम एनालिसिस करेंगे तब करेंगे।
0: अब भले उसको डिफाइन नहीं भी करो, परंतु ये प्रोसेस में रूट आएगा। मैं आपको एक दो उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का था जो निर्णय नहीं कर पा रहा था। एक बार मैं माउंट आबू में ही था तो वह मेरे पास आया और उसने कहा, डॉक्टर मुझे 2 मिनट चाहिए। तब मैं भी जा रहा था, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं नहीं बस मुझे 2-3 मिनट का ही वक्त चाहिए। तो मैं कह, ठीक है। और उसने ये बात बताई कि मेरी दिक्कत यह है कि छोटी छोटी बातों में भी मैं निर्णय नहीं कर रहा। छोटी सी भी बात होगी कि ये करूं या यहां जाऊं, ये ट्रेन में जाऊं या उस ट्रेन में जाऊं, तो वो भी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका कारण क्या है? थोड़ा सा एक और भी टेक्निक होती है, साइकोथेरेपी जब करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो बैठ करके मैंने उससे थोड़े से कुछ प्रश्न पूछे, उसको कुछ बातें याद करने के लिए कहा, और जब वो बातें कही तो बस 4-5 मिनट में ही यह बात सामने आ गई जिसको उसे कैच करने की जरूरत है। पर उसने तो पूरा प्रोसेस नहीं किया था। एक प्रकार से कहेंगे कि इंटरव्यू में यह बात सामने आई, लेकिन ये सेम बात इस प्रोसेस में भी उभर करके आ सकती
1: वो
0: है।
1: वो कैच इसीलिए कर पाए क्योंकि आप थे यहाँ।
0: हाँ,
1: खुद कैच
0: खुद को करना है।
1: और हर रोज आ रहे हैं, हर रोज आप तो नहीं मिलेंगे
0: ना? हाँ।
1: तो हर रोज तो हम ही हैं जो हम करेंगे।
0: और हम ये भी चाहते हैं कि भी व्यक्ति खुद करे।
1: हाँ।
0: डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम से कम हो जाए।
1: सेल्फ सफिशियंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद अपना ऊपर कंट्रोल करेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी, एक बात जो सामने आ रही है कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अध्यात्म जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग चीज है, एक अलग बात है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और विज्ञान जो है वो बिल्कुल सही खरा उतरता हुआ है कि भाई सब कुछ चेक किया गया है उसके ऊपर है। जो आपने अभी थ्योरी बताई हमें, जो बात करने का तरीका कि किस तरह से अपने आप से बात करनी है, सजगता का एक जो पूरा था, इसमें कहीं ना कहीं पूरी साइंटिफिक थ्योरी है जो आपने बता रहे, जो साइकोथेरेपी का एक हिस्सा है, ये जो पूरी टेक्निक है। अध्यात्म क्या कहता है? मेडिटेशन इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट ओनली?
2: या आई थिंक इट्स सिमिलर। मतलब वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड द वे ऑफ डूइंग इट कुड बी लिटिल डिफरेंट, बट विधि तो सेम ही है। विधि यही है कि मन को क्वाइटन करना है, तो क्वाइटन करने से जो बहुत डीप रूटेड थॉट्स जो दबे हुए थे वो अपने आप इमर्ज हो जाएंगे, तो हम उनको कैच कर पाएंगे। कई ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो बचपन में कुछ मेरे साथ हुआ हो और मैंने उसको पूरी लाइफ अभी तक भूले हुए थे, लेकिन वो सबकॉन्शियस में बहुत ज्यादा डीप रूटेड है और वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो लेकिन जब माइंड साइलेंट हो जाता है तो वो इमर्ज हो जाती है बात बिल्कुल। तो इट इज द सेम थिंग, लेकिन द वे ऑफ डूइंग इट वुड बी लिटिल डिफरेंट, बट वी गेट द सेम रिजल्ट। एंड इनफैक्ट अभी वो समझ में आ रहा है कि राजयोगा भी एक साइकोथेरेपी की तरह, यू नो, इट इज साइकोथेरेपी। और इसलिए हम देखते हैं कि उसके अंदर इतना चेंज हमारे अंदर आ जाता है। इट्स जस्ट दैट साइकोथेरेपी करने के लिए हमें एक डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, तो समवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर। तो डॉक्टर कितने अच्छे हमें जो मिले डॉक्टर, और हमारा वो फेथ कितना होगा डॉक्टर के ऊपर, और हम उस विधि को कितना अपनाएंगे। लेकिन राजयोग क्योंकि हम अपनी स्व इच्छा से करते हैं, अपने ही इंटरेस्ट से करते हैं, तो वी गिव इट आवर फुल, यू नो, फुल।
1: एंड इनफैक्ट सबसे बड़ी बात अपने साथ कर रहे हैं ना।
2: हाँ।
1: तो सबसे ज्यादा फेथ तो अपने ऊपर होगा ही।
2: बिल्कुल। तो मे बी वो रिजल्ट मिल जाता
0: है फास्टर।
2: या इट विल बी फास्टर।
0: 15 मिनट करो, क्योंकि राजयोग में 15 मिनट करने की भी जरूरत नहीं। अगर सचमुच आप करने लगो, थोड़े दिन लगेंगे, एक दिन में न भी हो, आप अगर राजयोग का अभ्यास करने लगे तो ऐसे एक सेकंड में आएगा। आप मेडिटेशन कर रहे, विचारों को थोड़ा शांत, इमीडिएटली आएगा कि यह कारण था। देखो मैं आपको एक दो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। वह जो स्टूडेंट का मैं आपको उदाहरण बता रहा था, उसके साथ जब ये डिस्कस किया तो उसने खुद ये प्रिसाइसली वो याद कर पाया। उसने कहा कि भी हमारा बॉक्स बनाने का बिजनेस है, छोटे मोटे अलग अलग साइज

0: जिसके वो लोग बॉक्स बनाते थे। कहा कि भी एक बार वो बॉक्स की छोटी सी फैक्ट्री होगी, उसमें बना रहे थे, सभी वर्कर फ्री थे, तो उसने सोचा कि भी एक स्पेसिफिक साइज का बॉक्स है, उसकी डिमांड आती ही है, आज नहीं है समझो एक मास के बाद आएगी, तो वर्कर्स क्यों फ्री बैठे रहे, चलो मैं उसके 200-500 बॉक्स बनवा लेता हूं। तो उसने कहा यह बॉक्स बनाओ। तो थोड़ी देर के बाद उसके फादर आए, अरे क्या गलती कर दी, तुम बुद्धू हो, तुमको अक्ल नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, वो इतना भी काम तुम्हारे से नहीं आता है, डांटने लगे। तो मैंने फिर जो थोड़ा गहराई में गया कि वहां उसका रूट है, उस समय जो फादर ने सुनाया वो डीप पहुंच गया और वो सदा अभी उसे याद है, भले वो कॉन्शियसली भूल गया लेकिन गहराई में है मन की और सदैव वो उसे डिस्टर्ब करता है।
1: तो एक बार डांटा, एक बार डांटने किया,
0: इफ यू आर इमोशनल, एक बार में भी, क्योंकि तब वो इमोशनल हुआ होगा, रोया भी होगा, उसे बहुत फील हुआ होगा, फादर ने भी जिस टोन में सुनाया, अगर वो गहराई में चला गया तो बार बार उसे सामने आता है, छोटा भी निर्णय करना तू नहीं कर पाएगी, तेरे से ये नहीं होगा।
2: एक्चुअली एक बार नहीं होता है
1: ये, कहीं ना कहीं कांस्टेंट वो कहते रहे नहीं।
2: एक बार दूसरा व्यक्ति कहता है, हम बार बार उसको अपने आप को सुनाते हैं। आप अगर अभी मुझे कुछ कहकर चले जाएं और फिर कभी ना मिले, आप शायद एक ही बार कहेंगे लेकिन मैं अपने आप को 100 बार वो बात सुनाऊंगी,
0: 1000 बार भी कहेंगे,
2: 1000 बार भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती, उन्होंने ऐसे कैसे,
1: आई रिमेम्बर दैट,
2: वी काइंड ऑफ यू नो री अफर्म इट बाय एंड वी कैन डू दैट फॉर इयर्स। हम बहुत सालों तक किसी की कोई बात को पकड़ कर रखते हैं।
1: आई रिमेम्बर दैट यू नो लाइक told me,
0: you are
1: a manipulator, and I kept on, and I never met that person again, but I kept on telling everyone that that person said that I'm a manipulator, and am I a manipulator? But it became so difficult, you know, like I can understand that.
2: And then you say to yourself, but I'm not a manipulator, but that person said I am a
1: manipulator. So why did that person say that? You know, like I kept on doing it, it took me a long time, yes I realized that, and I never met that person.
2: So that whose fault is it?
1: Mine.
2: Abhi hum kya jaldi se kehte hain, it's that person's fault, unhone mujhe kaha, he said it only once. He said it only once and went away. See, that's
1: and
2: where
1: whether he meant it or not, I'm like, whatever he was trying to do, I don't even know that.
2: And I know myself better. So, you know, I just need to, jab unhone ek bar kaha, it's not that ke hum logon ki baaton ko bilkul reject kar dein, kyunki kai hamare bahut bhalai ke liye kuch keh rahe hain, hum usko le lein, analyze kar lein, useful hai, usko accept karein, agar apne andar koi nahi to
1: फिनिश करें।
0: जो राज्यों से फास्ट होता
2: है, बहुत फास्ट होता है, इट्स वेरी फास्ट,
0: और एक उदाहरण
2: कैच हो जाता है ना बहुत जल्दी के, ये रियली मेरे फायदे के लिए कुछ कह रहे हैं या अपने इनकी परसेप्शन, यू नो, इनको उस तरह से दिखाई दे रहा है, बिकॉज लाइक दिस व्हाट इज हैपनिंग कि पीपल कैन रियली मैनिपुलेट अस, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा कहकर जा सकते हैं जो हमारी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत डीप लास्टिंग।
0: और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं ताकि स्पष्ट होगा
1: जी,
0: कि भल राजयोग से हम करें बहुत फास्ट होगा, सीबीटी वो स्लो प्रोसेस है थोड़ा। और एक लड़की का किस्सा है कि शी वॉज फीलिंग इन्फीरियर, एंशियस, इवन नो टू मच डिस्टर्ब, डिप्रेशन एंग्जाइटी दोनों थी उसमें, बार बार डिस्टर्ब होके आती थी। फिर एक बार ये तो प्रोसेस में हुआ, साइकोथेरापी में उसने खुद कहा कि मेरे से बड़ी बहन है, और जब मेरा जन्म हुआ तब पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा हो, लेकिन एक तो बेटी हुई तो उनको दर्द था, कहते बोले मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं कहा लेकिन मेरी नानी हमेशा टोकती थी कि हमको तो बेटा होना चाहिए था। और दूसरी एक इंसिडेंस उसने खुद कहा, और वो एक जगह पर रूट हो सकता है, तो शिवानी बेन ने बताया ना, बोले इवेंट तो एक बार हुई लेकिन उसने हजारों बार रिपीट किया, उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस था, तो एक बार उनकी जो उससे बड़ी बहन थी, वो दोनों बहनें जाती थी प्रिंटिंग प्रेस में, फादर को हेल्प करती, पहले जो मैनुअल मशीन आते थे ना, तो मैनुअल मशीन से वो कोई नहीं था वर्कर, तो बड़ी बहन है वो मशीन को स्टार्ट करो, फादर आए कि नहीं नहीं नहीं बेटे तुम नहीं चलाओ, तुम्हारे मसल्स आ जाएंगे, तुम लड़की हो तुम ये नहीं चलाओ। फिर कहा कि 2-3 दिन के बाद फिर से ऐसा हुआ कि वर्कर्स नहीं थे, मैं अकेली थी तो मैं भी चलाने लगी, मैं चलाती गई काफी देर तक, फादर आए उन्होंने बोला ही नहीं मुझे तुम्हें नहीं करो, उसका मतलब है कि दे डोंट लाइक मी, ये इंटरप्रिटेशन कुछ ना कुछ भी नहीं उसका, हाँ रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा, टू मच वर्क हो सकता है, रजिस्टर ही, लेकिन उसने अभी बहुत बार ये बात को रिपीट की।

0: थोड़ी भी बार की बल्कि इमोशनली कही होगी जिससे बस ये हो गया कि पेरेंट्स बड़ी बहन को प्यार करते मुझे प्यार नहीं करते.
1: ना दिस इज अवेयरनेस एक्चुअली कह रहे ना किस बात जब कोई एक हमें कुछ कहकर चला जाए और हम बार बार उस चीज को अपने आप से रिपीट कर रहे हैं अवेयर सी व्हाट एम आई डूइंग यू नो अगर हम उस टाइम रुक कर देख ले कि उसने एक बार कहा ये हो सकता है सच नहीं है चेक कर लिया और देख लिया सच नहीं है. व्हाई एम आई टॉर्चरिंग माई सेल्फ
2: व्हाई डू वी डू दैट आई हैव डन दैट
1: वी ऑल हैव डन
2: दैट आई वेंट थ्रू माई होल सेल्फ एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट वेदर आई एम अ मैनिपुलेटर और नॉट एंड आई फाउंड दैट नो आई एम नॉट आई डिड दैट एनालिसिस वेयर आई फाउंड बट आई केप्ट ऑन रिपीटिंग व्हाई डू वी डू दैट
1: बिकॉज वी आर नॉट श्योर वी नॉट श्योर क्योंकि पब्लिक ओपिनियन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हम अपने आप को क्योंकि उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते. अगर मैं आपसे अभी कहूँ ना कि अपनी विशेषताएं कुछ सुनाइए तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता उन लोगों से पूछो जो मेरे आसपास रहते हैं. इट्स लाइक सेइंग जो मेरे आसपास लोग हैं वो मुझे मेरे से अच्छा जानते हैं. इसलिए ज्यादातर हमारे लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है क्योंकि हम सोचते हैं हम और वैसे भी हम औरों की तरफ ज्यादा देखते हैं ना इसकी विशेषता इसकी कमजोरी अपनी नहीं देखते. तो इसलिए अगर हमें कोई कह दे कि आपके अंदर ये विशेषता है कई बार झूठी महिमा हो सकती है वो इट कुड बी फॉल्स प्रेज बट बिकॉज समबडी एल्स हैज सेड इट्स ट्रू. इफ समबडी क्रिटिसाइजेस वो झूठ हो सकता है बट बिकॉज समबडी एल्स हैज सेड इट इज ट्रू
2: इट मस्ट बी ट्रू. ये सर कहीं ना कहीं सच्चाई का थोड़ा सा तो
1: क्योंकि किसी और ने कहा. जब हम अपने आप को देखना शुरू कर देंगे अपने आप से मिलना शुरू कर देंगे तो फिर पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा. कोई कुछ कहेगा सुने चेक डिस्कार्ड और एक्सेप्ट एंड मूव ऑन.
2: आई थिंक एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू रीच दैट लेवल कि डजेंट रियली मैटर यू नो व्हाट अदर्स आर सेइंग बिकॉज सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन
1: सेल्फ. जब हम अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए तो दूसरा क्या जानेगा हमें. हमारे से अच्छा दूसरा कैसे जान सकता है हमें. इट्स नॉट पॉसिबल बट वी गिव देम दैट अथॉरिटी.
2: तो हम सजगता पे थे कि सजग रहने के लिए ये जो हमने एक पूरा प्रोसेस किया है और उसके हमें फायदे सजगता आते ही पहला ये एहसास कि पब्लिक ओपिनियन रियली डजंट मैटर ये एक बात समझ में आती है. तो राजयोग में आपने कहा कि जल्दी भी कैच कर सकते हैं हम. तो राजयोग के लिए कुछ और कैसे जैसे वहां बैठना तो वही पूरा तरीका है उसके बाद क्या हमें कुछ और सोचना चाहिए.
1: क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ना ये रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. इवन ये होल जो प्रोसेस है इट्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द आउटर टू द इनर. जो थॉट्स है वो कौन क्रिएट कर रहा है. आई द सोल. मैं आत्मा जब संकल्प करती हूँ तब उसको हम मन कहते हैं. मन आत्मा की ही फैकल्टी है. तो अब अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस अभी जो हम कर रहे हैं कि बॉडी की एक एक पार्ट पर फोकस करें ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं. मैं शरीर हूं मैं देह हूं ये अभी तक बहुत कूट कूट के भरा है. एंड फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू द स्टेज कि मैं आत्मा हूं ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है. तो जितनी जल्दी हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो हमारे ये सारे एक्सटर्नल जो बैरियर्स हैं ये बहुत जल्दी हम इनसे डिटैच हो जाएंगे. तो राजयोग में हम ये अभ्यास करते हैं कि यू नो रीच टू हु एम आई यू नो टॉक टू योर सेल्फ हु एम आई एंड बिकॉज नॉलेज मिल गई है तो आंसर अपने आप निकलेगा. तो हम जब बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स जैसे आते हैं जैसे गिरीश भाई ने भी कहा कि बच्चों के हस्बैंड के ये सब आएंगे. तो एवरी टाइम दैट थॉट कम्स फर्स्ट तो आई कीप सीइंग कि किस चीज के थॉट मेरे को बार बार आते हैं. इसका मतलब मैं अभी भी अपने आप को उस चीज के साथ बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर रही हूँ. मे बी एज अ मदर मे बी एज वट एवर एज अ प्रोफेशनल. देन आई अगेन टेल माई सेल्फ येस दिस इज माई रोल लेकिन ये मैं नहीं हूं. अभी जो बैठा है मेडिटेशन करने दैट्स नॉट a mother. That's not an engineer. That's not a teacher. Jo meditation abhi karne baitha hai wo kaun hai? Wo main hu. Main kaun hu? Kya main ek mother hu? Nahi. Mother mera role hai.
2: Main even Kanupriya bhi nahi hu.
1: Nahi. Kanupriya to mera naam hai sirf. Kanupriya to mujhe ek identification label mila hai so that I can address you as Kanupriya. You know I address people by name. Nahi to naam nahi hai. Main naam nahi hu. मैं तो शरीर भी नहीं हूं. ये शरीर भी मेरा है मेरा हाथ जैसे तो ये मेरा शरीर है तो मैं कौन हूं. यू नो दैट्स हाउ आई कीप ऑन टॉकिंग टू माई सेल्फ कि मैं रिलेशन नहीं हूं मैं डेजिग्नेशन नहीं हूं मैं तो नाम भी नहीं हूं मैं तो शरीर भी नहीं हूं. सो ब्रेक डाउन ऑल दोज थॉट्स विच

0: are coming. So then मैं कौन हूँ? So slowly slowly वो सारी thoughts जो आ रही थी, जो सारे दिन में बहुत ज्यादा entangled, वो धीरे धीरे side होती जाएंगी. Finally I come back to the truth, the reality, कि I am that beautiful conscient energy. मैं एक आत्मा हूँ. मैं कैसी आत्मा हूँ? You know, मैं कहाँ रहती हूँ? मेरा स्वरूप कैसा है? What do I do the whole day? That's how I start talking to myself.
1: Right.
0: Then the answers I start giving to myself based on the knowledge. क्योंकि मुझे सारी knowledge है कि like हमें knowledge मिली कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप. मुझे शांति चाहिए नहीं. मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप. मुझे प्यार चाहिए नहीं. Initially difficult to accept कि मुझे शांति चाहिए नहीं. मैं हूँ ही शांत स्वरूप. Then I talk to myself. Is it true कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ? मुझे मैं तो सारा दिन अशांत रहती हूँ. मैं तो कितना
1: तलाशी रहती हूँ.
0: तो कैसे हो सकता है कि मैं ऑलरेडी शांत स्वरूप हूँ? यू नो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन एंड दिस कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड देन आई सेड हाँ मैं शांत स्वरूप हूँ क्योंकि मुझे शांति अच्छी लगती है. तो इसीलिए मुझे वो चीज की आज भी अट्रैक्शन हो रही है. मैं कितना भी गुस्सा करूँ मुझे गुस्सा अच्छा लगता नहीं है. अच्छा हमेशा वही लगेगा जो हमारी नेचर होगी, जो नेचुरल होता है. अननेचुरल चीज अच्छी नहीं लगती. देन आई स्टार्ट दैट्स द प्रोग्रामिंग दैट गोज ऑन कि मेरी ओरिजिनल नेचर पीस है. फिर कोई टेंशन वाली थॉट या कोई बीच में आ गई, ये थॉट क्यों आ रही है जबकि मेरी ओरिजिनल नेचर. यू नो सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायलॉग एंड दिस इज अ प्रोग्रामिंग दैट आई विल डू अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर आई फीड इन ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस इन टू दिस कंप्यूटर दैट आई एम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी प्योर कॉन्शियस चैतन्य शक्ति आत्मा जो यहाँ बैठकर इस पूरे शरीर को चलाते
1: हैं. ये बातचीत जो हो रही है, तर्क वितर्क है, ये मेरा दिमाग
0: दिमाग इज ब्रेन
1: मेरे दिमाग आत्मा के साथ कर रहा है या क्या हो रहा है?
0: दिमाग इज अ ब्रेन. तो ब्रेन फिजिकल, ब्रेन फिजिकल है.
1: मेरी मेरा मन कर रहा है.
0: हाँ
1: मेरा माइंड कर रहा है.
0: माइंड करता है. ये दो लॉयर्स हैं और एक जज होता है.
1: जज इज
0: बुद्धि इंटेलेक्ट. हमने पहले भी कहा था आत्मा जब सोचने का काम करती है तो वो मन है. जब आत्मा निर्णय लेने का काम करती है तो वो बुद्धि है जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं. और फिर जब वो इंटेलेक्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया और हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, यस मैं हूँ शांत स्वरूप, फिर वो धीरे धीरे मेरा संस्कार बनता जाता है. तो आत्मा ये तीन चीजें हैं, मन बुद्धि संस्कार. तो ये दो लॉयर्स वो मन है. मैं शांत स्वरूप हूँ, नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है.
1: लॉयर मन ही दोनों बातें
0: दोनों साइड का, यू नो प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस दोनों मन ही कर रहा है. क्योंकि मन एक नए बिलीफ सिस्टम से थिंकिंग चल रही है और एक पुरानी बिलीफ सिस्टम की थिंकिंग भी बीच बीच में उसको कट करती है. फिर धीरे धीरे बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज चेंजिंग नाउ ना, थॉट की जो सोर्स थी बिलीफ इन्फॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस, अब हमारी इन्फॉर्मेशन की सोर्स पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमने भरनी अब शुरू की है. पहले भर नहीं रहे थे, पहले नेगेटिव था तो थॉट नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव भरना शुरू किया तो वो वाली थॉट्स भी शुरू हो गए.
1: तो वो तर्क ज्यादा स्ट्रांग होने लग गया.
0: yes.
1: क्योंकि वो सही लगने लग गया.
0: एब्सोल्युटली. फिर जो आत्मा है उसको सच्चाई तो हमें हर एक को पता है, अंदर हर एक को पता है कि गुस्सा नहीं अच्छा लगता. तो फिर बुद्धि वो आंसर देगी, यू नो दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू आर. एंड कुछ दिन जैसे कहा एक महीना करते रहिए, जैसे शायद उतना मतलब एवरीबडी विल टेक देयर ओन टाइम सो वी विल नॉट रियली से के यू नो इतना टाइम लगेगा. थोड़े दिन के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट, दैट जस्ट बिकम्स नेचुरल एक्सपीरियंस. और इस चीज को फिर हम सारा दिन में जो हमने कहा ना एक एक मिनट, क्योंकि सारा दिन में फिर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं. ऑफिस में घुसे, मैं कौन हूँ जो ऑफिस जा रहा है, मैं कौन हूँ जो अपने परिवार से बात कर रहा है, ये बार बार एक रिविजन जब होती जाती है तो धीरे धीरे वी आर मूविंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस
1: टू अगेन
0: सोल कॉन्शियसनेस. अगर आप दिन में एक मिनट पे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आधा मिनट पे सोल कॉन्शियस है, आप ईगोलेस हैं उस टाइम. सोल कॉन्शियसनेस मतलब ईगो नहीं, इट्स ईगोलेस. और जितनी देर आप ईगोलेस हैं टेंशन एंग्जाइटी एंड द होल लिस्ट.
1: तो बस एक मिनट भी अगर हम ईगो लेस हैं,
0: वेरी बिग,
1: लेकिन एक मिनट के बाद ही हम फिर ईगो में आ जाएंगे.
0: नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे परसेंटेज पर
1: कम होता जाएगा. ओके वंडरफुल.
2: अंडरस्टैंडिंग आएगी तो नहीं होगा फिर.
0: जी हम तो एक मिनट करके ना, मैं शांत स्वरूप, उसका इफेक्ट कम से कम 5-10 मिनट रहेगा. फिर उसके बाद एंड

0: सिस्टम भी
1: चेंज होता जाएगा ना धीरे धीरे,
0: जो ईगो के थॉट है वही चेंज हो जाएंगे। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ईगो वाला औरों को सोचता है, सेल्फ एस्टीम अपने बारे में, तो मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली हम सेल्फ की ओर ही डायरेक्ट होते
1: हैं। कि अगेन कांस्टेंट ये चलता रहेगा अपने साथ। ये प्रोसेस जो हमने सुबह 4 से 5 के बीच में या कोशिश की उस टाइम तक शुरू करें, और जैसे कि आपने कहा कि मेडिटेशन में भी हमने यही देखा जो पूरा राजयोग की आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वही बात एक पॉजिटिविटी, एक जो किस तरह से अपने आप के बारे में अवेयर होना कि मैं कौन हूं और मेरे क्या क्या विचार चल रहे हैं, ये एक वॉच डॉग की तरह भी है। अगर बुद्धि तो वो ये देख रही है कि क्या हो रहा है, ये अवेयरनेस है, सजगता है। देन वी कैच द थॉट्स विच वर देयर, नेगेटिव पॉजिटिव हम बाद में आएंगे एनालिसिस पे, वो मेरे ख्याल से अंडरलाइन होगा फिर।
0: आप फिर वो उसमें अंडरलाइन डिफरेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको अंडरलाइन कर,
1: वो एनालिसिस करेंगे जब तभी हम वो अंडरलाइन पे आएंगे। वो अंडरलाइन जो है हम अगली कड़ी में करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास वक्त खत्म हुआ। लेकिन बिल्कुल ये दो एस्पेक्ट्स जो थे, दो हम स्टेप्स पे थे, अवेयरनेस हमने पहले ही समझ ली थी थोड़ी बहुत, सजगता आज हमने एक मेडिटेशन के एस्पेक्ट को भी समझा कि मेडिटेशन इज अगेन अ साइंस बेसिकली, यू नो, अ वे ऑफ लाइफ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। अवेयरनेस, अवेकनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज वॉट द रियलाइजेशन इज कमिंग नाउ टू अस। थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्लैरिटी से ये बात सामने आ रही है कि अवेकनिंग इज मस्ट, अवेकनिंग हैज टू हैपन, बट इट शुड हैपन एट अर्ली एज। दिस इज वॉट आई फील। थैंक यू सो मच। खुद को तलाशने के इस पूरे सफर में आज एक बहुत खूबसूरत पड़ाव था जब हमने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से मेडिटेशन से हम अपनी आत्मा से रूबरू हो सकते हैं, हम खुद को पहचान सकते हैं। ये एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप राजयोग मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जा सकते हैं और इस मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका अनुभव भी कर सकते हैं। ये जो मेडिटेशन का कोर्स है ये निःशुल्क है। और आपको बता दें कि दुनिया के 120 देशों में 8000 सेंटर्स है, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स जो हैं, और उसके अलावा भारत के कोने कोने में ये सेंटर्स स्थापित हैं। तो अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अब वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
2: खुशियों की गुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणे रिया आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: बात उन दिनों की है जब लखनऊ में सशस्त्र क्रांतिकारियों से मेल मुलाकात कर राम प्रसाद बिस्मिल अपने जैसे क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात अशफाक उल्ला खां से हुई और वे उनके दल के सदस्य बन गए। अशफाक उल्ला खां ने शाहजहांपुर में दंगों के समय बिस्मिल के साथ चौराहे पर खड़े होकर एकता का आह्वान करते हुए कहा था कि कोई भी मजहब इतना संकीर्ण नहीं कि वो एक दूसरे का खून बहाये। हिंदू और मुसलमान दोनों ही भारत माता की संतानें हैं। हमें चाहिए कि हम भाई भाई की तरह मिलकर रहें। क्रांतिकारी बिस्मिल और अशफाक की गूंज में समाहित होकर कई राम और रहीम का मिलाप हुआ और इस तरह उपद्रव शांत हो गया। देश भर में लोग जातिगत विभेद से ऊपर उठकर एक हो गए। 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की बैठक हुई, जिसमें हथियारों और कारतूस की खरीदी के लिए खजाना लूटा जाना तय हुआ। 9 अगस्त को शाहजहांपुर से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 7 क्रांतिकारियों का एक दल सहारनपुर से लखनऊ जाते दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हुए। काकोरी से कुछ आगे ट्रेन की जंजीर खींची जानी थी। योजना के अनुसार काकोरी स्टेशन और आलमपुर स्टेशन के बीच चेन खींचकर खजाना लूट लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रांतिकारियों की खादी की चादर घटनास्थल पर ही छूट गई। इस अनजानी भूल ने पुलिस को क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया। अशफाक उल्ला खां को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया।
2: चक दे हो चक दे इंडिया,
3: अबे ओ इंडिया की औलाद, वो गोपी और किसान का ट्रक आ गया, चल जा प्लेट लगा जाके।
2: समझो लग गई काका।
4: जय राम जी की काका।
3: जय राम जी की। अरे भाई तेरा गोपी नहीं दिख रहा आज।
4: अरे आपके लिए खेत से ताजी बूलियां लेकर आया हूँ, वो गोपी ला रहा है पीछे। अरे गोपी बेटा, वो धनिया की टोकरी लेते आना।
5: और सुनाओ काका, क्या हाल है?
3: बस सब ठीक है बेटा, अब तुम ही लोगों से तो इस वीरान से ढाबे में रौनक आ जाती है।
5: ड्राइवरी लाइन में पिछले 20 सालों से दुनिया के ढाबों में खा रहा हूँ, मगर तुम्हारे ढाबे सा स्वाद कहीं नहीं मिला काका।
3: अरे मस्का वस्का बाद में लगा लेना, वो गोपी आ गया, पहले उसकी खुपड़िया से टोकरी उतरवा ले भैया। और बताओ भाई, कहाँ से चले आ रहे हो?
5: काका शाहजहांपुर से आ रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं।
2: पर काका, कल ही तो आपने शाहजहांपुर के बारे में बताया था।
3: अरे उस छोटे से कस्बे में बताने लायक भी कुछ है क्या?
2: अरे चुप,
3: बक बक बक बक करता रहता है, कुछ पता भी है? कस्बा कस्बा चिल्लाता रहता है, अशफाक उल्ला वहीं के थे।
4: अरे काका, आप जबरदस्ती गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, मैं तो बस यूं ही।
3: और हाँ सुनो, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल में बड़ी गहरी मित्रता थी।
2: लो जी, आप दोनों का खाना हाजिर है।
5: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, वो खाना माना तो बाद में होता रहेगा, पहले तो काका उन दो बंदों के बारे में बताओ आप।
3: अरे बेटा क्या बताऊं, आजकल कौन सुनता है, बड़ी गहरी दोस्ती थी इन दोनों की।
0: उत्तर प्रदेश का एक नामालूम सा कस्बा शाहजहांपुर, कस्बे में रहता है एक नामालूम सा मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार। सन 1920 और सन 1930 के बीच का दौर, देश की तरुणाई भारत माँ के हाथ पैरों में पड़ी अंग्रेजों की बेड़ियां काट डालने को बेताब हो रही थी। उस दौर में उस नामालूम से मुस्लिम परिवार ने देश को दिया एक अनमोल रतन, जिसे आज हम अमर शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम से जानते हैं।

0: अरे ये तो बिस्मिल साहब लग रहे हैं। अरे बिस्मिल साहब, अरे जनाब बिस्मिल साहब।
1: इश्फाक मियां, अमा क्या हाल है? घर में सब खैरियत है?
0: जी दुआ है आपकी। क्या हसीन इत्तेफाक है, आपकी गजल गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था कि आप दिख गए। हमने पहचान लिया बिस्मिल साहब, वरना आप तो गैरों से आगे बढ़ गए थे बिना पहचाने।
1: आप जिस तरह झूमते गाते चले जा रहे थे, वो देखकर हमें लगा हसरत साहब कोई गजल या नज्म गा रहे हैं।
0: यूं हमारा मजाक न उड़ाइए हसरत साहब कहकर, चंद अल्फाज बस यूं ही यहाँ वहाँ जोड़ लेते हैं। आपकी संगत मिली बिस्मिल साहब तो शायरी भी सीख जाएंगे। खैर ये बताइए, शाहजहांपुर कब आए आप?
1: मियाँ बस कुछ 3 दिन हुए।
0: मैनपुरी वाले केस का क्या हुआ?
1: बेदाग बरी हो गया, पर अब जी उचट गया है इन सब कामों से। तुम जैसे नौजवानों को ये काम अपने कंधों पर लेना चाहिए।
0: मेरा ख्याल है गलत साथियों की हरकतों से आप परेशान हुए हैं। आपके साथ काम करने का मौका मेरे लिए खुशनसीबी होगी, मेरा यकीन कर सकते हैं आप?
1: कट्टर हिंदू आर्य समाजी हूँ मैं।
0: अरे बंदा भी कट्टर मुसलमान है बिस्मिल साहब।
1: फिर कैसे निभेगी?
0: खूब निभेगी, क्योंकि इंकलाबी का एक ही मजहब होता है, इंकलाब। और जनाब एक कट्टर मुसलमान उसूलों की पाबंदी में भी पक्का कट्टर होता है।
1: तो कट्टर मुसलमान जी, मौलवी साहब आपको याद कर रहे हैं, जाइए नमाज अदा कीजिए। और हाँ जनाब, मिलते रहिएगा।
0: जिन हूँ मैं जिन, पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका।
2: अशफाक और बिस्मिल दोनों ने खूब साथ निभाया एक दूसरे का। अशफाक के बड़े भाई बिस्मिल के साथ उर्दू मिडिल स्कूल में पढ़ चुके थे, इस नाते शुरू में अशफाक बिस्मिल को भाई साहब कहता था, पर बाद में सिर्फ राम कहकर पुकारने लगा। उनके बगैर रह नहीं सकता था। शाहजहांपुर में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा।

0: देखो अशफाक, हमारी गतिविधियाँ जितनी गुप्त हैं, उतना ही हम सबके लिए अच्छा है।
1: मजा फरमाते हैं आप।
0: हम पर तो केस चली चुके हैं, आप समझ रहे हैं ना?
1: हम आपका इशारा खूब समझ रहे हैं। खातिर जमा रखें, आज तक पार्टी से हमारे
2: रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसके प्रमुख संगठक थे शचीन्द्र नाथ सान्याल और पार्टी की फौजी शाखा के प्रभारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक ने भी अपनी खूबियों से पार्टी में बिस्मिल की बराबरी का दर्जा हासिल कर लिया था। पार्टी के साहसिक अभियानों में अशफाक पर पूरा भरोसा रहता था बिस्मिल को। बिस्मिल ने पार्टी की एक बैठक शाहजहांपुर में आयोजित की। शाहजहांपुर में आयोजित इस बैठक में अशफाक उल्ला खां, शचीन्द्र नाथ बिस्मिल, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी और बाहर से आए पार्टी के प्रमुख सदस्य मौजूद थे। पार्टी के सामने राम प्रसाद बिस्मिल ने सुझाव रखा।
0: चोट तो नहीं लगी?
1: नहीं, ठीक हूँ। सभी लोग आ चुके होंगे?
0: हाँ, जल्दी चलें, पुलिस गश्त चालू हो जाएगी थोड़ी देर में।
1: हाँ। कौन?
0: राम, राम प्रसाद। धन इकट्ठा करने के लिए अभी तक हम राजनीतिक डकैतियों पर निर्भर रहते आए हैं, पर अब हमें ये सब बंद करना चाहिए।
3: वजह का खुलासा कीजिए।
0: आजाद जी, इन डकैतियों में एक तो हमें धन कम मिलता है और दूसरे कभी कभी मजबूर होकर हमें अपने ही लोगों के खून से हाथ रंगने पड़ते हैं।
4: और कोई रास्ता भी तो नहीं है?
0: रास्ता है, हम सरकारी खजानों पर डकैतियां डालेंगे।
3: हंसी ठट्ठा नहीं है ये, योजना क्या है?
4: किंतु सरकारी खजाना लूटेंगे कहाँ?
0: बताते हैं बताते हैं। शाहजहांपुर से लखनऊ ट्रेन से सफर करते हुए हमने देखा है कि हर स्टेशन की आमदनी एक बंद थैले में होती है और वो थैला ब्रेकवान में रखे हुए एक संदूक में डाल दिया जाता है। खजाना लखनऊ लाया जाता है।
3: बड़ी जोरदार योजना लाए।
0: हाँ, किसी सुनसान जगह पर ट्रेन रोककर ये खजाना लूटा जा सकता है।
4: लेकिन ट्रेन कौन सी है?
0: सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को लूटा जा सकता है।
3: बढ़िया प्रस्ताव है, एक ही डकैती में काफी हथियार खरीदने लायक रकम मिल जाएगी।
4: काम को अंजाम कहाँ दिया जाए?
0: मेरा ख्याल है लखनऊ और काकोरी के बीच करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि तब तक अधिकांश स्टेशनों की आमदनी संदूक में आ चुकी होगी।
3: तो फिर तय रहा।
1: ठहरिए, हमें एक बार और सोच लेना चाहिए।
2: ये अशफाक थे। बिस्मिल की योजना का मीटिंग में मौजूद अधिकांश सदस्यों ने उत्साहपूर्वक समर्थन किया, पर अशफाक उल्ला खां ने समर्थन नहीं किया। वे स्वतंत्र विचार रखते थे और अपने विचार किसी के सामने खुलकर रखने में हिचकिचाते नहीं थे।
1: अभी तक हमारे और ब्रिटिश हुकूमत के बीच सीधा टकराव नहीं है, पर खजाना लूटने के बाद हो जाएगा। ये काम सरकार के लिए खुली चुनौती सा होगा और सरकार हमें मिटाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। ऐसी हालत में आजादी पाने के हमारे मकसद से हम भटक जाएंगे। मेरा ख्याल है कि सीधे टकराव से पहले हमें अपनी बुनियाद को जरूर पुख्ता कर लेना चाहिए।
2: अशफाक की बात का कुछ सदस्यों ने मतलब लगाया कि वे खतरों से खेलने में डरते हैं, जबकि अशफाक ऐसे नहीं थे। ग्वालियर के रिटायर्ड पुलिस सुपरिंटेंडेंट अपनी राइफल बेचना चाहते थे। अशफाक बिस्मिल के साथ ग्वालियर गए और तमाम बाधाओं को पार कर राइफल के साथ एक रिवॉल्वर और माउजर पिस्तौल भी जुगाड़ लिया।
5: ये कौन है भाई तुम्हारी?
0: जी, बहन है हमारी छोटी, गिर पड़ी दूसरी मंजिल से, दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई हैं।
1: मुसीबत आन पड़ी है साहब। घर है हमारा लखनऊ में, बड़ा शहर है, इलाज अच्छे से हो जाएगा।
2: बिस्मिल की छोटी बहन थी वो, उनके एक पैर पर राइफल और दूसरे पर रिवॉल्वर और पिस्तौल बांध दी। ऊपर से टूटी हड्डियों वाले मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली खपच्चियां रखकर अस्पताल में काम में आने वाली पट्टियां लपेट दी। बेहद मुश्किल था उन दिनों हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पर अशफाक और बिस्मिल ने वो कर दिखाया।
1: एक बात मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने वो कहा जो मुझे पार्टी के हित में लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूं। मैंने अपना मत रखा, पर बहुमत एक्शन के पक्ष में हो तो मैं दिलो जान से साथ रहूंगा।
3: तो बात आगे बढ़ाई जाए।
0: एक्शन में 10 लोग साथ होंगे, 7 लोग शाहजहांपुर से सवार होंगे ट्रेन में संदूक तोड़ने के सामान के साथ। सचिंद्र नाथ बख्शी, अशफाक उल्ला खां।

9 अगस्त 1925 सहारनपुर लखनऊ गाड़ी पर शाहजहांपुर से योजना के मुताबिक रामप्रसाद बिस्मिल, मन्मथ नाथ, गुप्त, आजाद और अन्य 4 क्रांतिकारी मय साजो सामान के सवार हुए और ट्रेन चल पड़ी काकोरी की ओर। शाम का समय लगभग 6 बजे। काकोरी से अशफाक, शचिंद्र नाथ और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हुए। काकोरी जैसे छोटे से स्टेशन पर दूसरे दर्जे के टिकट की मांग एक अनोखी बात थी। टिकट बाबू ने तीनों को घूर कर देखा था। ये तीनों भी तीसरे दर्जे के डिब्बों से झांकते अपने साथियों को देख आश्वस्त हुए। ट्रेन काकोरी से चलकर काकोरी और आलमपुर के बीच पहुंची। चेन खींच ली गई।

0: फिर आप दिल्ली में कैसे पकड़ा है?
1: आपसे यहाँ लखनऊ जेल में जो मिलना था। हम दिल्ली दरअसल गए थे पासपोर्ट बनवाने, रूस जाने के लिए।
2: और लखनऊ जाने का वीजा मिल गया।
3: दिल्ली में अशफाक अपने एक मुस्लिम दोस्त के साथ रहते थे जो शाहजहांपुर का था और उनका सहपाठी भी था। इन लोगों के पड़ोस में एक इंजीनियर जो मुस्लिम थे रहते थे। उनकी कन्या अशफाक को चाहने लगी थी। अशफाक उसे अपनी फरारी की सच्चाई बता नहीं सकते थे। शराफत उनमें कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने बड़ी कठिनाई से उस लड़की को समझाया कि वे उससे शादी नहीं कर सकते।
0: पुलिस को कैसे खबर?
1: दोस्त ने दगा कर दिया।
2: पर दो दोस्तों को मिला भी तो दिया।
1: तमन्ना तो यही है कि यहाँ भी साथ रहें और वहाँ ऊपर भी।
2: अपीलें खारिज हो गई है। बिस्मिन, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई है।
1: हमें भी हो जाए तो ऊपर साथ मिलकर कौमी तराने गाया करेंगे।
2: अकेले मत निकल लेना, साथ चलेंगे।
4: भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश सरकार जिंदाबाद। ब्रिटिश

0: फांसी के लिए अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल ले जाया गया। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जानी थी उन्हें। 17 दिसंबर को उनके भाई रियासतुल्ला खां और शहनशाह खां मैं दो भतीजों के उनसे मिलने फैजाबाद जेल पहुंचे। अशफाक को देखकर वे रोने लगे। भतीजे तो जोर जोर से रो रहे थे।
1: जेलर साहब, आपको इन्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। चुप हो जाओ बच्चों, ये रोने का नहीं खुशी मनाने का वक्त है। हमारे खानदान से कोई हंसते हंसते मुल्क के लिए फांसी चल रहा है। खानदान के लिए ये फख्र के लम्हे हैं, फख्र के लम्हे।
0: उन्नीस दिसंबर 1927 की सुबह कोठरी का ताला खुलता है। जेल में पसरे सन्नाटे में ताला खुलने की आवाज गूंज गई। अशफाक तैयार थे विशेष रूप से मंगाए नए कपड़ों में इत्र वगैरह लगाकर।
2: भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: अरे वाह, बाराती आ गए, चले निकाह के लिए।
3: चलिए, फांसी का वक्त हो गया।
1: फांसी नहीं, निकाह, निकाह कहिए, निकाह।
0: और हंसते हंसते गले लगा लिया मौत को उस अमर शहीद ने। तख्ते पर चढ़ने के पहले अशफाक ने उसका चुंबन किया। लटकते हुए फांसी के फंदे को देखकर कहा,
1: अरे माँ, मेरी महबूबा, मुझे मालूम था कि निकाह के लिए तू मेरा इंतजार कर रही है। ले, मैं आ गया, मैं आ गया।
0: खुदा का नाम लेने वो क्रांतिवीर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गया। सलाम, लाखों सलाम, मादरे वतन की खातिर जान देने वाले वीर शहीद, तुझे सारे मुल्क का सलाम।

अशफाकुल्ला खान ने मौत से चंद दिन पहले एक शेर कहा था जो उनकी मौत के बाद भी बहुत अरसे तक फैजाबाद की जेल में गूंजता रहा। तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से, चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से, चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से, चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से।

0: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।